सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026। सुबह के 7 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, आपको देते हैं जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। आज का शीर्षक होगा अवसर। अक्षय निधि कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल से वाचन। आज आप सुनेंगे सूक्त 185। भक्ति संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:20 से। वतन का राग कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 8:00। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा भीष्म साहनी की जयंती पर। इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे 6:00। प्रातः 8:30 और 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज का विषय होगा खेलों की परीक्षा। प्रातः 9:00 कार्यक्रम सुनेंगे टेक गुरु प्रकृति की पुकार, आज का विषय होगा दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे। इस कार्यक्रम का चौथा भाग आज प्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के बारे में आज आप जानकारी सुनेंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से। दिन में 10:00 समय होगा कार्यक्रम देश के संस्थान का, आज का विषय होगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSI। दिन में 10:30 पर होगा कार्यक्रम आजाद हिंद, जिसमें आज आप सुनेंगे सरजू प्रसाद सिंह पर केंद्रित कार्यक्रम। दिन में 11:00 का समय होगा रेडियो रिपोर्ट का, जिसमें आप सुनेंगे ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे दिन का प्रसारण और परिक्रमा कार्यक्रम भी। 11:30 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसमें आज आप सुनेंगे रश्मि रथी का भाग 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम, जिन्हें आप सुन सकते हैं प्रातः 7:00 से रात्रि 10:00 तक। निरंतर जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास ना कोई साथी था, उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपने आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने यह निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेख की कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है।
1: जीवन सौरभ।
0: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। अब समय है कार्यक्रम अक्षय निधि का।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 185 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार, छंद है त्रिष्टुप।
1: कतरा पूर्वा कातरा परायोः कथा जाते कवयः को विवेदः विश्वं त्मना बिभृतो यद्ध नाम विवर्तेते अहनि चक्रियेव। हे ऋषियों, ये द्युलोक और भूलोक दोनों किस प्रकार उत्पन्न हुए और इन दोनों में कौन सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ तथा बाद में कौन हुआ, इस रहस्य को कौन भली प्रकार जानने में समर्थ है। ये दोनों लोक संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं और चक्र के समान घूमते हुए दिन रात का निर्माण करते हैं। भूरिम द्वे अचरन्ति चरन्तम् पद्वन्तम् गर्भमपदि दधाते नित्यं न सूनुम् पित्रो रूपस्थे द्यावा रक्षतम् पृथ्वी नो अभवात्। स्वयं पदविहीन तथा अचल होने पर भी ये दोनों द्यावा पृथ्वी असंख्य चलने फिरने में सक्षम पदयुक्त प्राणियों को धारण करते हैं। जिस प्रकार माता पिता समीप उपस्थित पुत्र की सहायता करते हैं, उसी प्रकार द्युलोक और पृथ्वी हम सभी प्राणियों को संकटों से बचाएं। अनेहो दात्र मदिते रनर्वम हुवे स्वर्वदवधम नमस्वत तद्रोदसी जनयतम जरित्रे द्यावा रक्षतम पृथ्वी नो अभवात। हम अविनाशी पृथ्वी से पाप मुक्त, क्षय रहित, हिंसा रहित, तेजस्वी और विनम्रता प्रदान करने वाले धन वैभव की कामना करते हैं। हे द्यावा पृथ्वी, ऐसा वैभव स्तोताओं के लिए प्रदान करें। ये दोनों पाप कर्मों से हमारी रक्षा करें। अतप्यमाने अवसावंती अनुश्याम रोदसी देवपुत्रे उभे देवानामुभयेभिरन्वाम द्यावा रक्षतम पृथ्वी नो अभवात। देव शक्तियों के उत्पादक द्युलोक और पृथ्वीलोक पीड़ित न होते हुए भी अपने कार्य में शिथिल न होते हुए अपनी संरक्षण शक्तियों से प्राणियों के संरक्षक हैं। दिव्यता युक्त दिन और रात के अनुकूल हम रहें। द्यावा पृथ्वी दोनों पाप से हमारी रक्षा करें। संगच्छ माने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रो रूपस्थे अभिजिघ्रन्ति भुवनस्य नाभिम द्यावा रक्षतम पृथ्वी नो अभवात। चिरयुवा बहिनों की तरह परस्पर सहयोग करने वाली ये दोनों द्यावा और पृथ्वी पिता के समीप अर्थात परमात्मा के अनुशासन में रहकर भुवन की नाभि यज्ञ को सूंघती हुई उससे पुष्ट होती हैं। ये दयावा पृथ्वी हमें सभी विपदाओं से संरक्षित करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 185 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन

प्रभु के प्रति हमारी भक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि भाव है। हमारी प्रार्थना में हमारे शब्द छोटे हो सकते हैं, किंतु भाव बहुत बड़े होते हैं।

प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो केवल हम अपने लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये प्रार्थना करें। अर्थात सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो।

भक्ति का अर्थ है समर्पण, अर्थात अपना अहंकार उस परम शक्ति को सौंप देना। जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं ना, तो वे परमात्मा हमारी बात अवश्य ही सुनते हैं, क्योंकि वो ना किसी के हैं और ना

आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में अपने हर पल के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए उनसे क्षमा याचना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे हर पल हमारा मार्गदर्शन करें और हमें शक्ति दें।

हे प्रभु, मेरा हर पल, मेरा हर कर्म आपके हाथ में है। जैसा आप कराएंगे वैसा ही होगा, परिणाम भी आपके ही हाथ है।

हे प्रभु, आज का दिन, मेरा तन, मेरा मन, मेरा कर्म, सब कुछ, मुझसे जो भी हो, वो सब आपका ही कर्म है। मैं तो बस निमित्त हूँ, अतः मुझे कर्ता मत बनाइए।

और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आप जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। अगला कार्यक्रम वतन का राग कुछ ही पलों में।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

जब कभी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों की चर्चा होती है, वहां प्रख्यात साहित्यकार भीष्म साहनी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उनको हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। भीष्म साहनी उन लेखकों में से थे जिनकी कहानियां सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती थीं। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे अपने पिता श्री हरवंश लाल साहनी और माता श्रीमती लक्ष्मी देवी की 7वीं संतान थे। उनके पिता अपने समय के प्रसिद्ध समाजसेवी थे, जबकि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बलराज साहनी उनके बड़े भाई थे। भीष्म साहनी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी और संस्कृत में हुई। बाद में उनका दाखिला स्कूल में कराया गया, जहां उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। 1937 में उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और उसके पश्चात डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के निर्देशन में कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो इन द नॉवल शीर्षक के अंतर्गत अपना शोध कार्य सम्पन्न किया। स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले भीष्म साहनी गहन मानवीय संवेदना के सशक्त हस्ताक्षर थे। उन्होंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ का स्पष्ट चित्र अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। उनकी यथार्थवादी दृष्टि उनके प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारों का प्रतिफल थी। भीष्म जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने जिस जीवन को जिया, जिन संघर्षों को झेला, उसी का यथावत चित्र अपनी रचनाओं में अंकित किया। वे लेखन की सच्चाई को अपनी सच्चाई मानते थे। भीष्म जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को मात्र कह देना ही नहीं, बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को नाप लेना भी उतना ही उचित समझते थे। वे अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता और संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते थे। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य और नैतिकता विद्यमान थी।

साहित्यकार भीष्म साहनी स्वाधीनता के आंदोलन से भी जुड़े रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल भी गए। विभाजन के समय वे और उनका परिवार पाकिस्तान से अमृतसर आ गया था। इसी दौरान उन्होंने विभाजन के हर दर्द को महसूस किया। एक साक्षात्कार में उन्होंने भारत आने की परिस्थिति का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि वे आजादी के समारोह का जश्न देखने रावलपिंडी से सप्ताह भर के लिए दिल्ली आए थे। उनकी पंडित नेहरू को लाल किले पर झंडा फहराते और हिंदुस्तान की आजादी का जश्न देखने की हसरत थी, लेकिन जब वे दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि गाड़ियां बंद हो गई हैं और फिर उनका लौटना नामुमकिन हो गया। विभाजन के बाद पाकिस्तान से देश में आने वाले लोगों की मनोदशा और समस्याओं का अत्यंत ही सजीव और वास्तविक वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक तमस में किया। पद्म भूषण से सम्मानित भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का साहित्य जगत में बहुत बड़ा स्थान है। विभाजन की त्रासदी पर तमस जैसी कालजयी उपन्यास लिखने वाले साहनी ने हिंदुस्तानी भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। भीष्म साहनी ने तमस के अलावा झरोखे, बसंती, मैया दास की माड़ी जैसे उपन्यासों और हानूश माधवी और कबीरा खड़ा बाजार में जैसे चर्चित नाटकों की रचना की। भाग्य रेखा, निशाचर, मेरी प्रिय कहानियां उनके कहानी संग्रह हैं। भीष्म साहनी ने दबे कुचले और समाज के पिछड़े लोगों की समस्याओं को जनभाषा में अत्यंत सटीक तरीके से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। मानवीय मूल्यों पर आधारित भीष्म साहनी की धर्म भावना इंसान को इंसान से जोड़ती है। उनके उपन्यासों में शोषण विहीन समतामूलक प्रगतिशील समाज की स्थापना के साथ समाज में व्याप्त आर्थिक विसंगतियों के त्रासद परिणाम, धर्म की विद्रूपता और खोखलेपन को उद्घाटित किया गया है।

जहाँ तक भीष्म साहनी के कथा साहित्य का प्रश्न है तो इसे काल की सीमा में बद्ध नहीं किया जा सकता। भीष्म साहनी सहज मानवीय अनुभूतियों और तत्कालीन जीवन के अंतर्द्वंद को लेकर सामने आए और उसे अपनी रचना का विषय बनाया। जनवादी चेतना के लेखक भीष्म साहनी की लेखकीय संवेदना का आधार जनता की पीड़ा है। जन सामान्य के प्रति समर्पित साहनी जी का लेखन यथार्थ की ठोस जमीन पर अवलंबित है। उनके साहित्य में जहां एक ओर सहृदयता और सहानुभूति है, वहीं दूसरी ओर जातीय तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान की आग भी है। वे पूंजीवादी आधुनिकता बोध और यथार्थवादी विचारधारा के अंतर्विरोधों को खोलते हैं। निम्न मध्य वर्ग के समर्थ रचनाकार भीष्म साहनी भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप विश्व साम्राज्यवाद और देशी पूंजीवाद में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। जिस तरह प्रेमचंद ने सामाजिक वास्तविकता और पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणामों को अपनी रचनाओं में चित्रित किया, उन्हीं विषयों को आजादी के बाद साहनी ने अपनी लेखनी का विषय बनाया। बेहद सादगी पसंद रचनाकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर साहनी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज उठाने वाले इस लेखक का निधन 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुआ। अपनी कालजयी रचनाओं के कारण भीष्म साहनी साहित्य में युगांतकारी उपन्यासकार के रूप में चिर स्मरणीय रहेंगे। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेल भी एक परीक्षा है।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और हाजिर हूं लेकर आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आप सप्ताह भर इंतजार करते हैं और उस कार्यक्रम का नाम है बाल सभा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। ये मत सोचिएगा कि आप मुझे जवाब कैसे देंगे क्योंकि मेरी आवाज़ तो रेडियो के भीतर से आ रही है। तो बस आपने करना इतना है कि अगर आप बिल्कुल ठीक है तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाइए और अगर मन है तो खिलखिलाइए क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा उदास हो क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इस वक्त आपके वो टर्म वन टर्म टू वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना छोटे बच्चों के, वो शुरू हो जाते हैं और जब वो शुरू हो जाते हैं तो किसी का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आता है तो बड़ा खुश होता है और किसी का रिज़ल्ट थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है कई बार, तो उसका मुँह बिल्कुल ऐसे हो जाता है, आँखें झुक जाती हैं, वो स्ट्रेस में आ जाता है और सोचता है अब क्या करूं। तो उन बच्चों से भी मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझिए, प्यार की समझाइश समझिए, वो यही है कि हर जगह परीक्षा होती है, कई बार हम सफल होते हैं और कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बच्चों कि सफलता हमें मिलती ही रहे, क्योंकि अगर हम कभी हारे नहीं ना तो हम जीत के स्वाद को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमने आपकी पढ़ाई वाली परीक्षा की बात कर ली, लेकिन बच्चों जानते हैं खेलों में भी एक परीक्षा होती है। हाँ, खेल में भी परीक्षाएं होती हैं। आपको लग रहा होगा अच्छा तो क्या खेल का भी रिजल्ट आता है? डेफिनेटली आता है। जब कोई खिलाड़ी टॉप पोडियम पे पहुंचता है और पीछे से राष्ट्रगान बजता है तो वो खेल का रिजल्ट ही तो है। कॉमनवेल्थ गेम में जब अस्मिता डे ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता ना और बच्चों पीछे से राष्ट्रगान बजा तो बस मैं अपनी ही जगह पे खड़ी हो गई और उसकी आंखों में तो वो चमक दिखाई दे ही रही थी लेकिन मेरी आंखों में बहुत आंसू थे क्योंकि मुझे पता है बच्चों जब कोई खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचता है ना, जैसे मैंने बताया कि टॉप पोडियम तक जब आप पहुँचते हो ना तो उसके पीछे अथक मेहनत होती है, बहुत कड़ा परिश्रम होता है, बहुत अनुशासन होता है और बहुत सारे लोगों का त्याग होता है क्योंकि कोई भी खिलाड़ी बच्चों अकेला नहीं बनता। मैं अस्मिता डे की भी आपको कहानी सुनाऊंगी और मैं आपको कहानी सुनाऊंगी नीरज चोपड़ा की भी, साइना नेहवाल की भी, पीवी संधु की भी और कहानी आपको सुनाएंगे महेंद्र सिंह धोनी की भी। कोई भी खिलाड़ी जिन्हें आप आज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट से घिरा हुआ देख रहे हैं ना बच्चों, उन्होंने बहुत फांके लगाए होते हैं। फांके सिर्फ खाली पेट भोजन वाले फांके नहीं होते, स्ट्रगल के भी फांके होते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, कितनी तपस्या की होती है उन खिलाड़ियों ने, आपको वो सब कुछ नहीं दिखता। आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है एक खिलाड़ी जिसके चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारी कैमरा लाइट्स उस पर पड़ रही हैं और आपको दिखती हैं लोगों की तालियाँ, उनके इंटरव्यूज़। लेकिन सच में बच्चों यकीन मानिए जब भी आप किसी ऐसे सफल खिलाड़ी को देखते हैं तो उसकी कहानी पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि उसकी ज़िंदगी दरअसल कैसी थी, है ना? क्योंकि ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ऐसी कहानियाँ जो काल्पनिक होती हैं वो पढ़ते हैं अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को कई बार ऐसी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो सब कुछ कल्पनाओं के देश में ले जाती हैं कि रानियों का देश, परियों की कहानी, है ना, अच्छा लगता है ये सब कुछ, लेकिन कभी कभी अपने असली जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ भी हमको जाननी चाहिए क्योंकि वो बहुत प्रेरणादायक होती हैं। अब आपको मैं अपनी बात पर ले आती हूँ कि इतनी सारी बातें मैं आपसे कर क्यों रही हूँ। तो बच्चों ऐसा है कि खेलों में भी परीक्षा होती है, आज हमारा बाल सभा का विषय यही है और मैं आपसे आज बहुत सारी बातें पूछने वाली हूँ। तो चलिए बताइए तो जरा कि आप में से कितने बच्चों को दौड़ना अच्छा लगता है, कितनों को बैडमिंटन, कितनों को कबड्डी, हॉकी या बॉक्सिंग पसंद है? जरा मन ही मन में अपना हाथ उठा लीजिए। अच्छा एक और सवाल, कभी आपने सोचा है कि जो खिलाड़ी भारत की जर्सी पहनकर खेलते हैं वो वहां तक पहुंचते कैसे हैं? क्या कोई एक दिन में भारत की टीम में आ जाता है? नहीं, उनकी कहानी भी आपकी और हमारी तरह शुरू होती है एक छोटे से स्कूल से, किसी गांव के मैदान से, किसी पार्क से या फिर घर के आंगन से। मान लीजिए आपके स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता हुई, आप पहले स्थान पर आ गए, फिर आपको ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाता है, फिर आप वहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर आप कहां पहुंचते हैं? आप पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब जिला स्तर पर पहुंचते हैं। अब आप जिले में भी जीत जाते हैं, जैसे ग्वालियर, जैसे शिवपुरी, जैसे भोपाल, ऐसे आप अलग अलग जगह पे जीत जाते हैं। फिर होता है संभाग स्तरीय, है ना? संभाग मतलब उस संभाग में जितने जिले आते हैं आपको वहां पे प्रतियोगिता में अपना खेल दिखाना होता है। अब क्या हुआ, अब जब आप संभाग में भी प्रथम आ गए, फिर आप आते हैं स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। अब जब आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आ जाते हैं तब आपकी जो मेहनत है वो और भी दुगनी तिगुनी चौगुनी हो जाती है, आपका अनुशासन और महत्व रखने लगता है। क्योंकि जब आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंचते हैं, जैसे मैं मान लूं कि मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोई खेल प्रतियोगिता है और टीटी नगर जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अगर वहां वो हो रही है, तो कोई खिलाड़ी ग्वालियर से आया होगा, कोई खिलाड़ी भोपाल से, कोई खिलाड़ी आया होगा किसी दूसरे संभाग से, आपस में खूब अच्छी प्रतियोगिता होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां से जो खिलाड़ी प्रथम आएगा ना वो स्टेट का यानी कि अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। बच्चों समझ में आ रहा है आपको, ये आपके आंगन से शुरू हुई कहानी कहां तक आप पहुंची है? और फिर आप जाओगे नेशनल टीम में खेलने। नेशनल टीम में कैसे खेलोगे, आप जाओगे अपनी स्टेट का रिप्रेजेंट करोगे और नेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आप भाग लोगे। तो अब मान लीजिए कि वो राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता कहाँ पर है, मान लीजिए कि भोपाल में ही है, तो भोपाल में कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आएंगे? कोई खिलाड़ी आंध्र प्रदेश से होगा, कोई खिलाड़ी महाराष्ट्र से होगा, कोई खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से होगा। भारत के जितने राज्य होंगे वहाँ के बेस्ट खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। और जो खिलाड़ी अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है ना बच्चों, उसके साथ बहुत सारे कोचेज, बहुत सारे मैनेजर, ये सब कुछ आए होते हैं आपका ध्यान रखने के लिए। और फिर आप कैसी डाइट ले रहे हैं, आप खाने में क्या खा रहे हैं, ये प्रदेश स्तर के खेलों से जुड़े जो अधिकारी होते हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी बन जाता है। बच्चों हर चीज का आपकी ख्याल रखा जाता है। फिर आता है वो दिन जब आप अपने स्टेट के लिए खेलते हुए जीत जाते हैं। अब क्या होगा, उत्सुकता लग रही है? फिर बच्चों आप मान लीजिए कि नेशनल चैंपियनशिप में फर्स्ट आ जाते हो, क्या होगा? अब क्या होगा, अब वो होगा जिसका हमें इंतजार था। अब वो होगा बच्चों कि आप भारत के लिए खेलने के लायक माने जाने लगते हो। फिर राष्ट्रीय स्तर पे कैंप आयोजित होता है जिसमें कुछ चुनिंदा बच्चे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पोर्ट्स एकेडमी होती हैं जहां आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। अब देश के जो सबसे बेहतर कोच हैं वो आपको तैयार करते हैं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए। और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता कोई एक नहीं होती, दो नहीं होती, बहुत सारे खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसे एशियाई गेम्स, और कुछ होती हैं सिर्फ आपके खेल की, जैसे एथलेटिक्स मीट, जूडो मीट। फिर इधर आ जाइए आप, तैराकी का कोई कॉम्पिटिशन होगा इंटरनेशनल, तो उसमें अगर आप भारत के लिए खेलेंगे, तो ऐसे हर स्तर पर आपको खुद को साबित करना पड़ता है। बच्चों पूरे भारत से हजारों बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से सबसे अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर वो भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े खेलों का जब आयोजन होता है तो आप पहनते हैं भारत देश की जर्सी। भारतीय खिलाड़ी के सीने पर तिरंगा लगा होता है और फिर वो दुनिया के सामने उतरते हैं। ये सोचने मात्र से ना आपको कितना गर्व महसूस होने लगता है। तो सोचिए कि जिस दिन आप ये कर रहे होंगे बच्चों वो कितने गौरव के पल होंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? अगर कोई खिलाड़ी केवल एक प्रतियोगिता वाले दिन ही अभ्यास करे तो क्या वो जीत पाएगा क्या बच्चों? नहीं, जीत उसको मिलती है जो रोज अभ्यास कर रहे हैं, जो समय का पालन कर रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, दोबारा दोबारा और दोबारा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खेलों में हर बार आपको जीत मिले ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ना, खेल भी एक परीक्षा है, तो जो हार गए हैं वो फिर खड़े हो रहे हैं। और याद रखिए, मेडल गले में भले ही एक दिन पड़ता हो बेटा, लेकिन उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत, पसीना और धैर्य छिपा होता है। तो आज जब आप ये बाल सभा सुन लीजिएगा तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है, और फिर अपने माता पिता और खेल शिक्षक से बात कीजिएगा कि आपके सपनों की शुरुआत कैसे की जाए। क्या वो दिन आज का ही है? मतलब जब ये बाल सभा आप सुन रहे हैं और आपके मन में ये बात आ रही है कि आज मुझे दीदी ने बता दिया है कि मैं कैसे एक एक एक एक स्तर पार करता जाऊंगा और एक दिन मैं भी भारत की जर्सी पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ, तो फिर आज से ही सपने देखना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ सपने देखना शुरू मत कीजिएगा बच्चों, उसके पीछे कड़ी मेहनत भी कीजिएगा। को मैं कुछ उन लोगों की बातें बताने जा रही हूँ जिनको आपने सिर्फ मेडल पहनते हुए देखा है, लेकिन उसके पीछे उनका बहुत कड़ा अभ्यास है। बच्चों, नीरज चोपड़ा, आपने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि जब जब नीरज चोपड़ा मैदान में आते हैं तो लाखों करोड़ों भारतीय टकटकी बांधे बस उनके भाले को और उनकी स्पीड को देखते रहते हैं कि कैसे भी वो जो आखिरी लाइन है उसको क्रॉस कर जाए नीरज चोपड़ा का भाला और देश को मेडल मिल जाए, है ना? तो जब ये हम उम्मीद बांधते हैं तो उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है। वो हरियाणा के रहने वाले हैं और अपने गांव में उन्होंने एक दिन स्टेडियम में भाला फेंकते कुछ खिलाड़ियों को देखा, सिर्फ देखा था, लेकिन वो स्टेडियम गए क्यों थे ये पता है आपको? मैंने एक बार नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे थे कि मैं बहुत मोटा हुआ करता था और घर वाले कहते थे कि थोड़ा फिट हो जाओ, और जब फिट होने की शुरुआत करने के लिए मैं स्टेडियम के मैदान में सिर्फ दौड़ने गया हुआ था तो मुझे लगा कि ये तो मैं भी फेंक सकता हूँ। देखिए सपने की शुरुआत कैसे होती है। जो लोग भाला फेंक रहे थे उनको देख कर नीरज चोपड़ा ने ये सोचा कि अब से मैं भी जेवलिन थ्रो करूँगा, लेकिन वो लोग आज नीरज चोपड़ा जी के लिए तालियां बजाते हैं। पता आपको, जो सिर्फ अपना वेट रिड्यूस करने गए थे वो आज भारत के लिए ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं, वो आज भारत के लिए कॉमनवेल्थ में मेडल ला रहे हैं, एशियाई खेलों में मेडल ला रहे हैं और एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में तो ना जाने कितने कितने मेडल ला रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये प्रेरणा बहुत बड़ी है। मीराबाई चानू मणिपुर के एक छोटे से गाँव की बेटी हैं, जंगल से लकड़ियाँ उठा उठा कर घर लाती थी। सुना तो मैंने ये भी है कि वो अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा वज़न की लकड़ियाँ अपने घर लाती थी, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन उनके हौसले बहुत बड़े थे। बच्चों, कई बार हार लगी, कई बार चोट लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन वही मीराबाई चानू चैम्पियन बनती हैं, भारत की जर्सी फिर से छा जाती है, फिर से ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई गेम में भारत के लिए पदक जीतकर करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन जाती हैं मीराबाई चानू। पीवी संधु, नाम तो सुना होगा। सबसे बड़ी ताकत उनकी जानते हैं क्या है? उनकी ताकत है उनका अनुशासन। रोज सुबह जल्दी उठकर कई कई किलोमीटर दूर अपनी एकेडमी जाकर अभ्यास करती हैं। जब बहुत सारे बच्चों छुट्टियां मना रहे होते थे ना, तब पीवी सिंधु कोर्ट पर पसीना बहा रही होती थी और वर्षों की इसी मेहनत ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाली वो भारत की पहली खिलाड़ी बनी। हाँ, कितनी बड़ी बातें हैं, कितना बड़ा सम्मान है, लेकिन उसके पीछे उनकी माँ का भी हाथ है, उनके पिता का भी हाथ है। ये लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों। कई बार हमें अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाकर बसना पड़ता है। अब मान लीजिए वो सब जूनियर खेल रही हैं और सब जूनियर सबसे छोटी उम्र के बच्चों के प्रतियोगिताएं होती हैं और सब जूनियर में बच्चा अकेला तो जा नहीं सकता, तो कई बार पेरेंट्स को भी साथ में जाना पड़ता है। तो वो तो खेल रही हैं, लेकिन उनके साथ उनकी माँ अपना घर छोड़कर वहाँ रह रही हैं। ये त्याग है कि नहीं? तो अकेले कोई खिलाड़ी नहीं जीतता, खिलाड़ी के कोच, खिलाड़ी के पेरेंट्स, खिलाड़ी के वो दोस्त जो उनको उनकी हार के वक्त भी प्रेरित कर रहे थे अच्छा खेलने के लिए, उन सब लोगों के सपने एक साथ जीतते हैं बच्चों। निखत जरीन, आपको पता है कई लोगों ने कहा कि लड़कियां बॉक्सिंग नहीं कर सकती, लेकिन निखत जरीन ने ये साबित किया कि वो बॉक्सिंग न सिर्फ कर सकती हैं बल्कि जीत भी सकती हैं। और आज निखत जरीन हजारों हजारों लड़कियों की प्रेरणा है। जो भी बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, निखत जरीन उस हर शख्स की प्रेरणा है। अब आप सोचिए कि कितना अजीबोगरीब है सब कुछ, कि एक लड़की घर में बैठी है और उससे सब लोग कह रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, अब तुम पढ़ाई करो, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर देख लेना हम तुम्हें अच्छे स्कूल से निकाल लेंगे। और वो बच्चा बार बार कह रहा है कि नहीं, मेरा पढ़ाई में भले ही ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा मन कहीं और लग रहा है। हर बच्चा अलग होता है। इसी बहाने एक और बात मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे अकेले बाल सभा नहीं सुनते हैं, बच्चों के मम्मी पापा भी तो बाल सभा सुनते हैं। तो फिर उन लोगों से मुझे यही कहना है कि एक तो अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी से मत करिए, है ना। हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। तो ये आपकी परीक्षा है कि आप अपने बच्चे की कला को समझें, पहचानें और उसको उस लाइन चुनने में मदद करें, उसके ऊपर अपने निर्णयों को ना थोपें। तो देखो बच्चों, आपके बहाने मैं आपके मम्मी पापा से भी थोड़ी थोड़ी अपने मन की बातें ना कर ही लेती हूँ, ये रास की बात है। अब ऐसा होगा कि बच्चे हंस रहे होंगे कि ओहो, दीदी ने तो आज हमारे बहाने मम्मी पापा को भी समझा दिया। तो सही बात है, थोड़ी थोड़ी समझाइश दोनों तरफ हो जानी चाहिए। वैसे एक बात और है बच्चों, कि आपके स्कूल का जब रिजल्ट आता है तो आपको खुशी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? आप रिपोर्ट कार्ड लेने जब पहुंचते हो, उसमें जब आपके अच्छे अंक दिखाई देते हैं तो आपको लगता है वाह क्या बात है। पापा आपके गर्व से कहते हैं शाबाश, दादा दादी नाना नानी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अभी जब 10th का रिजल्ट आया था तो आप यकीन नहीं कीजिए, मेरे को एक बच्ची बता रही थी कि उसके मम्मी पापा को ना ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे क्या रहा आपकी बिटिया का, जिन्हें उससे कोई मतलब भी नहीं था, जो उसकी तैयारी में भी शामिल नहीं थे। तो कई लोगों को ये भी होता है कि पता करें कैसा पढ़ी थी ये बच्ची, है ना। तो कई बार हमको क्या होता है बच्चों, कि कई बार हमको ये भी देखना होता है कि किस तरह हमारे साथ जो खड़े हैं उसके अलावा हमारे जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं वो भी ये उम्मीद करते हैं कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएं, है ना। तो सबके लिए हमें क्या करना है, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी मेहनत, थोड़ा अनुशासन और थोड़ी हार के लिए भी तैयारी, क्योंकि एक बार में सब नहीं जीतते हैं। ठीक है, अब आगे की बात बताएं आपको। ज्ञानेश्वरी यादव, ये क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव और सामान्य परिवार से आने वाली ज्ञानेश्वरी अपने पिता से ट्रेनिंग लेने की कोशिश करती थी। उनके पिता के पास ट्रेनिंग और डाइट का खर्च उठाने के लिए पैसे भी नहीं थे। बहुत आर्थिक तंगी का सामना किया, कुछ लोगों से उधार भी लिया। लेकिन अब आप देखिए, अब आपको पैरा एथलेटिक्स की बात बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शर्मिला धनकड़ बहुत गंभीर और अकल्पनीय संघर्षों को झेलने के बावजूद पैरा शॉटपुट एथलीट शर्मिला धनकड़ ने हार नहीं मानी और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं कि कैसे शुरू हुआ अस्मिता डे का सफर। अस्मिता डे, जिन्होंने पहली बार जूडो में 48 केजी में बच्चों गोल्ड मेडल जीता है। त्रिपुरा के एक बहुत छोटे से शहर से आती हैं अस्मिता डे। बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी मेहनत और जिद की कहानी है अस्मिता डे की कहानी। मैंने कहा था ना, कई बार हमें काल्पनिक कहानियां नहीं पढ़नी चाहिए, हमें कई बार वो कहानियां पढ़नी और सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए जो रियल लाइफ से आती हैं, मतलब हमारे देश के असली हीरो की कहानी। हाँ, उनके पिता साइकिल की मरम्मत का काम करते थे और वो देश के लिए जूडो में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक ले आई हैं। फाइनल में उन्होंने कनाडा के खिलाड़ी को हराया। अस्मिता ने खेल की शुरुआत जूडो से नहीं की थी, ये और एक खास बात है। उन्होंने 800 मीटर की दौड़ से अपने खेलों की शुरुआत की थी, ठीक, मतलब उनका इवेंट जूडो नहीं था, उनका इवेंट क्या था, 800 मीटर रेस। लेकिन 2015 में त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में दाखिला लेने के बाद उन्होंने प्रशिक्षकों की सलाह पर जूडो को अपनाया था, क्योंकि जूडो में लोगों को लगता है सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सारे जूडोका सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी फुर्ती से भी जीतते हैं, कई बार अपनी टेक्निक से भी जीतते हैं, क्योंकि खेलों में टेक्निक्स का बहुत महत्व है कि आप तकनीकी रूप से कितने सजग हैं, कितनी जल्दी आप ये पहचान लेते हैं कि आपके सामने वाले, मतलब आपके अपोनेंट की कमजोरी क्या है, और उसी पर आप वार करते हैं, तब आप जीतते हैं। बहुत रणनीति होती है बच्चों खेलों के पीछे, आपको एक कॉम्पिटिशन जीतने के लिए आपके अपोनेंट यानी कि आपके दूसरी तरफ जो खिलाड़ी खड़ा हुआ है उसके ढेर वीडियो देखने होते हैं, बहुत मेहनत लगती है कि ये किस तरह से खेलता है, इसका पैटर्न क्या है। तो ये खेलों की परीक्षा ऐसे होती है, और जब आप देख लेते हैं कि ये खिलाड़ी ऐसे खेलता है, ये इसकी ताकत है, ये इसकी कमजोरी है, तो फिर आप अपनी खेल की रणनीति उस हिसाब से बनाते हैं। राष्ट्रीय स्कूल खेल में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आपको एक और राज की बात बताऊं, जो भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र हैं, उसमें भी अस्मिता डे ने प्रशिक्षण लिया है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे भोपाल से भी इस गोल्डन गर्ल का नाता है। खास बात यह है कि ये जब लगातार मेहनत कर रही थी, इनके पिता की स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई, लेकिन इनकी माँ ने निर्णय लिया कि कुछ भी हो मेरी बेटी इस वक्त खेलने जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब परिवार पे संकट हो और उस वक्त भी हम बच्चे की जीत को चुने, तो ये बेटा बहुत कठिन निर्णय होता है। इसके लिए हमें अपने माता पिता को ढेरों धन्यवाद देना चाहिए, है ना। और आज जब वो मेडल जीत गई हैं, सब लोग उनके तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, तब वो गर्व से कह पा रही हैं कि ये मेडल मैं अपने कोच और अपने पिता को डेडिकेट करती हूँ। अच्छा लगता है ना ये सब सुन के। तो खेलों की परीक्षा किस तरह से होती है ये आप समझ गए हैं। आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं खेलों की बदौलत उन्हें यूपी पुलिस में नौकरी भी मिली हुई है। तो कई बार जब आप अच्छा खेल खेल रहे होते हैं अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए, तो बच्चों आपको सरकारी नौकरियों में भी जगह मिलती है, क्योंकि हर विभाग अपनी तरफ से कुछ खिलाड़ियों को भेजता है। जैसे रेलवे के अलग प्लेयर्स होते हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिशन में जाते हैं, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन एक कार्यक्रम में ये सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चाहती यही हूँ बच्चों कि आप लोग जो भी बाल सभा से जुड़े हुए हैं वो बच्चे खूब खेलें और खेलों को प्रोफेशन की तरह भी अपनाएं। जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं खेल के मैदान पर, वो इसे प्रोफेशन की तरह लें। तो इतनी सारी बातें बता देने के बाद आपको पता ही है कि हमारे कुछ संकल्प हम बाल सभा के अंत में जरूर लेते हैं। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए। आज जबकि हमने बात की है कि खेलों में भी परीक्षा होती है, तब पहला संकल्प हम सब मिलकर यही लेंगे कि हमारी जिंदगी में हम किसी भी क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। पढ़ाई के अलावा किसी ना किसी खेल को जरूर अपनाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। आज का तीसरा संकल्प ये है कि जीवन में अनुशासन के महत्व को समझेंगे। और आज का आखिरी संकल्प ये है कि हम जो भी काम हमें पसंद है उसमें एकाग्रता, परिश्रम और फोकस, इन तीनों को एकाकार करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। अब धीरे धीरे आंखें आप खोल सकते हैं। तो फाइनली बच्चों, संकल्प भी हम सब ले चुके हैं, इतनी सारी कहानियां भी आपको सुना चुके हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की और उनके जीवन की। तो अब आप अपना ध्यान रखिए और आपके मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए, जब वो कहीं बाहर से आए तो उन्हें एक ठंडा ग्लास पानी ज़रूर दीजिए। ठीक है, इसी छोटी सी सीख के बाद मुझे भी बाय बाय कहिए, है ना। तो चलूँ, अपना ख्याल रखिएगा, चलती हूँ, और अब आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज का विषय था खेलों की भी परीक्षाएं होती हैं। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना दीदी गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और मैं थी आपके साथ मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
1: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
2: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
3: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी, तो बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट पीएससी के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पर डिपेंडेंट थे या ब्रेल पर डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
2: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, अपने पढ़ाई की, और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज से आपका जुड़ाव होता रहा?
3: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वो भी आपको कमांड दे के आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कि लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है, या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया, कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफायर्स आ गए काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम DAISY। तो डिजिटल इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115 तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
2: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
3: जी, उनका जो
2: हर क्षेत्र में,
3: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है, बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था, उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना, अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर करके लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक

0: तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
1: सर एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं,
0: जी
1: लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते,
0: जी
1: मालूम मालूम नहीं होता। सर उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
0: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो आप हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जा जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके। तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस इससे मदद मिल पाएगी।
1: अक्टूबर के सेकंड थर्सडे जो होता है उसमें विश्व दृष्टि दिवस मनाया
0: जी
1: जाता है,
0: जी जी
1: तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? और
0: देखिए,
1: क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
0: देखिए ऐसे ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं इनका पर्पस यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंच पाए कि नंबर एक की दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज़ होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तुम बिना आके भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स, ओकेजन्स मदद करते हैं।
1: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती है?
0: सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती, जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें, तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
1: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की, कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
0: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
1: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा जी, मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
0: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना, उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
1: जी।
0: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है, क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके, नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है, या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम में उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
1: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
0: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल। जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता
1: जी,
0: या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता, तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करेगा। वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाए कि डिसेबल लोग भी उसका यूज़ कर पाए।
1: सर, आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
0: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
1: सर, आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
0: जी, थैंक यू।
1: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: ...90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। वाकई में श्रोताओं, गर्व है हमें अपने आप पर कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां के युवा स्वेच्छा से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और देश सेवा के लिए स्वेच्छा से हमारी सशस्त्र सेनाओं में सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। वरना विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां उस देश के हर युवा पर सेना में जाने की अनिवार्यताएं बनाई गई हैं, चाहे वो इसके लिए उत्सुक हो या ना हो। श्रोताओं, आजादी के बाद से ही हमारे राष्ट्र ने कई तरह की आपदाओं और युद्धों का सामना किया है और जब जब भी राष्ट्र की सुरक्षा और अस्मिता पर प्रश्न आया है, हमारी भारत की युवा शक्ति ने अपनी सशस्त्र सेनाओं के रूप में इन कठिनाइयों से बड़े ही साहस के साथ मुकाबला किया है। आज का भारत युवाओं का भारत है, क्योंकि हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवा ही तो हैं और युवा पीढ़ी ही इस देश का भविष्य है। यदि देश की युवा पीढ़ी अनुशासित, स्वस्थ और साहसी है तो देश के विकास को और देश की सुदृढ़ता को कभी ठेस नहीं पहुंच सकती। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद से ही कई कदम उठाए गए ताकि देश का युवा नेतृत्वशाली, सशक्त और साहसी नागरिक बन सके और NCC यानी नेशनल कैडेट कोर की गठन इसी सोच का परिणाम है। तो आज कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे NCC पर और हमेशा की तरह हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी है। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडियो में।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। नेशनल कैडेट कोर
2: जी,
3: जब भी आप ये शब्द का जिक्र आता है तो मेरे ख्याल से मेरे सामने तो एक बहुत ही यंग स्मार्ट बॉय और गर्ल ड्रेस्ड अप इन अ यूनिफॉर्म मूविंग अराउंड इन अ डिसिप्लिन मैनर वो दिखता है।
2: बिल्कुल सर,
3: आरडी परेड जब होती है, रिपब्लिक डे परेड होती है, आप उनको देखिए उस समय जो उनके चेहरे पे
2: जोश रहता है जी, वो देखते ही बनता है।
3: और जिस तरह से उनकी मेहनत झलकती है, मतलब वो ऑलमोस्ट रेगुलर आर्म फोर्सेस के साथ जो है कदम से कदम मिला के चल रहे हैं।
2: बिल्कुल सर,
3: सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऐसी फोर्स है ये जो कि युवाओं को डिसिप्लिन करने में, उनमें एक जोश भरने में जिसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा
2: जी,
3: है।
2: बिल्कुल सर,
3: इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये वॉलंटियर फोर्स है। आपने बिल्कुल सही कहा था
2: जी,
3: कि हमारे यहाँ जो है ये युवा जो है ये इतने तत्पर रहते हैं कि हमें कभी फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
2: जी बिल्कुल,
3: और वही हमने NCVC में भी देखा है कि वहाँ पे भी हर विंग में जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, हर जगह जो है बच्चे जो है बिल्कुल पूरे जोश से तैयार रहते हैं हमें NCC का हिस्सा बनना है। जो ट्रेन्ड मोटिवेटेड डिसिप्लिन फोर्स है, जो इसको बनाया किस लिए गया था, क्योंकि एक सोच आई थी कि हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जो देश को अगर मुसीबत पड़ती है, मतलब किसी तरह से हमारे पास इमरजेंसी में जो है हमारी देश की आर्म फोर्सेस को मदद कर सके। दूसरा, इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद कर सके। तीसरा, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे कि जो देश के युवा हैं मतलब उनके अंदर जो है एक देशभक्ति की भावना हो
2: जी,
3: उनके अंदर अनुशासन हो
2: जी,
3: उनके अंदर फिजिकल फिटनेस हो, उनको ये पता चले कि हमारा देश क्या है, कितना विशाल है, कितना विस्तृत है, वो दूसरे स्टेट्स के लोगों के बारे में जान पाए
2: जी,
3: एक कम्युनल हार्मोनी वो हो लोगों के बीच में जो है, तो इन सब एम्स के लिए जो है इस पोस्ट का गठन किया गया था। ये जो है 48 में पार्लियामेंट एक्ट के बाद एनसीसी का मतलब एक जन्म हुआ और इसमें जो है सबसे पहले एनसीसी सेक्रेटरिएट सेटअप हुआ था।
2: अच्छा,
3: जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो कि आजकल जिसको हम एनसीसी डायरेक्टरेट बोलते हैं, तो जो सबसे पहला जब सेक्रेटरिएट सेटअप हुआ था उसको कर्नल जीजी बीवूर थे।
2: अच्छा।
3: जो बाद में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने थे जनरल में, वो तो वो फर्स्ट डायरेक्टर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद जो है हेडक्वार्टर बना, तो अब देखिए मार्च में मतलब जैसे हेडक्वार्टर बना था, उन्होंने 31 मार्च को चार्ज अज्यूम किया था और जुलाई में जो है इसकी जो योजना है ये योजना स्कूलों में इंप्लीमेंट हुई थी।
2: अच्छा।
3: गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल कॉलेजेस खुले थे, जब समर वेकेशन के बाद हुए, तो उस साल 1948 में ही एनसीसी वाज एबल टू एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट 96 यूनिट्स
2: पहले ही साल में
3: जिसमें कि उन्होंने 83 इन्फेंट्री यूनिट्स थी, आर्मर्ड की एक यूनिट थी, फिर आरटी इंजीनियर सिग्नल्स की यूनिट्स थी। यूनिट्स का मतलब ये होता है कि वो बेस बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है।
2: अच्छा,
3: एक तरह से
2: बिल्कुल
3: फर्स्ट ईयर में ही तकरीबन 20,000 कैडेट्स जो है इसमें शामिल हो गए थे।
2: क्या बात है।
3: उस समय जो है ये सिर्फ मेल्स के लिए था जब शुरुआत
2: में जी,
3: लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 49 जो है जुलाई 1949 में ये गर्ल्स डिवीजन भी आ गई थी।
2: अच्छा, अगले ही वर्ष,
3: अगले साल जो आ गई थी।
2: क्या बात है।
3: फिर एनसीसी का विस्तार हुआ तो 1950 में जो है एयरविंग भी इसमें जुड़ गया, तो उसमें एक स्क्वाड्रन मुंबई में रेज हुई थी, एक कोलकाता में रेज हुई थी, एंड फिर जो नेवी है, नेवल विंग जो है, वो 1952 में हो गया था। तो इस तरह से जो ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई 48 से 52 के बीच में तीनों विंग्स में आ गई थी, और जैसे हमने बोला फर्स्ट ईयर से शुरू करके आज आप ये देखिए कि इट इज द फोर्स consisting of almost 13 lakh plus people.
2: क्या बात है।
3: वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टूडेंट लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन
2: जी सर, बहुत गर्व की बात है,
3: बहुत गर्व की बात है। और इसका जो एम था वो यही था कि हमारे जो बच्चे हैं उनके में कोर वैल्यूज डेवलप हो, पेट्रोटिज्म हो, मतलब देशभक्ति की भावना हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो, इनिशिएटिव होता है, करेज होता है, फिजिकल फिटनेस होती है, मेंटल रॉबस्टनेस होती है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है ना, तो सेल्फलेस सर्विस है, तो ये सब जो है मतलब एम को मद्देनजर रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया।
2: कुल मिलाकर आप मतलब एक देश के जिम्मेदार नागरिक बने।
3: बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा, ताकि अगर आपने उनको ट्रेनिंग दी है वो आर्म फोर्सेस में ना भी जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, अपना भी काम करें, तो एक उनके अंदर एक भावना हो
2: जी,
3: और दूसरा है वो डिसिप्लिन रहे, है ना, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज होती है अगर आपने एक बार डेवलप कर दी तो फिर
2: आजीवन है सर,
3: आजीवन है
2: जी।
3: और ये देखा भी गया है कि जो एनसीसी में होते हैं उनका एक अलग पर्सनालिटी होती है
2: जी, बिल्कुल सर, उनका व्यक्तित्व तो अलग ही झलकता है,
3: अलग ही झलकता है
2: जी।
3: हम इसके बारे में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र करते हैं।
2: हाँ जी, बिल्कुल।
3: अगर आप देखें तो दिल्ली में जो है हमारा एनसीसी हेडक्वार्टर है, जिसको कि डायरेक्टर जनरल एनसीसी जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं,
2: उसकी
3: इक्विवेलेंट जो एयरफोर्स और नेवी में होते हैं, वो उसको कमांड करते हैं। तो उसके बाद डायरेक्टरेट्स होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर।
2: अच्छा।
3: एमपी छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट है
2: जी।
3: तो ऐसे करके 17 डायरेक्टरेट्स हैं।
2: अच्छा।
3: और इनको जो है मेजरल या ब्रिगेडियर कमांड कर रहे होते हैं, और जो ये जो डायरेक्टरेट्स होते हैं उनके नीचे फिर ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं।
2: अच्छा।
3: तो ग्रुप हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो जनरली ब्रिगेडियर कर्नल जो है कमांड करते हैं, और फिर उसके नीचे जो बटालियंस होती हैं जो कि कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह एसोसिएटेड होती हैं उनके अंडर में स्कूल्स और फिर कॉलेजेस वगैरह आते हैं। तो ये जो बटालियंस होती हैं ये ग्रुप हेडक्वार्टर्स में आती हैं, और फिर बटालियंस के अंडर में कंपनीज आती हैं।
2: अच्छा,
3: ठीक है। तो जैसे अगर एक एरिया में अगर वहाँ पे एक बटालियन है तो उसके नीचे जितने स्कूल कॉलेजेस वगैरह होंगे वो आते हैं, उनके फिर वो कंपनीज में मतलब डिवाइडेड होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो बटालियंस जो होती है उसको अगेन कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड करते हैं, एंड जो उसके नीचे जो कंपनीज होती है स्टाफ होता है एनसीसी का, उसमें रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, तीनों विंग के होते हैं जो कि जनरली कमांड में होते हैं, और ग्रुप हेडक्वार्टर में जैसे एडम ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो भी उसके होते हैं
2: जी।
3: फिर इसके अलावा इसमें एक और एंट्री होती है, एएनओस होते हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स बोलते हैं, जो कि कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं या कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं एनसीसी में, जो वॉलंटियर करते हैं
2: जी।
3: तो उनको कॉलेज का जो होती है एनसीसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको कंट्रोल करते हैं।
2: अच्छा।
3: इनकी ट्रेनिंग होती है विमेन्स के लिए जो है ग्वालियर में है स्कूल का, और कॉलेज एनसीसी कॉलेज है, और कामटी में जो है ओटीएस कामटी है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जो है परमानेंट स्टाफ होता है उसमें ये आर्म फोर्सेस का होता है।
2: अच्छा।
3: फिर सिविलियंस होते हैं जो कि मतलब सिविल स्टाफ होते हैं जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है वो रहता है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिक्स होती है।
2: तो सर क्या जो संगठन है एनसीसी वो भी क्या रक्षा विभाग के अंतर्गत?
3: हाँ जी, ये रक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही आता है। और जैसे हमने बताया कि इट्स टोटल तरह से मिक्स हो रहता है, तो इसमें जो स्टेट है स्टेट लेवल से भी एम्प्लॉइज होते हैं, देन उसके बाद जो है आर्म फोर्सेस के होते हैं, सिविलियंस होते हैं, सब मिलके होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है एनसीसी में वो होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है सबसे ज्यादा महत्व रखती है एनसीसी में, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि इवॉल्व होते होते आज हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एनसीसी का वो बहुत ही सशक्त माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें कि सारे के सारे अपग्रेडेशन होते रहते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, और इसी से जो हमारे एम है जो एनसीसी के उसको पूरा करने में सक्षम है आज तक।
2: तो सर अब एक प्रश्न ये आता है कि स्कूल लेवल से यदि कोई बच्चा एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी कितनी उम्र होना चाहिए या वो किस स्टैंडर्ड से एनसीसी ज्वाइन कर सकता है?
3: गुड, देखिए एनसीसी के दो विंग्स होते हैं, एक होता है सीनियर डिवीजन होता है, एक होता है जूनियर डिवीजन
2: जी।
3: जूनियर डिवीजन से हम बात करते हैं, जूनियर डिवीजन 9th 10th 11th 12th में होता है।
2: अच्छा,
3: तो उस उम्र के बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं, और सीनियर डिवीजन कॉलेज में होता है। तो ये जो होते हैं बच्चे जो है उसके हिसाब से जो क्लास में होते हैं जिस क्लास में वो उसमें वो लोग ज्वाइन करते हैं, तो उनको वहाँ पे ये इंडिपेंडेंस रहती है कि उस कॉलेज का एसोसिएशन जिस के साथ है, आर्मी के साथ है, नेवी के साथ है, एयरफोर्स के साथ है, तो अकॉर्डिंगली दे आर एबल टू ज्वाइन।
2: तो सर ये तो हो गया कि हमने एनसीसी ज्वाइन कर ली, तो अब ट्रेनिंग किस तरह से होती है उनकी?
3: एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है
2: जी,
3: उसको अगर हम बोलें जैसे एक तो होता है वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, उसको हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कॉलेज में स्कूल्स में हफ्ते में एक दिन जो है दो दिन जो है परेड्स होती हैं,
2: हाँ जी,
3: और उनके लेक्चर्स होते हैं, है ना, तो वो उसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स बोलते हैं।
2: अच्छा।
3: उसके बाद जो होता है कैंप्स होते हैं
2: जी।
3: कैंप्स का एनसीसी में बहुत महत्व,
2: बहुत महत्व है सर।
3: मैं भी एनसीसी ऑफिसर रहा हूँ और आप भी एनसीसी स्टूडेंट रही हैं, तो हम दोनों समझते हैं कि कैंप्स की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब इट हैज गॉट अ स्पेशल प्लेस, और जितना आपको वहाँ सीखने मिलता उतना शायद कहीं नहीं मिलता। तो इनके जो कैंप्स होते हैं उसमें एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जो कि साल में एक बार जो हेड होता है, एंड उसमें जो सेम लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, टीम स्पिरिट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ड्रिल्स होती है, फिजिकल फिटनेस, वेपन ट्रेनिंग एंड इवन सोशल एक्टिविटीज। आपको याद होगा लोग सोशल एक्टिविटीज करते थे। मुझे कैंप्स की एक बात बहुत अच्छी लगी थी जब मैं भी था तब भी, कि ये कैंप्स में सबसे बड़ी मदद जो मिलती है जो हमारा सोशल डिफरेंस होता है, सोशल इनइक्वालिटी जो हो रहती है कि आप कहाँ से आए हो, किस घर से हो, आप कितने अमीर हो, क्या है, मतलब वो सब खत्म हो जाता है,
2: सब खत्म हो जाता है सर, सब एक हो जाते हैं,
3: सब एक हो जाते हैं, और आप सबके साथ मिलके रहना सीखते हैं।
2: हाँ जी बिल्कुल सर,
3: आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं केयरिंग की, शेयरिंग की, है ना, डिसिप्लिन की, क्वालिटी की, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। मुझे अभी भी मतलब याद है कि जो मेरा एनसीसी का पहला कैंप था उसमें मतलब ये सब चीजें जब देखने को मिली थी, आप समाज के बहुत सारे अलग अलग तबके के लोगों से मिलते हैं, गांव के बच्चे वहां पे आते थे, तो किसी के फादर किसान थे जो, और मुझे उनके बारे में इतनी जानकारी कभी नहीं हुई थी जितनी कि उस कैंप में जो 10 से 12 दिन का जो हमने कैंप किया था ट्रेनिंग कैंप, उस दौरान हुई, और उस समय जो दोस्ती भी जो होती है वो बहुत ही अच्छी मतलब वो रही। इसी तरह से ये जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं ये ग्रुप और डायरेक्टरेट लेवल पे होते हैं स्टेट में। फिर उसके बाद दूसरे कैंप्स होते हैं जैसे सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स होते हैं,
2: अच्छा,
3: जो कि डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेवल पे प्लान किए जाते हैं। इसमें लीडरशिप कैंप्स होते हैं, ट्रैकिंग्स होती हैं, रॉक क्लाइंबिंग वाले कैंप्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं। इवन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें कि जो सेलेक्टेड कैडेट्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ मेजर मेजर अपॉर्चुनिटी व्हिच दे गेट टू इंटरेक्ट विद द फॉरेन कंट्री स्टूडेंट्स। वो रहता है, लीडरशिप कैंप्स रहते हैं, देन एक एसएसबी ट्रेनिंग कैंप रहता है।
2: अच्छा,
3: यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूंगा एसएसबी ट्रेनिंग कैंप का।
2: जी बिल्कुल सर।
3: ये जो कैंप होता है इसमें आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कैसे फेस करते हैं,
2: अच्छा,
3: उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे रहता है, उसके बारे में पूरा आपको बताया जाता है। और आई थिंक ये ट्रेनिंग कैंप्स जो थे, फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप 1986 में ऑर्गेनाइज हुआ था।
2: अच्छा।
3: इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका हिस्सा था।
2: क्या बात है सर।
3: और मैं आज भी एनसीसी को धन्यवाद देता हूँ कि उस ट्रेनिंग कैंप के कारण ही जो है, उसके बाद मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया था, आर्म फोर्सेस के लिए, एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था।
2: क्या बात है
3: जी। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू एनसीसी
2: सर
3: दैट हैड सेंड मी अक्रॉस फॉर दिस ट्रेनिंग कैंप, एसएसबी ट्रेनिंग कैंप। इट वाज इन ओटीएस कामटी में हुआ था। इट वाज अ वंडरफुल थिंग एंड आई बिलीव टिल डेट इट इज कंटिन्यूइंग। तो ऐसे और भी मतलब बहुत सारे स्पेसिफिक सर्विस ओरिएंटेड कैंप्स भी होते हैं जो अलग अलग आर्मी नेवी एयरफोर्स भी कराती है। एंड सबसे जो बड़ा कैंप होता है उसको रिपब्लिक डे कैंप बोलते हैं, आरडीसी। मतलब उसका नाम सुनते ही हर एनसीसी के कैडेट के मतलब जो है
2: का सपना होता है सर उस कैंप में सेलेक्ट होने का।
3: उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि आरडी का करना है।
2: जी बिल्कुल सर।
3: 1 जनवरी से 29 जनवरी को तक जो है हर साल ये होता है। एंड इट इज लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईयर।
2: बिल्कुल सर।
3: और उसमें सिलेक्शन कितना टफ होता है, आपको कितना प्रूव करना पड़ता है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कंसिडर्ड एट नेशनल लेवल इज कि इट इज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
2: प्रेसिडेंट।
3: और जो कल्मिनेशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब
2: प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल सर।
3: एंड उसमें जितने कॉम्पिटिशन होते हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बैनर दिया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग फॉर अ स्टेट टू गेट। ड्रिल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना मतलब बहुत बड़ा होता है। और कितने सारे कॉम्पिटिशन होते हैं जब हमने वहाँ पे देखे हैं, तो इसमें ओनली सिलेक्टेड कैडेट्स ओनली
2: पूरे राष्ट्र से सेलेक्ट होके आते हैं सर।
3: बिल्कुल, पूरे के पूरे स्टेट्स के जो है बच्चे वहाँ पे मिलते हैं। और क्या माहौल होता है, कितना मतलब सीखने को मिलता है। इसमें एक और एक एम अचीव होता है हमारा कि हम जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करते हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए।
2: जी बिल्कुल।
3: एनसीसी का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि आप जो है बच्चों को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कर सके। और इस मकसद में ये जो कैंप्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: इसके अलावा एक और बहुत अच्छा कैंप एनसीसी कराती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें कि अगेन जो नेशनल इंटीग्रेशन कल्चर एंड कम्युनल हार्मोनी के बारे में नेशनल लेवल पे होता है। अलग अलग स्टेट से जो है कैडेट्स आते हैं, मिलते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप मतलब जो है ऑर्गेनाइज करे जाते हैं एनसीसी की तरफ से। रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, मिलिट्री अटैचमेंट्स होते हैं जो कि हमारे जैसे इंडियन आर्मी के बटालियंस के साथ होते हैं, ताकि उनको एक मौका मिलता है कि बटालियन में कैसी फंक्शनिंग होती है, सोल्जर्स कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे रहते हैं। इवन ओटीए आईएमए वगैरह में भी उनको जो है मौका दिया जाता है।
2: तो सर आपने तो ये जो कैंप की बात की, इसके साथ एक प्रश्न मेरे मन में ये भी आता है कि जब कोई भी बच्चा एनसीसी ज्वाइन करता है तो क्या उन्हें कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं या कोई स्कॉलरशिप भी होती है क्या?
3: बिल्कुल होती है
2: जी।
3: अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेनिंग की और ये सब तो है ही। इसके अलावा सबसे बड़ा जो उनको इंसेंटिव मिलता है जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिलता है, एंड प्राइमरली इन आर्म फोर्सेस। अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं सीनियर डिवीजन के आर्म फोर्सेस में, अगर आप अफसर बनने के लिए जाते हैं, जैसे अगर आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम जो होता है, तो उसका रिटन एग्जाम आपका वेव ऑफ हो जाएगा।
2: अच्छा,
3: आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हैं।
2: हाँ, यानी आपको लिखित परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं,
3: आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत बड़ा जो है इंसेंटिव है, मैं नहीं समझता इससे बड़ा कोई इंसेंटिव हो सकता है।
2: बिल्कुल सर।
3: एंड बच्चे जो रिक्रूटमेंट पे जाते हैं तो उनको वहाँ पे 5-10% बोनस मार्क्स मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के किसका रिक्रूटमेंट है, कौन से डायरेक्टर करा रही है, इन्फेंट्री है, मतलब अलग अलग वो रहता है। तो उसके हिसाब से 5-10% बोनस मार्क्स देते हैं। देन अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे, वो लोग बोनस मार्क्स देते हैं, जो है प्रेफरेंस देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं, पुलिस फोर्सेस में अप्लाई करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इवन रिजर्वेशन फॉर वुमेन आल्सो देयर, ठीक है, महिलाओं के लिए भी जो है सर्विसेज में रिजर्वेशन होता है।
2: जी,
3: और ये जो बच्चे होते हैं जो एनसीसी क्वालिफाइड होते हैं, अगर ये आगे चल के एनसीसी में ही किसी अपॉइंटमेंट में काम करना चाहते हैं, लाइक वो एएनओ बनना चाहते हैं या परमानेंट स्टाफ में जो विमेन आना चाहते हैं, तो उनको जो है प्रेफरेंस मिलता है। एंड एक इनकी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी होती है।
2: अच्छा।
3: अगर किसी कैडेट को किसी तरह की इंजुरी हो जाती है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई कैटल इंजुरी होती है तो भी को जो है असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है। और बहुत सारे स्टेट लेवल पे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं एनसीसी के, उनको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। ओवरऑल इंसेंटिव्स तो बहुत ज्यादा है इसमें, हम नटशेल में बता रहे हैं। और ये टाइम टू टाइम इनके बारे में और आते रहते हैं।
2: जी सर, हम कहीं भी अप्लाई करते हैं और यदि हमारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जो इंटरव्यूअर है उसका देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इंटरव्यूअर का देखने का नजरिया बदल जाता है, आपकी खुद के एक कॉन्फिडेंस में फर्क आता है, आपको बिल्कुल पर्सनैलिटी फर्क आता है, आप कैसे अंदर जाते हैं, वॉक करते हैं, वो बहुत मायने रखता है और बहुत फर्क आता है। और पता नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब हम एनसीसी में ओटीएस कमिटी में से, जैसे मैंने बताया एडवांस लीडरशिप कोर्स कर रहे थे, तो हम तीन दोस्त बने थे, तीन लोग, एक उसमें से नॉर्थ के थे, एक साउथ के, और एक मैं सेंट्रल भोपाल से था। एंड आज तक हम तीनों दोस्त हैं।
2: वो समय ही सर ऐसा रहता है, वो कैंप का समय तो कभी भूला नहीं जा सकता,
3: मतलब आज तक हमारी दोस्ती बरकरार है। और अभी अभी रिसेंटली ही, मतलब मेरे, हम तीनों से एक जो दोस्त है उसके बेटे की शादी थी, तो हम सब वहाँ फिर से एकत्रित हुए थे। और आज भी जब मिले थे तब भी हम एनसीसी को याद कर रहे थे, वो कैंप को याद कर रहे थे, एक दूसरे से वही बात हो रही थी। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ व्हिच आई हैड स्पेंड इन एनसीसी एज अ कैडेट। एंड आई से कि दिस इज वन organization which is doing an extremely wonderful job in training, in orienting, in disciplining the young youth.
2: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि एनसीसी युवाओं का एक ऐसा संगठन है जो एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना जगाकर बड़ा ही मौलिक बदलाव लेकर आता है। कठोर प्रशिक्षण विद्यार्थी को टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क और साथ ही निर्णय लेने की कुशलता सिखाता है, जो आगे उसके जीवन के हर क्षेत्र में उसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। नियमित व्यायाम, खेल और ड्रिल, उनमें शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं, जबकि तरह तरह की सामुदायिक सेवाएं उन्हें समाज और देश के प्रति जिम्मेदार होना सिखाती हैं। श्रोताओं, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की शक्ति उन्हें जीवन की चुनौतियों से निडरता से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने की ताकत देती है। एनसीसी उन्हें एक बेहतर नागरिक और एक सक्षम इंसान बनने में मदद करता है। तो फिर प्रेरित करिए अपने नौनिहालों को और अपने युवाओं को कि वे एनसीसी जरूर ज्वाइन करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आज की कड़ी का यहीं समापन करते हैं। सर, आपने एनसीसी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद पूर्वा जी, धन्यवाद श्रोताओं, जय हिंद।
2: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना रही अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE, हुगली के तट से समुद्र की शक्ति तक।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। पिछले भाग में हमने जाना था माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की प्रेरक कहानी के बारे में। हमने सुना था कि किस तरह मुंबई के तट पर स्थित इस प्रतिष्ठित शिपयार्ड ने युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण के द्वारा भारत की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाइयां दी। माझगांव डॉक की यात्रा से दादू ने रुचि को ये भी समझाया कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल विचारों का नहीं बल्कि उन हाथों से साकार होता है जो राष्ट्र निर्माण में जुटे रहते हैं।
1: आज भी दादू और रुचि मुंबई के समुद्र तट पर एक साथ बैठे हैं। सामने अथाह समुद्र है, लहरों का मधुर संगीत है और क्षितिज पर आगे बढ़ते जहाज हैं। माझगांव डॉक की विशाल क्रेनों और युद्धपोतों की यादें अभी भी उनके मन में ताजा हैं। लेकिन भारत की समुद्री शक्ति की कहानी केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। अरब सागर के इन तटों से बहुत दूर देश के पूर्वी भाग में हुगली तट के किनारे स्थित है देश का एक और ऐतिहासिक संस्थान जिसने लगभग 2 शताब्दियों की यात्रा तय की है।
0: एक ऐसा संस्थान जिसने कभी लकड़ी की साधारण नौकाओं की मरम्मत से अपनी शुरुआत की थी और आज अत्याधुनिक युद्धपोतों, गश्तीपोतों और अनेक उन्नत समुद्री प्लेटफॉर्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये कहानी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE की। तो आइए समुद्र की इन लहरों के साथ हम भी निकल पड़ते हैं एक नई यात्रा पर मुंबई के तट से हुगली नदी के किनारों तक और वहां से भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति की एक और प्रेरक गाथा की ओर।
1: दादू, अगर हम इस समुद्री मार्ग का पीछा करें तो हमें देश के और भी महत्वपूर्ण बंदरगाह और शिपयार्ड मिलेंगे।
0: हाँ बच्चे, बिल्कुल मिलेंगे।
1: अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा शिपयार्ड है जिसने कभी लकड़ी की नावों की मरम्मत से अपने सफर की शुरुआत की थी और आज अत्याधुनिक युद्धपोत बना रहा है, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे?
0: विश्वास क्यों नहीं करूंगा बिटिया, क्योंकि मैं उस शिपयार्ड के बारे में जानता हूँ।
1: सच में? तो फिर बताइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ।
0: गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE शिपयार्ड की।
1: सही पकड़ा दादाजी। चलिए तो आज आपसे इसके बारे में ही सुनती हूँ, बताइए ना।
0: ठीक है बेटा, सुनो। आज जिस संस्थान की हम बात करने वाले हैं उसकी कहानी लगभग 150 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। वर्ष 1884 में जब कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे एक छोटे से शिपयार्ड की नींव रखी गई थी, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में यही संस्थान भारत की समुद्री शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाएगा।
1: दादू, 150 वर्षों से भी अधिक पुरानी?
0: हाँ बेटा, उस समय वहाँ मुख्य रूप से नौकाओं और छोटे जहाजों की मरम्मत और निर्माण का काम होता था बस। लेकिन समय के साथ साथ ये शिपयार्ड बढ़ता गया, नई नई तकनीकें आती गईं और धीरे धीरे आधुनिक जहाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता गया।
1: मतलब शुरुआत भले ही छोटी रही हो दादाजी, लेकिन समय के साथ इसकी क्षमताएं भी बढ़ती गई होंगी।
0: हाँ, हर बड़े संस्थान की तरह GRSE ने धीरे धीरे अनुभव, तकनीक और संसाधन जुटाए। यही कारण है कि आगे चलकर आज ये भारत का प्रमुख शिपयार्डों में शामिल हो गया।
1: दादू, मैं कुछ सोच रही हूँ।
0: क्या सोच रही हो बेटा?
1: यही कि उस समय ना तो मोबाइल थे, ना कंप्यूटर थे और ना आज जैसी आधुनिक मशीनें थी, फिर इतने बड़े जहाजों का निर्माण भला कैसे होता होगा?
0: सब होता था बेटा, कुशल कारीगरों, अभियंताओं की समझ और वर्षों के अनुभव के आधार पर सब कुछ होता था। तकनीक आज जितनी उन्नत नहीं थी लेकिन लोगों का कौशल और समर्पण अद्भुत था।
1: यानी मशीनें कम थीं, लेकिन मेहनत और हुनर ज्यादा था।
0: बिल्कुल, और यही मेहनत आगे चलकर उस छोटे से शिपयार्ड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण जहाज निर्माण संस्थानों में बदलने वाली थी।
1: वाह, यानी GRSE की कहानी केवल जहाजों की नहीं बल्कि लगातार सीखने और आगे बढ़ने की कहानी भी है दादाजी।
0: सही कहा बेटा। और आज जब कोई भारतीय नौसैनिक समुद्र में गश्त करता है या कोई युद्धपोत देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में तैनात होता है, तब उसके पीछे हजारों अभियंताओं, डिजाइनरों और टेक्नीशियंस और श्रमिकों की मेहनत छिपी होती है। उन्हीं संस्थानों में से एक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी GRSE।
1: दादू, क्या हर युद्धपोत समुद्र के किनारे ही बनाया जाता है?
0: नहीं बिटिया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE हुगली नदी के किनारे स्थित है। सोचो, एक विशाल युद्धपोत नदी के तट पर आकार लेता है और फिर जलावतरण के बाद समुद्र की ओर अपनी पहली यात्रा शुरू करता है।
1: मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा अपने घर से निकलकर दुनिया देखने जाता है।
0: हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही। जलावतरण का दिन शिपयार्ड के अभियंताओं और श्रमिकों के लिए बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा माता पिता के लिए अपने बच्चे की पहली बड़ी सफलता का क्षण।
1: दादू, जब कोई युद्धपोत पहली बार पानी में उतरता है तब उसे देखकर कैसा महसूस होता होगा ना?
0: बहुत गर्व होता है बिटिया। वर्षों की मेहनत, हजारों लोगों का परिश्रम और अनगिनत सपने उस क्षण साकार होते दिखाई देते हैं। और मजे की बात यह है कि तब तक उस युद्धपोत को उसका नाम भी मिल चुका होता है।
1: अच्छा, तभी मेरे मन में ये सवाल आया कि आखिर इन युद्धपोतों के नाम इतने खास क्यों होते हैं? जैसे आपने बताया था गोदावरी, कोलकाता, शिवालिक, सतपुड़ा, खुकरी।
0: युद्धपोत का नाम केवल उसकी पहचान नहीं होता बेटा, बल्कि वो उसकी विरासत, गौरव और जिम्मेदारी का प्रतीक भी होता है।
1: वो भला कैसे?
0: देखो बेटा, जब किसी युद्धपोत का नाम शिवालिक रखा जाता है तो वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की याद दिलाता है। कोलकाता जैसा नाम भारत के एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नगर का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं खुकरी नाम साहस, वीरता और बलिदान की भावना को सामने लाता है।
1: वाह दादू, यानी हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है।
0: बिल्कुल, यही कारण है कि भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय बहुत सोच समझकर युद्धपोतों के नाम निर्धारित करते हैं। कई नाम नदियों, पर्वतों, ऐतिहासिक स्थलों, वीर योद्धाओं या भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रतीकों पर भी रखे जाते हैं।
1: मतलब नाम के पीछे भी एक संदेश होता है।
0: हाँ बेटा, जब कोई नौसैनिक INS शिवालिक, INS कोलकाता या किसी अन्य युद्धपोत पर सेवा करता है तो उसे केवल एक जहाज का नाम नहीं सुनाई देता बल्कि अपने देश की विरासत, परंपरा और कर्तव्य का स्मरण भी होता है।
1: दादू, तो क्या GRSE में बने युद्धपोत भी ऐसी ही कहानियां अपने साथ लेकर समुद्र में उतरते हैं?
0: हाँ बेटा, GRSE में बने अनेक युद्धपोत और गश्तीपोत केवल लोहे और मशीनों का ढांचा नहीं होते, वे भारत की संस्कृति, तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की कहानी लेकर समुद्र की लहरों पर आगे बढ़ते जाते हैं।
1: वाह दादाजी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि हर युद्धपोत के नाम के पीछे भी एक पूरा का पूरा इतिहास छिपा होता है।
0: और यही इतिहास उसे केवल एक जहाज नहीं बल्कि राष्ट्र की पहचान का चलता फिरता प्रतीक बना देता है।
1: दादू, जलावतरण का दिन शिपयार्ड के हर अभियंता, तकनीशियन और कर्मचारी के लिए गर्व और भावनाओं से भरा होता होगा। इतने वर्षों की मेहनत पहली बार अपने आंखों के सामने साकार जो होती दिखाई देती है उन्हें।
0: हाँ बेटा, जिस जहाज को वर्षों तक शिपयार्ड के भीतर बनाया गया वो पहली बार समुद्र से अपना परिचय करता है, ये कभी ना भूलने वाले पल होते हैं।
1: दादू, मेरे मन में एक सवाल बचपन से है।
0: पूछो बच्चे।
1: लोहे की कील पानी में डालो तो डूब जाती है ना?
0: हाँ।
1: लेकिन लोहे का विशाल जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा भला क्यों होता है?
0: ये विज्ञान का बहुत रोचक सिद्धांत है जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं।
1: दादू, ये सिद्धांत किस तरह से काम करता है और उसकी खोज कैसे हुई थी?
0: ये कहानी लगभग 2000 साल पुरानी है बेटा। यूनान में एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। एक दिन वे नहाने के लिए टब में बैठे, जैसे ही वे पानी में उतरे कुछ पानी बाहर निकल गया
2: उसी पल उनके मन में विचार आया कि कोई वस्तु जितना पानी हटाती है उतना ही उछाल बल उसे ऊपर की ओर मिलता है। कहते हैं कि वे इतना खुशी में यूरेका यूरेका कहते हुए बाहर दौड़ पड़े।
1: यानी आज के आधुनिक युद्धपोत भी उसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर तैरते हैं।
2: हाँ बेटा, विज्ञान के सिद्धांत समय के साथ पुराने नहीं होते। तकनीक बदल सकती है, जहाजों का आकार बदल सकता है, लेकिन विज्ञान के मूल सिद्धांत वही रहते हैं।
1: इसका मतलब जहाज निर्माण में विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है दादाजी।
2: बेशक, अभियंता जहाज को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उसका भार और उसका आकार पानी में संतुलन बनाए रखे। इसी कारण हजारों टन वजन वाला विशाल युद्धपोत भी पानी की सतह पर सुरक्षित रूप से तैर सकता है।
1: वाह दादाजी, यानी देखने में भले ही वह लोहे का विशाल पहाड़ लगे, लेकिन उसके पीछे विज्ञान का कमाल छिपा होता है।
2: हाँ बेटा, जब कोई जहाज पानी में उतरता है तो वो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करता है। यही उत्प्लावन बल उसे डूबने से बचाता है और तैराए रखता है।
1: तो जहाज केवल लोहे से नहीं बल्कि विज्ञान और गणना से भी बनता है दादाजी।
2: एकदम सही बेटा, यही कारण है कि जहाज निर्माण में गणित, भौतिकी, अभियांत्रिकी और वर्षों का अनुभव सब कुछ मिलकर काम करते हैं।
1: अब समझ में आया कि समुद्र में तैरता हुआ हर युद्धपोत वास्तव में विज्ञान की एक चलती फिरती प्रयोगशाला जैसा होता है दादाजी।
2: और शायद इसी कारण जहाज निर्माण को विज्ञान और कौशल का अद्भुत संगम कहा जाता है।
1: दादू, GRSE तो हुगली नदी के किनारे पर है, फिर वहाँ बने युद्धपोत समुद्र तक कैसे पहुँचते?
2: यही तो इसकी सबसे रोचक बात है। जब जहाज का जलावतरण होता है तब वो पहले हुगली नदी में उतरता है।
1: और उसके बाद?
2: विशेषज्ञों की निगरानी में वो धीरे धीरे नदी के रास्ते बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता है।
1: ये ही उसकी पहली यात्रा होती है, मतलब जो नदी से शुरू होती है।
2: हाँ, कल्पना करो, सैकड़ों लोगों की मेहनत से बना युद्धपोत पहली बार जब पानी में चलता है तो वो क्षण शिपयार्ड के हर कर्मचारी के लिए कितना भावुक और गर्व से भरा हुआ होता होगा।
1: और दादू, जब जहाज बन जाता है तो क्या नौसेना उसे तुरंत अपने बेड़े में शामिल कर लेती है?
2: नहीं नहीं बेटा, उससे पहले कई कठिन परीक्षण होते हैं।
1: कठिन परीक्षण? कैसे परीक्षण दादू?
2: देखो बेटा, पहले हार्बर ट्रायल होते हैं। इनमें जहाज की मशीनें, बिजली व्यवस्था, रडार, संचार प्रणाली और अन्य उपकरणों की जांच की जाती है।
1: और उसके बाद?
2: फिर समुद्री परीक्षण यानी सी ट्रायल्स होते हैं।
1: सी ट्रायल्स, ये क्या होते हैं?
2: जहाज को खुले समुद्र में ले जाया जाता है, वहाँ उसकी गति जांची जाती है, मोड़ने की क्षमता देखी जाती है, ब्रेकिंग सिस्टम और इंजन की कार्य क्षमता परखी जाती है, रडार और हथियार प्रणालियों का परीक्षण किया जाता है।
1: मतलब जैसे किसी नए विमान की टेस्ट फ्लाइट होती है दादू।
2: बिल्कुल, युद्धपोत के लिए सी ट्रायल्स बिल्कुल वैसा ही होता है।
1: अच्छा ठीक है दादू, और यदि सभी परीक्षण सफल हो जाएं फिर?
2: यदि सभी परीक्षण सफल हो

0: यदि किसी प्रणाली में कमी पाई जाती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। जब तक नौसेना पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक जहाज को अंतिम स्वीकृति नहीं मिलती।
1: यानी युद्धपोत भी किसी विद्यार्थी की तरह परीक्षा देता है दादाजी।
0: बिल्कुल एकदम सही पकड़ा। फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि यहाँ परीक्षा में गणित और विज्ञान के प्रश्न नहीं होते बल्कि इंजन, रडार, हथियार और समुद्री क्षमता की जांच होती है।
1: दादू भारत में तो और भी शिपयार्ड है, फिर GRSE इसकी विशेषता क्या है?
0: GRSE केवल जहाज नहीं बनाता बल्कि उसके पास अपना इंजीनियरिंग और इंजन निर्माण प्रभाग भी है। दुनिया के बहुत कम शिपयार्डों के पास ये सुविधा होती है बेटा।
1: मतलब यहाँ जहाज के साथ साथ उसके कई महत्वपूर्ण उपकरण भी बनाए जाते हैं।
0: हाँ यही कारण है कि GRSE को एक बहुआयामी इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता है।
1: दादू
0: हाँ?
1: मुझे लगा था कि GRSE केवल बड़ी युद्धपोत ही बनाता है।
0: नहीं नहीं बेटा, यही तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये छोटे हार्बर क्राफ्ट, गश्ती पोत, तटरक्षक जहाज, सर्वेक्षण पोत, उभयचर पोत और आधुनिक युद्धपोत तक बनाता है।
1: दादू क्या एक ही संस्थान इतने प्रकार के जहाज और उपकरण बना सकता है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बस इसके लिए अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग और तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है।
1: दादू क्या युद्धपोत बनाते समय इंजीनियर केवल मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं?
0: नहीं बेटा, कंप्यूटर और मशीनें मदद करती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय और जिम्मेदारी मनुष्य की होती है। कई बार अनुभवी इंजीनियर वर्षों के अनुभव के आधार पर ऐसी छोटी छोटी बातें पहचान लेते हैं जिन्हें मशीनें तुरंत नहीं समझ पाती।
1: यानी तकनीकी और मानवीय अनुभव दोनों जरूरी है।
0: हाँ यही किसी महान संस्थान की पहचान होती है बेटा।
1: अच्छा दादू अब ये बताइए, क्या हुगली नदी का GRSE की सफलता में कोई योगदान है?
0: बहुत बड़ा योगदान है बेटा, बहुत बड़ा। हुगली नदी सदियों से व्यापार और जहाज रानी का महत्वपूर्ण मार्ग रही है। इसी नदी के किनारे GRSE का विकास हुआ। जब कोई नया जहाज बनकर तैयार होता है तो वो सबसे पहले हुगली की लहरों को महसूस करता है।
1: वाह दादू, जैसे कोई बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपनी माँ की गोद को महसूस करता है।
0: बहुत सुंदर तुलना की बेटा तुमने।
1: दादू
0: हाँ?
1: यदि कोई विद्यार्थी GRSE में काम करना चाहे तो उसके लिए कौन कौन से अवसर होते हैं?
0: अनेक अवसर होते हैं बेटा। नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उत्पादन इंजीनियरिंग और वेल्डिंग तकनीक जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हो।
1: और क्या ITI और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए भी अवसर होते हैं दादू?
0: हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं। कुशल टेक्नीशियंस किसी भी शिपयार्ड की रीढ़ होते हैं। वेल्डर, फिटर, मशीन ऑपरेटर, पाइप फिटर, इलेक्ट्रिशियंस और ड्राफ्ट्समैन जैसे विशेषज्ञों की हमेशा आवश्यकता रहती है।
1: दादू ये तो सच है कि कोई भी एक महान संस्था एक दिन में नहीं बनती।
0: सही कहा बिटिया, GRSE ने 1884 में एक छोटी कार्यशाला के रूप में शुरुआत की थी। आज ये विश्व स्तरीय युद्धपोत बनाने वाला संस्थान है। ये सफलता निरंतर सीखने, मेहनत करने और समय के साथ स्वयं को बदलने का परिणाम है।
1: दादू मतलब हम भी यदि निरंतर सीखते रहें तो बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।
0: क्यों नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल कर सकते हो और यही भारत की प्रगति का मंत्र है।
1: दादू समुद्र और नदियों के किनारे स्थित शिपयार्डों को क्या कभी प्राकृतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा?
0: हाँ हाँ बेटा, और GRSE की कहानी में भी ऐसी चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण स्थान।
1: तो बताइए ना, ये किस तरह की चुनौतियाँ होती है?
0: देखो बेटा, GRSE हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली केवल एक नदी नहीं बल्कि पूर्वी भारत के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है, लेकिन इसके साथ कई प्राकृतिक चुनौतियां भी जुड़ती हैं।
1: कैसे?
0: सबसे पहले तो मानसून। बरसात के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। कई बार तेज धारा और बदलते जल स्तर के कारण जहाजों की आवाजाही और निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ जाती है।
1: यानी शिपयार्ड को मौसम का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है दादाजी।
0: हाँ, और केवल बारिश ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात भी एक बहुत बड़ी चुनौती होते हैं।
1: चक्रवात? दादू तब तो स्थिति और भी कठिन हो जाती होगी।
0: हाँ हाँ बेटा, जब तेज हवाएं चलती हैं, समुद्र उग्र हो जाता है, तब बंदरगाहों और शिपयार्डों को विशेष सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ते हैं। निर्माणाधीन जहाजों, मशीनों और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है।
1: मतलब केवल जहाज बनाना ही कठिन नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दादाजी।
0: एकदम सही कहा बेटा।
1: दादू, आपने हुगली नदी की धारा का भी जिक्र किया था।
0: हाँ, हुगली नदी की एक विशेषता ये भी है कि इसमें समय समय पर गाद यानी मिट्टी और रेत जमा होती रहती है।
1: तो इससे क्या समस्या होती है दादू?
0: यदि नदी के किसी हिस्से में अधिक गाद जमा हो जाए तो जल मार्ग की गहराई प्रभावित हो सकती है। बड़े बड़े जहाजों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए समय समय पर ड्रेजिंग यानी नदी तल की सफाई का काम भी जरूरी होता है, जो बेटा बहुत जटिल काम है।
1: यानी जहाज निर्माण के साथ साथ जल मार्ग को भी उपयुक्त बनाए रखना पड़ता है।
0: बिल्कुल, यही कारण है कि शिपयार्ड का काम केवल कार्यशाला के भीतर ही सीमित नहीं होता, उसके आसपास का पूरा समुद्री और नदीय वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है।
1: दादू, ये सुनकर तो लगता है कि GRSE के इंजीनियर केवल मशीनों से ही नहीं बल्कि प्रकृति की चुनौतियों से भी जूझते होंगे।
0: बिल्कुल ठीक समझा तुमने। एक और आधुनिक तकनीक, विशाल क्रेने और उन्नत डिजाइन होते हैं, तो दूसरी ओर नदी की धारा, मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियाँ होती हैं।
1: फिर भी जहाज समय पर तैयार हो जाते हैं।
0: यही तो उनकी मेहनत और कुशलता का प्रमाण है बेटा। किसी भी बड़े शिपयार्ड की सफलता केवल तकनीक पर नहीं बल्कि चुनौतियों के बीच निरंतर कार्य करते रहने की क्षमता पर भी निर्भर करती है।
1: दादू, अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि GRSE की कहानी केवल जहाजों की कहानी नहीं है बल्कि संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास की कहानी भी है।
0: बिल्कुल बेटा, और शायद यही कारण है कि लगभग 150 वर्षों की यात्रा के बाद भी GRSE भारत की समुद्री शक्ति के महत्वपूर्ण स्तंभों में गिना जाता है।
1: दादू, भारत में और भी तो शिपयार्ड्स हैं, फिर GRSE क्यों खास है?
0: जैसा कि मैंने पहले भी कहा था बेटा, GRSE केवल जहाज नहीं बनाता बल्कि उसके पास अपना इंजीनियरिंग और इंजन निर्माण प्रभाग भी है। दुनिया के बहुत कम शिपयार्डों के पास ये सुविधा है बेटा।
1: हाँ, यहाँ जहाज के साथ साथ उसके कई महत्वपूर्ण उपकरण भी बनाए जाते हैं।
0: यही कारण है कि GRSE को एक बहुआयामी इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता है।
1: दादू, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी कभी गलतियाँ भी तो होती होंगी ना?
0: बेटा, मनुष्य जहाँ होगा वहाँ गलती की संभावना भी होगी, लेकिन महान संस्थान वही होते हैं जो गलती से सीखते हैं। एक बार एक इंजीनियर ने देखा कि जहाज के एक हिस्से की माप डिजाइन से कुछ मिलीमीटर अलग है। किसी साधारण व्यक्ति को ये अंतर बहुत छोटा लगता, लेकिन युद्धपोत निर्माण में मिलीमीटर भी महत्वपूर्ण होते हैं।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ दादू?
0: फिर पूरा हिस्सा दोबारा जांचा गया, कई घंटों की मेहनत लगी, लेकिन अंत में समस्या का समाधान कर लिया गया। यही कारण है कि युद्धपोत निर्माण में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
1: दादू, अगर युद्धपोत बोल पाते तो क्या कहते?
0: शायद वो कहते कि मैं हजारों भारतीय हाथों की मेहनत से बना हूँ, मेरे भीतर इंजीनियरों की बुद्धि है, मेरे भीतर टेक्नीशियंस का कौशल है और मेरा उद्देश्य अपने देश की रक्षा करना है।
1: वाह दादू, ये तो बहुत सुंदर बात बोली आपने। अच्छा दादू, क्या GRSE केवल नौसेना के लिए ही जहाज बनाता है?
0: नहीं नहीं बेटा, GRSE ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण जहाजों का निर्माण किया है।
1: और तटरक्षक बल का क्या काम है?
0: देखो बेटा, भारतीय नौसेना का मुख्य दायित्व देश की समुद्री सुरक्षा और रक्षा से जुड़ा हुआ होता है। वहीं तटरक्षक बल हमारे समुद्री तटों और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी तथा सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करता है।
1: मतलब ये समुद्र में 24 घंटे सतर्क रहता है?
0: बिल्कुल, तटरक्षक बल समुद्र में होने वाली तस्करी, अवैध गतिविधियों पर नजर रखता है। यदि किसी नाव या जहाज को सहायता की आवश्यकता हो तो खोज और बचाव अभियान भी चलाता है।
1: यानी समुद्र में किसी संकट की स्थिति में सबसे पहले मदद के लिए वही पहुंच सकता है।
0: कई बार ऐसा ही होता है बेटा। इसके अलावा चक्रवात, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय भी तटरक्षक बल राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: और प्रदूषण नियंत्रण की बात भी आपने कही थी।
0: हाँ हाँ बेटा, यदि समुद्र में तेल का रिसाव हो जाए या किसी अन्य कारण से प्रदूषण फैलने का खतरा बढ़ जाए तो तो उसे नियंत्रित करने में भी तटरक्षक बल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: यानी तटरक्षक बल केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मानव सेवा का कार्य भी करता है दादू।
0: हाँ बेटा, और इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आधुनिक तेज और विश्वसनीय जहाजों की आवश्यकता होती है। जीआरएसी द्वारा निर्मित अनेक जहाज तटरक्षक बल को यही क्षमता प्रदान करते हैं।
1: सो तो है दादू, अब समझ में आया कि जहाज निर्माण केवल युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और सहायता से भी जुड़ा हुआ होता है।
0: एकदम करेक्ट, यही कारण है कि जीआरएसी जैसे संस्थान देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदार माने जाते हैं।
1: दादू, क्या ऐसे जहाज लोगों की जान भी बचाते हैं?
0: हाँ बेटा, कई बार समुद्र में मछुआरों की नावें तूफान में फंस जाती हैं। कभी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में तटरक्षक जहाज सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। कल्पना करो, समुद्र में तेज तूफान है, लहरें कई मीटर ऊंची हैं और उसी समय एक बचाव पोत लोगों को सुरक्षित निकाल रहा है। ये भी राष्ट्र सेवा का एक महत्वपूर्ण रूप है बेटा।
1: अच्छा दादू, ये बताइए कि भविष्य के जहाज कैसे होंगे?
0: बहुत ही रोचक, उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ेगा। कुछ प्रणालियां स्वचालित होंगी, ईंधन की बचत होगी, रडार और सेंसर अधिक शक्तिशाली होंगे और जहाज पहले से भी अधिक सुरक्षित होंगे।
1: दादू, यानी आज के विद्यार्थी ही कल की तकनीक बनाएंगे?
0: हाँ बिल्कुल बेटा। अच्छा बिटिया, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ।
1: मुझसे?
0: हाँ हाँ
1: पूछिए।
0: यदि तुम्हें जीआरएसी में काम करने का अवसर मिले तो तुम क्या बनना चाहोगी?
1: शायद मैं डिजाइन इंजीनियर बनूं। मैं एक ऐसा जहाज बनाना चाहूंगी जो तेज भी हो और सुरक्षित भी।
0: वेरी गुड, हर बड़ा आविष्कार किसी विद्यार्थी के सपने से ही शुरू होता है। बिटिया, जीआरएसी की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। 1884 में ये एक छोटी सी कार्यशाला थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही संस्थान आधुनिक युद्धपोत बनाएगा, लेकिन निरंतर सीखने, मेहनत और नवाचार ने इसे नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया।
1: मतलब कोई भी संस्था छोटी शुरुआत से बड़ी बन सकती है दादाजी।
0: हाँ, और यही बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है। आज का विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक हो सकता है, आज का प्रशिक्षु कल का मुख्य अभियंता बन सकता है, और आज का सपना कल राष्ट्र निर्माण का आधार बन सकता है बिटिया।
1: अच्छा दादू, अगर मुझे एक दिन के लिए जीआरएसी में घूमने का मौका मिल जाए तो मैं वहाँ क्या क्या देखूंगी?
0: अरे बिटिया, फिर तो तुम्हारी आंखें आश्चर्य से खुली रह जाएंगी।
1: कैसे?
0: केवल स्टील की साधारण चादरें कैसे इंजीनियरों और टेक्नीशियंस के हाथों में पहुंचकर धीरे धीरे युद्धपोत का रूप लेने लगती है।
1: दादू, जब कोई युद्धपोत नौसेना में शामिल होता है तो लोग उसके कप्तान और नाविकों के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसे बनाने वाले लोगों का क्या?
0: यही तो सबसे रोचक बात है बेटा। युद्धपोत के पीछे हजारों ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम शायद कभी समाचारों में नहीं आए। कोई वेल्डर होता है, कोई इलेक्ट्रीशियंस होता है, कोई डिजाइनर होता है, कोई गुणवत्ता निरीक्षक होता है, लेकिन उन सभी की मेहनत मिलकर देश की सुरक्षा का आधार बनाती है।
1: मतलब ये सभी राष्ट्र निर्माण के नायक हैं दादाजी?
0: हाँ बेटा बिल्कुल है, और अक्सर सबसे बड़े नायक वही होते हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं।
1: अच्छा दादू, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जीआरएसी की कोई ऐसी घटना है जो आपको विशेष रूप से प्रेरित करती हो?
0: हाँ बेटा, जब भारत ने अपने दम पर आधुनिक युद्ध पोतों के डिजाइन और निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए, तब अनेक विशेषज्ञों ने कहा था कि ये काम बहुत कठिन होगा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अनुभव बढ़ा, तकनीक विकसित हुई और आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो आधुनिक युद्ध पोतों का निर्माण कर सकते हैं।
1: सही कहा दादाजी आपने, यानी आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से असंभव भी संभव हो सकता है।
0: यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है बिटिया।
1: अच्छा दादू, अब ये बताइए कि क्या भविष्य में भारत और भी उन्नत जहाज बनाएगा?
0: निश्चित रूप से बनाएगा बेटा, भविष्य में अधिक स्मार्ट, अधिक सुरक्षित, अधिक शक्तिशाली जहाज बनेंगे। हो सकता है उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का और अधिक उपयोग हो। हो सकता है वे ऊर्जा की कम खपत करें और हो सकता है कि उनमें से किसी जहाज के निर्माण में आज का कोई विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
1: और हो सकता है कि कौन जाने, शायद वो विद्यार्थी मैं ही हूँ दादाजी।
0: अरे क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल, बड़े सपने देखने वालों के लिए ही भविष्य नए रास्ते खोलता है।
1: श्रोताओं, हुगली नदी के तट पर स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड केवल एक शिपयार्ड नहीं है, बल्कि भारतीय प्रतिभा, तकनीकी कौशल और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। एक छोटी कार्यशाला से शुरू हुई इसकी यात्रा आज आधुनिक युद्धपोतों और समुद्री सुरक्षा की मजबूत नींव बन चुकी है। आइए हम भी इन संस्थानों से प्रेरणा लें और अपने ज्ञान, कौशल तथा परिश्रम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का, और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
0: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए,

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं भारत की महान क्रांति परंपरा से और उन विभूतियों से जिन्होंने अपने पराक्रम से समय की धार को बदल कर रख दिया और हमें ये अवसर प्रदान किया कि आज हम सारे विश्व के सामने सर उठा के जीते हैं।
2: इसी तारतम्य में आज बात करते हैं सरजू प्रसाद सिंह की, जिनका जन्म 21 फरवरी 1840 को हुआ था। श्रोताओं, जबलपुर मध्य प्रदेश के उत्तर में उस समय एक जागीर थी जिसका नाम विजय राघवगढ़ था। विजय राघवगढ़ और मैयर एक ही शासक के अधीन थे। जब जागीर का बंटवारा दो भाइयों में हुआ तो एक को मैयर और दूसरे को विजय राघवगढ़ मिला।
1: विजय राघवगढ़ के जागीरदार की मृत्यु हो जाने पर कंपनी सरकार ने रियासत को प्रतिपालय अधिनियम कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत लेकर वहां कंपनी सरकार का एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया। ये व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि रियासत के उत्तराधिकारी सरजू प्रसाद सिंह की अवस्था उस समय केवल 5 वर्ष की थी
2: और सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बालक सरजू प्रसाद 17 वर्ष के तरुण हो चुके थे। वो क्रांतिकारी स्वभाव के किशोर थे और अंग्रेजों से उन्हें घृणा थी। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने बंदूक और तलवार चलाना अच्छी तरह सीख लिया था और उन्हें घुड़सवारी में भी महारत हासिल थी और उनमें नेतृत्व के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते थे।
1: हम सरजू प्रसाद जी के बारे में और बातें करेंगे, आइए पहले सुनते हैं ये गीत।

0: सरजू प्रसाद सिंह ने आसपास के जागीरदारों को मिलाकर 3,000 प्रशिक्षित सैनिकों की एक सेना खड़ी कर ली थी और विद्रोह के पथ पे उन्होंने जो पहला काम किया वो ये था कि कंपनी सरकार द्वारा नियुक्त तहसीलदार को मारकर रियासत का प्रशासन पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था। और दूसरा जो काम उन्होंने किया वो ये था कि कंपनी सरकार की घुड़सवार सेना पे अधिकार करके सवारों को मार के भगा दिया और उनके स्थान पे अपने घुड़सवार नियुक्त कर दिए।
1: सरजू प्रसाद सिंह की संगठित सेना को खतरा ये था कि मिर्जापुर मार्ग से आकर अंग्रेजी सेना उस पर आक्रमण कर सकती थी। उसने मिर्जापुर सड़क पर अपना अधिकार करके इस खतरे को भी दूर कर दिया। अंग्रेजी सेना के कैप्टन उले के नेतृत्व में 1857 को एक सेना ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह से मुकाबला करने के लिए भेजी गई।
0: उस सेना की सहायता के लिए 4 नवंबर को मेजर सुलिवान के नेतृत्व में एक और सेना भेजी गई। सरजू प्रसाद सिंह की सेना ने उन दोनों अंग्रेजी सेनाओं को छिन्न भिन्न करके उनके हथियार लूट लिए। इस संयुक्त सेना को तहस नहस करने के बाद सरजू प्रसाद सिंह की सेना ने 6 नवंबर को मुरवाड़ा के समीप एक अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया और घायल होकर अंग्रेज सेनापति भाग निकला। इसके आगे क्या हुआ जानेंगे इस गीत के बाद।

0: अपनी इन निरंतर पराजयों से खिन्न होकर अंग्रेजों ने एक विशाल सेना 14 नवंबर को जबलपुर से भेजी। इस सेना के मेजर जॉन किंग के मारे जाने के कारण सेना स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इसके बाद एक और विशाल सेना जबलपुर से ही कैप्टन उले के नेतृत्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजी गई।
1: इस सेना का सामना सरजू प्रसाद के सहयोगी ठाकुर देवी सिंह ने किया और वे पराजित होकर गिरफ्तार हो गए। अंग्रेजों ने अपनी सहायता के लिए रीवा नरेश की सेना बुलवाई। बड़ी मुश्किल से रीवा और कंपनी सरकार की संयुक्त सेना विद्रोहियों का दमन कर सकी। सरजू प्रसाद सिंह को कई वर्षों बाद अंग्रेजी सेना ने गिरफ्तार किया।
0: ठाकुर देवी सिंह को फांसी का दंड दिया गया और सरजू प्रसाद सिंह को आजीवन कारावास, और विद्रोही तरुण सरजू प्रसाद सिंह ने जीवन भर जेल की कोठरियों में सड़ने के स्थान पर जीवन मुक्ति का उपाय अपनाया। एक दिन उन्होंने अपने पेट में कटार मारकर आत्म बलिदान का पथ अपना लिया
1: और इस तरह शहीद हुआ एक और देशभक्त आजादी की बलिवेदी पर। हमारा उनको सादर नमन।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति थी स्वराज संस्थान संचालनालय की। गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जन गर्जे में से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

जिसमें अमृत से मध्य प्रदेश की प्रस्तुति हुई, जिसने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से विदेशी प्रतिनिधियों को रूबरू कराया।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपको देते हैं भोपाल शहर में हो रही साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी की।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। भोपाल में हुए ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन में इस बार चर्चा केवल बैठकों और कूटनीति की ही नहीं, बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक विरासत की भी हो रही है जिसने सदियों से दुनिया को जोड़ा है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में लगी तीन विशेष प्रदर्शनियां प्रोजेक्ट मौसम, बृहत्तर भारत और ज्ञान भारतम भारत की समुद्री सभ्यता, वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों और हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत कर रही है। यही वजह है कि ये एग्जीबिशन सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण बन गई है। श्रोताओं, रविवार यानी आज भी ये एग्जीबिशन आम लोगों के लिए खुली रहेगी। कुछ झलकियां हम आपको बता देते हैं। एग्जीबिशन में बताया गया कि आधुनिक सीमाएं बनने से पहले भारत व्यापारियों, बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों और कलाकारों के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और कई देशों से जुड़ा हुआ था। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म प्रचार, इंडोनेशिया के प्रबनन मंदिर, थाईलैंड की वैदिक परंपरा और सिल्क रूट जैसे उदाहरण बताते हैं कि भारतीय संस्कृति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया। प्रोजेक्ट मौसम एग्जीबिशन में बताया गया कि समुद्री रास्तों के जरिए भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच 2000 साल पुराने रिश्ते रहे हैं। मानसूनी हवाओं ने इन देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और सभ्यताओं को जोड़ा। इमर्सिव फिल्म, डिजिटल डिस्प्ले के जरिए आगंतुक साझा समुद्री विरासत को समझते हैं। प्रदर्शनी में यूनेस्को के बहुराष्ट्रीय विश्व धरोहर नामांकन की अवधारणा भी दिखाई गई।

AI आधारित डिजिटलीकरण की जानकारी दी गई है। 16वीं शताब्दी की लीलावती रेखा गणित सिलिकॉन वेफर पर संरक्षित श्रीमद् भगवद गीता पंचतंत्र और निरुक्त जैसी दुर्लभ पांडुलिपियां भारतीय गणित दर्शन साहित्य और भाषा विज्ञान की समृद्ध विरासत का परिचय कराती हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में मध्य प्रदेश पवेलियन ने भी विदेशी प्रतिनिधियों का ध्यान खींचा। सांची स्तूप के तोरण द्वार की प्रतिकृति पर आधारित इस पवेलियन में खजुराहो भीम बैठिका मांडू महेश्वर और प्रदेश के टाइगर रिजर्व इको टूरिज्म स्थलों और लोक एवं जनजातीय कलाओं को आधुनिक विजुअल डिस्प्ले के जरिए प्रस्तुत किया गया है। गोंड चित्रकला मृदा शिल्प और नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी पारंपरिक कलाएं भी इसमें प्रदर्शित की गई हैं। इन प्रदर्शनियों के जरिए भारत न केवल अपनी सांस्कृतिक और ज्ञान विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है, भारत ब्रिक्स देशों के बीच साझा इतिहास सांस्कृतिक संवाद और सहयोग की भावना को भी नई मजबूती दे रहा है।

श्रोताओं, अब चलते हैं आपको हम लेकर रंग कर्मियों की संस्था त्रिकाशी आगामी 12 अगस्त को नाटक आकार का मंचन करेगी। वरिष्ठ नाटककार ललित सहगल द्वारा लिखित इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन श्री केजी त्रिवेदी चच्चा ने किया है। नाटक का मंचन ख्याल पर किया जाएगा। प्रस्तुति में मानवीय रिश्तों, जीवन के अंतर्द्वंद और सामाजिक यथार्थ को प्रभावशाली रंगमंचीय भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार आकार केवल एक नाटक नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर चल रहे संघर्ष, उसकी पहचान और बदलते सामाजिक परिवेश को समझने का प्रयास है। प्रभावी अभिनय, सशक्त निर्देशन और मंचीय प्रयोगों के साथ तैयार ये प्रस्तुति रंगमंच प्रेमियों के लिए एक अलग अनुभव होगी। अस्सी और 90 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीतों की मधुर धुनों ने शनिवार शाम रंगबंध ऑडिटोरियम स्थित रंग श्री लिटिल बैलेट ट्रुप को यादगार संगीत महफिल में बदल दिया। सुरसाज म्यूजिकल ग्रुप और जीलानी वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दिल से दिल तक कार्यक्रम में एक के बाद एक सुपरहिट गीतों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को पुरानी यादों में डुबो दिया।

और श्रोताओं, आइए अब आपको बताते हैं भोपाल शहर में आज होने वाली गतिविधियों के बारे में। चेतना रंग समूह की ओर से दो व्यंग्यात्मक शॉर्ट प्ले एडमिशन 2050 और लेटर बॉक्स का मंचन किया जाएगा। दोनों में युवा और स्टूडेंट रंगकर्मियों की क्रिएटिव सोच, एक्टिंग कैपेसिटी और रंगमंच के प्रति समर्पण नजर आएगा। वरिष्ठ रंगकर्मी आशीष श्रीवास्तव के लेखन और मार्गदर्शन में ये तैयार किए गए हैं। आप जा सकते हैं चेतना थिएटर शाम 7 बजे से। प्रवेश निःशुल्क रहेगा। वहीं जनजातीय संग्रहालय में आज 2 बजे से संभावना श्रृंखला के तहत लोक और जनजातीय कला की दो प्रस्तुतियां होने वाली हैं। इसके तहत गौंड जनजाति द्वारा गोंडी नृत्य की प्रस्तुति राम कुमार परस्ते और ग्रुप के द्वारा दी जाएगी। साथ ही बीन बादन और नृत्य की प्रस्तुति जितेंद्र कुमार शर्मा और साथियों के द्वारा दी जाएगी।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं।
1: तृतीय सर्ग में हमने देखा, एक पुरुष ने राज्य को ठुकरा कर वचन को अपना राजमुकुट बना लिया। कर्ण ने दिखा दिया कि मनुष्य का कद उसके जन्म से नहीं, उसके निर्णय से मापा जाता है। वहां कथा नहीं, चरित्र बोल रहा था। वहां संवाद नहीं, संकल्प गूंज रहा था। वृक्ष फल देकर रिक्त नहीं होता, वह और हरित होता है। सरिता जल देकर सूखती नहीं, वह पुनः मेघों में भरती है। यही आत्मदान का अशाश्वत नियम है। जो देता है वही सचमुच पाता है। जो अंतिम मूल्य हंसकर चुका दे वही अमरता का अधिकारी होता है। श्रोताओं, चतुर्थ सर्ग की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दिनकर जी को यूं ही राष्ट्रकवि नहीं कहा गया। उनकी वाणी सोई हुई चेतना को झकझोरती है, मनुष्य को उसके आत्मबल का बोध कराती है।
0: बिल्कुल, रश्मि रथी में मानवीय मूल्यों का ऐसा ही समन्वय है, जहां दर्शन भी है, सिद्धांत भी, इच्छा भी है, संयम भी, छल और द्वेष की छाया भी है, तो प्रेम, दान और तपस्या की उज्जवल आभा भी। ये काव्य केवल घटनाओं का अनुक्रम नहीं, मानव हृदय का महागान है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग एक का काव्य पाठ। प्रेम यज्ञ अति कठिन, बंधुता की अद्भुत अभिमानी। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधेय बंधुता की अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों, नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हंसती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर, तो और मूल्य क्या देना। करने लगे मोह प्राणों का, तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे ये मूल्य ना मिलता वो मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। ये ना स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं।
1: ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देय वास्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए रहें, डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रिजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया। अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवा कर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने तीन गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मनसूर नियति की सह पाया ना ठिठोली, उत्तर में सौ बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना ही पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं।
0: श्रोताओं, अभी जो पंक्तियां हमने सुनी वे केवल कविता नहीं थी, वे एक अग्निकुंड थी। प्रेम यज्ञ अति कठिन से आरंभ होकर यह भाग हमें भीतर तक टटोलता है। कितनी सहजता से कवि पूछते हैं, प्रण लेना आसान है, पर क्या हम उसका अंतिम मूल्य चुकाने को तैयार हैं? त्याग की बातें सब करते हैं, पर जब सर्वस्व अर्पण की घड़ी आती है, तभी सच्चा मनुष्य पहचाना जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम सुविधा के युग में हैं, जहां हर चीज हमें तुरंत चाहिए, पर तपस्या का धैर्य नहीं। इस काव्यांश में कवि कहते हैं, व्रत का अंतिम मोल चुकाना ही असली परीक्षा है। और हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे, लोग नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, किंतु मूल्य चुकाने का साहस कम ही दिखता है।
0: और दान, आज दान भी प्रदर्शन बनता जा रहा है, पर यहां दान को जीवन का झरना कहा गया। जैसे वृक्ष फल देकर स्वयं को बचाता है, जैसे सरिता बहकर निर्मल रहती है, यदि हम रोक लें, सहेज लें, केवल अपने लिए जी लें, तो क्या हम सचमुच जीवित रह पाते हैं, या भीतर ही भीतर सूखने लगते हैं?
1: यही तो इस भाग की प्रासंगिकता है। आज दुनिया में स्पर्धा है, स्वार्थ है, आगे निकल जाने की होड़ है, किंतु इतिहास उन्हीं का स्मरण करता है जिन्होंने अंतिम मोल हंसकर चुकाया, चाहे वह त्याग हो, सत्य हो या मानवता। ये काव्य हमें याद दिलाता है कि अमरता सुविधा से नहीं, साहस से मिलती है। ये केवल कर्ण की भूमिका नहीं, ये हमारे समय का दर्पण है। क्या हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ सकते हैं? चतुर्थ सर्ग का ये प्रथम भाग हमें भीतर की अग्नि से परिचित कराता है। आगे कथा और भी गहन होगी, और हम उस अग्नि में कर्ण के चरित्र को और तपता देखेंगे। आइए अब सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग दो का काव्य पाठ।
0: वीर कर्ण, विक्रमी, दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वो दान कर्ण से अनायास पाता था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर, छिपकर पुण्य विवर से, व्रत का निकष दान था। अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धराया। एक दिवास जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मिया रजत से भरकर वार विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने,
2: कौन उधर है बंधु, सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो। कर्ण सबका विनीत अनुचर है, ये विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक शूद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण में ही अपना सुख माना, भयहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरण बनू तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं, मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए।
1: श्रोताओं, दान देने से जो घटता है वह वस्तु होती है, पर जो बढ़ता है वह मनुष्य होता है। और आज के इस प्रसंग में हम ऐसे ही एक पुरुष के सामने खड़े हैं जिसके लिए दान प्रदर्शन नहीं, स्वभाव है। हाँ, गंगा तट पर खड़ा वह सूर्य पुत्र जल में निमग्न पर तेज से दीप दीपाता हुआ, जैसे स्वर्णिम पर्वत स्वयं तपस्या में लीन हो। ये दृश्य केवल बाहरी नहीं, यह भीतर की निर्मलता का संकेत है।
0: श्रोताओं, दिनकर जी ने जिस कोमलता से इस प्रसंग को रचा है उसमें दान कोई घटना नहीं, साधना बन जाता है। यह भाव बहुत स्पर्श करता है, दाता और भिक्षु का भेद मिटा देना। कितनी सरलता से वे कहते हैं कि लेने वाला भी कुछ देता है, संतोष, कृतज्ञता, आशीर्वाद। ये सोच आज के समय में कितनी दुर्लभ हो गई है, जहां देने में भी अहंकार छिपा रहता है।
1: दिनकर जी ने इस दृश्य का कितना अद्भुत, कितना दैदीप्यमान चित्र खींचा है। गंगा का पावन तट, मध्याह्न का प्रखर सूर्य और उस जल के मध्य अचल खड़ा कर्ण, मानो स्वयं तेज से मनुष्य का रूप ही धर लिया हो और तप की मुद्रा में स्थिर हो गया हो। गंगा की लहरें जैसे उसके चरणों का अभिषेक कर रही हो। सूर्य की किरणें उसके कवच कुंडलों पर स्वर्ण रेखाएं उकेरती हुई मानो आकाश से आशीष बरसा रही हो। जल में झील मिलाती आभा ऐसी प्रतीत होती है जैसे नियति ने इस क्षण को रत्न की तरह अपनी हथेली पर संभाल लिया हो।
0: वातावरण में एक गहन निस्तब्धता है, पर यह साधारण मौन नहीं, यह उस तूफान से पहले की शांति है जो चरित्र की पराकाष्ठा को परखने आता है। कर्ण स्थिर हैं, मन से भी वचन से भी, और जैसे अपने तन को भी अर्पित करने की तैयारी में। और यहीं इस प्रसंग की असली सुंदरता प्रकट होती है। ये केवल एक दृश्य नहीं, ये मानवीय ऊंचाई का आलोक है जहां मनुष्य अपने संकल्प से सूर्य के समकक्ष खड़ा दिखाई देता है। आगे नियति स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देने को है, यही इस प्रसंग की मार्मिकता है। दान अभी तक व्रत था, पर अब वो जीवन बनने जा रहा है।
1: श्रोताओं, आज गंगा के तट पर हमने केवल कर्ण को नहीं देखा, हमने उस दुर्लभ मनुष्यत्व की झलक देखी है जो स्वयं तप कर भी दूसरों को प्रकाश देता है। जल में खड़ा वह सूर्य पुत्र मानो ये कह रहा हो कि दान हाथों से पहले हृदय में जन्म लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग में कर्ण को किसी राजपुरुष की भांति नहीं बल्कि ऐसे महातपस्वी की तरह उकेरा है जिसकी आभा भीतर से फूटती है। सच ही तो है श्रोताओं, समय अक्सर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनके भीतर असाधारण तेज छिपा होता है। साधारण दीपकों की आंधी नहीं उतरती, तूफान हमेशा सूर्यों की ओर बढ़ते हैं।
0: दोस्तों, अब कथा उस दहलीज पर आ पहुंची है जहां मौन के भीतर नियति की आहट सुनाई देने लगी है। गंगा अब भी बह रही है, सूर्य अब भी आकाश में प्रज्वलित है, पर समय की चाल बदल चुकी है। कर्ण का तप, उसका व्रत और उसका भाग्य अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं जहां त्याग केवल गुण नहीं रहेगा, इतिहास बन जाएगा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ, जहां इस शांत जलधारा के बीच नियति स्वयं एक याचक बनकर कर्ण के द्वार पर आएगी। अब हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा। इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
1: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने,
3: और मैंने यानी दीपक नेमा ने।
0: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है, फिर मिलेंगे एक नए अंक में। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, दिन के 12 बजने को है, अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। आज्ञा दीजिए अपने रेडियो मित्र भगवती सक्सेना को नमस्कार।

0: शुभ दिवस 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। आप सभी का रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण में स्वागत है। अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारे केंद्र से आप देशभक्ति गीत, लोक संगीत और विभिन्न सांगीतिक प्रस्तुतियां सुनते रहें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने आजादी।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती।
2: पर इस समय आप रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं गुंदेचा बंधुओं का गायन।
1: श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रमाकांत गुंदेचा और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन।
3: नमस्कार, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आदि शंकराचार्य रचित गंगा स्तोत्रम से। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे।

0: अब इसके बाद राग भोपाली में संक्षिप्त आलाप और एक प्रकृति की रचना है, प्रकृति की पूजा है।
1: एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि भोपाली भू को पालने वाली,

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने पंडित रमाकांत गुंदेचा और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे गुंदेचा बंधुओं का शास्त्रीय गायन। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: सुनते रहिए।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: नमस्कार। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज हम इस कार्यक्रम में कलकत्ता शहर पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे।
2: 90.8 MHz पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद के अंतर्गत भारत के दर्शनीय स्थल
3: अतुल्य भारत।
2: श्रोताओं, इस बार भारत के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर हम आपको उस शहर में ले चलते हैं जो 1912 तक भारत की राजधानी हुआ करता था।
4: हाँ श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कौन सा होगा वो शहर।
2: चलिए एक और क्लू आपको देते हैं। इस शहर में विवेकानंद जी के गुरु रहा करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे।
4: अरे क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतना आसान क्लू जो आपने दे दिया है।
2: जी हाँ, अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का कोलकाता है ये शहर।
4: हाँ श्रोताओं, एक कहावत कलकत्ता के नाम से मैं आपको सुनाता हूँ। किसी ने पूछा कि अगर किसी कलकत्तियन के पास ढेर सारा फालतू वक्त हो तो वो क्या करता है, तो उसे जवाब मिला, भाई कहीं उसे आने जाने के लिए बस या ट्राम पकड़ लेना चाहिए। अब सवाल करने वाले को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, चलो अगर मान लो उसके पास वक्त बहुत कम है, उसे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए। तो फिर उसे जवाब मिला, फिर तो उसे पैदल ही निकल जाना चाहिए।
2: श्रोताओं, कलकत्ता वालों ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ये जोक खुद ही गढ़ा है।
4: जी हाँ,
2: क्योंकि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना हो तो वे पैदल ही जाना पसंद करते हैं।
4: हाँ, कोलकाता की बात चली है तो सबसे पहला सवाल जहन में यह उठता है कि आखिर यह नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। श्रोताओं, इतना तो आप जानते हैं कि यह शहर अंग्रेजों का बसाया हुआ था और इसे कलकत्ता कहा करते थे वे लोग। वजह यह थी कि उन्होंने जिन तीन गांवों को मिलाकर के यह शहर बनाया था उनमें से एक नाम था कलकत्ता, बाकी के दो गांव थे सुतानाटी और गोविंदपुर।
2: लेकिन ये कलकत्ता नाम भी असली नहीं है। असली नाम है कालिक क्षेत्र, जिसका मतलब है देवी काली का क्षेत्र। साल 1698 की बात है। उस समय ये तीनों गांव मुगल साम्राज्य में हुआ करते थे और इनकी जागीरदारी एक चौधरी परिवार के पास हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और उसे बंगाल में किसी स्थायी ठिकाने की तलाश थी। तो किसी तरह हाथ पांव मारकर उसने इन गांवों की जागीरदारी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली।
4: बिल्कुल ठीक, और कंपनी को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने भी सोच समझ करके इसको बसाया और यह काम किया था एक समझदार अफसर जॉब चारनाक ने। उसने देखा कि इन तीनों गांवों के पश्चिम में हुगली नदी है, उत्तर में एक सकरी खाड़ी है और पूर्व में नमकीन झीलें हैं। हुगली नदी इस इलाके को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो यह जगह उनके लिए बहुत ही महफूज थी।
2: इस तरह यहां अपनी बस्ती बसाने का फायदा ये था कि ये कुदरती तौर पर महफूज थी। इसके अलावा कोई आफत आने पर एक तो हुगली नदी बाढ़ का काम करती, दूसरे इस नदी के जरिए समुद्र की ओर भागा जा सकता था जहां अंग्रेजी नेवी की अजेय ताकत इनकी रक्षा करती। चारनाक हालांकि 1693 में ही गुजर चुका था, लेकिन उसकी सलाह को कंपनी ने गांठ बांध लिया था और कोशिश करके 1698 में इस जगह की जागीरदारी प्राप्त कर ही ली।
4: बिल्कुल ठीक, और जैसा कि अंग्रेज हर जगह करते थे, उन्होंने यहां भी वही किया। उन्होंने फौरन इस जगह की किलेबंदी शुरू कर दी और 1712 में यहां फोर्ट विलियम नामक एक मजबूत किला तैयार कर लिया और 1772 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी बना और इसके बाद पूरे भारत के ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी। लेकिन 1912 में यह जगह दिल्ली को मिल गई और तब से दिल्ली ही भारत की राजधानी हो गई।
2: अब कोलकाता के संबंध में कुछ दिलचस्प तथ्य और हम आपको बताते हैं।
4: बताइए।
2: अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि वे इसे लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर कहा करते थे। आसान शब्दों में कहें तो उनकी नजर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए लंदन के बाद सबसे अहम शहर कलकत्ता ही था।
4: श्रोताओं, आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, मगर लाख टके का सवाल तो यह है कि क्यों। वह यूं कि जब अंग्रेज लोग कलकत्ता में बसना शुरू किए तो यहाँ इमारतों के निर्माण के लिए गॉथिक, ब्रॉक, रोमन, इस्लामिक और ओरिएंटल डिजाइनों के एक ही तरह के पैटर्न का इस्तेमाल हुआ।
2: अंग्रेज अफसर खास करके पश्चिमी डिजाइनों के बड़े बड़े महलनुमा बंगले बनवाया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ के बंगाली बाबू भी इस मामले में पीछे न रहे। जब बंगाल में जमींदारी प्रणाली आई तो जमींदारों के पास अनाप शनाप पैसा आया। इस पैसे से उन्होंने कोलकाता में शानदार हवेलियां बनवाई जिनमें हर तरह के आराम और शान और शौकत की चीजें होती थीं।
4: श्रोताओं, प्रसंग बस आपको यह भी बता दें कि आज इनमें से ज्यादातर हवेलियां खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ का संरक्षण किया जा रहा है और कुछ को हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है।
2: और इस तरह अंग्रेज जेंटलमैन और बंगाली भद्र पुरुषों के बल पर देखते ही देखते कोलकाता अनगिनत महलनुमा हवेलियों से भर गया और ये शहर सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाने लगा।
4: फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर ने कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा है। कोलकातन सही मायने में जानते थे कि जिंदगी का मजा कैसे उठाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, न्यू ईयर हो या अन्य कोई त्योहार हो। कोलकातन इसे पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते थे। पैसे की चाहे कितनी कमी हो, लेकिन जीवन का आनंद उठाने में कोलकाता वाले कभी भी पीछे नहीं रहते थे।
2: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इडन गार्डन कोलकाता में ही स्थित है। इसमें 1,00,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम है जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गई और डे एंड नाइट मैचेस देखने की फैसिलिटी उत्पन्न की गई।
4: श्रोताओं, ईडन गार्डन की तरह ही कलकत्ता का साल्ट लेक स्टेडियम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बंगाली में इसे युवा भारती क्रीड़ा आंगन कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह मल्टीपर्पज स्टेडियम आज फुटबॉल मैचों व एथलेटिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रोताओं, हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक साथ 1,20,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सोचिए जरा,
2: भारत की पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि 1984 में कोलकाता में ही शुरू हुई और ये भारत की पहली अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस भी थी। कोलकाता शहर की 3 निशानियां और भी हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्राम।
4: हाँ श्रोता, कोलकाता इस मायने में भी भारत के सभी शहरों से अलग है कि यह देश का पहला एकमात्र शहर है जहां सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह समंदर पर नहीं है बल्कि किसी नदी पर स्थित है। जी हाँ, कलकत्ता सी पोर्ट हुगली नदी पर स्थित है। इस पोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की गई थी।
2: और हैंड पुल्ड रिक्शा, जी हाँ, इसे भी शायद सबसे पहले कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया। रिक्शा शब्द जापानी भाषा के जिन रिक्शा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है इंसान के द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा। दुनिया को रिक्शे का चलन इसी देश ने दिया है। जब 1868 में मेइजी काल के जापान में ये शुरू हुआ तो इसे उस जमाने की तेज सवारी माना गया क्योंकि इसने पालकियों की जगह ले ली थी।
4: खैर, रिक्शे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पुल रिक्शा। इनमें से पुल रिक्शा ही जापानी जिंग रिक्शा है। इसे आप रिक्शा न कहकर के एक टांगा कह सकते हैं जिसमें घोड़े की जगह इंसान जुटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टांगे में घोड़े को हाँकने के लिए एक कोचवान होता है, जबकि पुल रिक्शा में इंसान ही घोड़ा और इंसान ही कोचवान होता है।
2: आज से 200 साल पहले चीन के जरिए कलकत्ता आए इस पुल रिक्शे ने हर वक्त कलकत्ता को ऑन व्हील्स ही रखा, चाहे बरसात की वजह से गलियों में पानी भरा हो, चाहे भारत बंद हो या चाहे जाम लगा हो। दौड़ती हुई ये पालकियां अपने लिए रास्ता निकाल ही लेती हैं। इसीलिए कलकत्ता में कहते हैं कि मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो तो इससे भरोसेमंद कोई साधन नहीं।
4: फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्म में अगर कलकत्ता दिखाना चाहते हैं तो वे इंसानी घोड़े वाला यह टांगा दिखाना नहीं भूलते, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्म हो, चाहे 2 बीघा जमीन हो या नए जमाने की परिणीता हो। यह साबित करने के लिए कि यह सीन असली कलकत्ते में फिल्माई गई है, पुल रिक्शा को कैनवास पर उभारना ही पड़ता है।
2: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कोलकाता शहर की एक और निशानी यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल की। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट है।
4: जी हाँ,
2: जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। ये साल 1902 की बात है जब क्वीन विक्टोरिया का निधन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय हुआ करते थे और कलकत्ता भारत की राजधानी। उन्होंने ही सुझाव रखा कि महारानी की याद में कोलकाता में एक म्यूजियम बनाया जाए, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन का ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है।
4: श्रोता, विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मुगलिया व ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मिला जुला इस्तेमाल किया गया है। इसके भीतर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल इसे बनाने के लिए इसके आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने ताजमहल का मॉडल सामने रखा था। 1921 में इसका उद्घाटन हुआ और उस जमाने में इसके निर्माण की लागत आई थी 1,05,00,000 रुपए।
2: मित्रों, आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने में अंग्रेज सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। सारा का सारा पैसा या तो भारत के देशी राजाओं ने दिया या कुछ अमीर लोगों ने, जो इसी बहाने अंग्रेज सरकार का फेवर पाना चाहते थे।
4: विक्टोरिया मेमोरियल में आप ब्रिटिश राजघराने के ढेरों यादगार पेंटिंग्स व मुगल स्टाइल की पेंटिंग्स देख सकते हैं। बंगाल के नवाब का सिंहासन भी इसका एक खास आकर्षण है। इसके खूबसूरत बगीचे में हर शाम लेजर शो, ऑडियो विजुअल शो का आयोजन होता है, जो यहाँ आने वालों के लिए एक यादगार इवेंट होता है। अगर आप विक्टोरिया में जाएं, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत, जिसमें आज हम आपको सैर करा रहे हैं कोलकाता शहर की। तो चलिए अब चलते हैं कोलकाता शहर के न्यू मार्केट में। भोपाल के न्यू मार्केट की ही तरह कोलकाता में भी एक न्यू मार्केट है, लेकिन बस इसका नाम ही केवल न्यू है। वैसे ये काफी पुराना है। 1874 में शुरू हुआ ये मार्केट उस समय हॉग मार्केट कहलाता था। ये नाम उस वक्त के कलकत्ता कमिश्नर स्टुअर्ट हॉग के नाम पर था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर न्यू मार्केट रख दिया गया।
4: इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि है कोलकाता का शॉपिंग इंस्टीट्यूशन है, और जिस किसी चीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं वह आपको यहाँ मिल जाएगी। कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी हाई, लेकिन शर्त यह है कि आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। श्रोताओं, अगर आप नए हैं तो आप नहीं जानते कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, तो फिक्र न कीजिए, न्यू मार्केट घूमने के लिए गाइड भी उपलब्ध हैं।
2: श्रोताओं, कोलकाता शहर काली मंदिर के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। देवी काली शक्ति के 108 रूपों में से एक है, जो अपने भक्तों को हर तरह की आपदा से बचाती है। आपको तो याद होगा कि कोलकाता का नाम वस्तुतः काली कथा से आया है, और कारण यह है कि ये क्षेत्र माँ काली का एक खास स्थान है, और यहाँ आज भी आपको ढेरों काली मंदिर मिलेंगे, जैसे कि अयोध्या में ढेरों राम मंदिर मिलते हैं।
4: लेकिन इनमें से हम आपको दो खास मंदिरों की जानकारी देना चाहेंगे, और वो है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर और काली घाट का काली मंदिर। लोग भ्रमवश कभी कभी इन दोनों मंदिरों को एक ही समझ बैठते हैं, दोनों की ही भारी मान्यता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जहाँ कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, वहीं काली घाट का काली मंदिर दक्षिण में स्थित है।
2: श्रोताओं, माँ काली का एक रूप है भवतरिणी। इस रूप में वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान है। उल्लेख मिलता है कि 1847 के आसपास कोलकाता में एक रानी रोशमोई हुआ करती थी, जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी।
4: हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि माँ काली के दर्शन करने के लिए वे वाराणसी जाएंगी। लेकिन उसी रात माँ काली उनके सपने में आई और उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन के लिए वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम गंगा के तट पर एक मंदिर बनवा करके उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो, मैं स्वयं उस मंदिर में विराजमान हो जाऊंगी।
2: इस पर रानी ने एक अंग्रेज जॉन हेस्ट से 20 एकड़ का शाहबान बगीचा खरीदा और उस पर यह मंदिर बनवाया। ये बगीचा एक कछुए के आकार का था। कहा जाता है कि इस आकार की भूमि शक्ति पूजा के लिए बहुत ठीक थी। उस जमाने में 9 लाख रुपए खर्च करके रानी रोशमोई ने मंदिर बनवाया। 1855 में इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसमें माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई।

0: कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी। और देती भी क्यों ना, वे माँ में इतने तन्मय रहते थे कि वे अपनी पत्नी शारदा को भी माँ कहते थे और माँ के रूप में ही उनकी पूजा करते थे।
1: आखिरी समय में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जिससे उन्हें अपार कष्ट होता था। कई लोगों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली के भक्त हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह बीमारी ठीक हो जाएगी। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, यह कर्म फल है, इसे तो भोगना ही अच्छा है। अगर बिना भोगे दुनिया से चले गए तो इसे भोगने के लिए मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
0: और अब चर्चा काली घाट के काली मंदिर की। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दे कि शक्तिपीठ वे स्थल हैं जहां देवी सती का कोई ना कोई अंग गिरा था। तो जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है, वहां पर देवी के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।
1: श्रोता, सुनने में आता है कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जंगल हुआ करते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ पर रोशनी की एक किरण देखी। जब उसने इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि यह रोशनी पत्थर के अंगूठे से आ रही है। इस अंगूठे के पास ही एक स्वयंभू शिवलिंग भी था। इस पर भक्त ने उस स्थान पर उपासना आरंभ कर दी।
0: श्रोताओं, जहां दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के निर्माण काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, वहीं काली घाट के मंदिर की प्राचीनता का सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएं तक मिली हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है।
1: हाँ, कहते हैं कि ओरिजिनल काली मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिस पर आज से 500 साल पहले किसी राजा मानसिंह ने पक्का मंदिर बनवाया। लेकिन जिस रूप में यह मंदिर आज हमें मिलता है, उसका निर्माण तो सन 1809 में बरिशा के चौधरी परिवार ने करवाया था।
0: श्रोताओं, कोलकाता की दुर्गा पूजा तो आपने सुनी है कि कितनी भव्य और कितनी विशेष होती है। पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना का चलन बहुत पुराना है और दुर्गा जी तो शक्ति के 108 रूपों में से सबसे प्रबल है। वे एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सिंह की सवारी करती हैं, जिनकी आराधना करके राम जी ने रावण को मारा, जिनका स्मरण करके कृष्ण जी ने कंस का संहार किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसकी स्तुति करते हैं। उनकी शान में बंगाली लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं।
1: बंगाली जन दुर्गा पूजा को अकाल बोधन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति का असमय जागरण। कोलकाता में तो यह त्योहार इतने बड़े पैमाने पर इतने जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है कि देश विदेश के सैलानी भी इसे देखने के लिए यहाँ डेरा डाल देते हैं।
0: 10, 20, 50, 100 नहीं, कई हजार पंडाल यहाँ बनते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो बेकाबू हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है, कई बार तो पैदल चले बिना पंडाल तक पहुँचना संभव ही नहीं रहता।
1: श्रोताओं, वैसे तो दुर्गा पूजा की परंपरा राम ने शुरू की थी, परंतु आज जिस तड़क भड़क के साथ ये त्योहार मनाया जाता है ना, उसका आरंभ सन 1606 में तरहपुर व नादिया के राजाओं ने शारदीय दुर्गोत्सव के नाम से शुरू किया था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है संस्कृति संवाद, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के दर्शनीय स्थलों में आपको सैर करा रहे हैं कलकत्ता शहर की। और चलिए अब बात करते हैं कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज की। श्रोताओं, रुडयार्ड किपलिंग नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, जिसमें मोगली नाम का एक मशहूर करेक्टर है, जिस पर किसी जमाने में एक हिंदी सीरियल बना और जिसका एक गाना बच्चे गुनगुनाया करते हैं कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है।
0: किपलिंग एक जगह लिखते हैं अरे ये लंदन यहाँ कैसे? इसे देखने के लिए तो भारत आना बनता है।
1: किपलिंग ने ये लाइनें हावड़ा ब्रिज को देखकर ही लिखी थी। कोलकाता की यह पहचान है कि जिस तरह भोपाल का नाम आते ही भोपाल की झील आंखों में तैरने लगती है, उसी तरह कोलकाता का नाम आते ही हावड़ा ब्रिज भी आंखों के सामने तैरने लगता है। वैसे ये कोलकाता का मोनोग्राम भी है।
0: कोई कोलकाता जाए और ये ब्रिज न देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बल्कि हम तो यही कहेंगे कि वो कोलकाता गया ही नहीं। यमलोक में जिस तरह यमराज होते हैं और क्षीर सागर में विष्णु, उसी तरह कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है। इस शहर के शरीर में धड़कते हुए दिल की तरह। किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि बाकी दुनिया को कोलकाता की पहचान बताने का काम ये ब्रिज ही करता है।
1: हाँ श्रोताओं, हावड़ा ब्रिज एक सस्पेंशन टाइप कैंटिलीवर ब्रिज है जो हुगली नदी के दोनों किनारों पर जुड़वा नगरों कलकत्ता और हावड़ा को आपस में जोड़ता है। इसे बनाने का श्रेय अंग्रेजों को है। उन्होंने इंजीनियरिंग की बेहतरीन कारीगरी दिखाते हुए इसे 6 सालों की कठिन मेहनत के बाद 1942 में तैयार किया और 1943 में ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया।
0: उस वक्त ये न्यू हावड़ा ब्रिज कहलाता था, लेकिन आजादी के बाद 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। मगर हकीकत तो यह है कि जनता आज भी इस नामकरण को शायद नहीं मानती। वो तो आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही कहती है।
1: श्रोताओं, बाय द वे, सस्पेंशन ब्रिज उसे कहते हैं जिसमें ब्रिज का डेक सस्पेंशन केबल के नीचे लटका रहता है। ब्रिज के दोनों सिरों पर सस्पेंशन टावर होते हैं जिनमें स्टील केबल बंधी हुई होती है, और इस तरह के ब्रिज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में दो ऊंची पहाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। और सबसे पहले ये तिब्बत व भूटान में बनाए गए थे आज से लगभग पूरे 500 साल पहले।
0: दूसरी ओर कैंटिलीवर ब्रिज उसे कहते हैं जो कैंटिलीवर्स के सहारे हवा में लटकता रहता है बिना किसी नट बोल्ट के। मतलब ये हुआ कि हावड़ा ब्रिज लोहे की मजबूत रस्सियों के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक हवा में लटका हुआ है। न कोई नट बोल्ट और ना ही ब्रिज को टेक देने के लिए कोई पिलर वगैरह।
1: देखा जाए तो पैदल चलने वालों के लिए छोटे छोटे और हल्के फुल्के कैंटिलीवर ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के दोनों किनारों को जोड़ती हुई 8 लेन वाली 705 मीटर लंबी संरचना, चौड़ाई 71 फीट और ऊंचाई 269 फीट, जिसे बनाने में 26,500 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जिस पर से रोज 1.5 लाख गाड़ियां, 4 लाख पैदल लोग गुजरते हैं। वास्तव में कैंटिलीवर नाम का यह एक अजूबा ही है।
0: ये दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है और पूरी दुनिया में 10 सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिजों में 6वें नंबर पर है। ये केवल हावड़ा और कोलकाता को ही नहीं जोड़ता बल्कि पुराने कैलकाता और नए कोलकाता को भी जोड़ता है। तभी तो शायद एक व्यक्ति ने अपनी डायरी में लिखा, सालों बाद कलकत्ता आना हुआ, सब कुछ बदल चुका था सिवाय हावड़ा ब्रिज के।
1: श्रोताओं, कलकत्ता की हम बात करें और वहां की ट्राम सर्विस की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, ट्राम सर्विस भी कलकत्ता की एक अनोखी पहचान है। हालांकि किसी जमाने में यह मुंबई, दिल्ली, कानपुर जैसे कई शहरों में हुआ करती थी, लेकिन आज आप इसे और कहीं नहीं देख पा सकते। इसके अंतर्गत पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रामे कारें लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं।
0: कोलकाता की ट्राम सर्विस को अगर आप ट्रेन जैसी दिखने वाली बस सर्विस कहें तो ज्यादा ठीक होगा। सड़कों पर ही बिछी लोहे की पटरियों पर ट्रामे दौड़ती रहती हैं। न कोई रेलवे फाटक और ना ही कोई बाड़ बंदी। आती हुई ट्राम के सामने से लोग आराम से ही निकलते रहते हैं।
1: श्रोताओं, ये बात है साल 1873 की, जब सियालदह और आर्मेनियन घाट स्ट्रीट के बीच लोहे की पटरियों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन पर्याप्त सवारियां ना मिलने की वजह से 8-10 महीने में ही यह सेवा बंद हो गई।
0: लेकिन सन 1900 में एक ब्रिटिश कंपनी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड ने इसकी फिर से शुरुआत की। इस बार ट्राम को घोड़ों से नहीं खींचा जाता था बल्कि ये बिजली से चलती थी। देखते ही देखते ये नई ट्राम सेवा कोलकाता की पहचान बन गई। और आज इसे इस शहर की एक जिंदा विरासत माना जाता है।
1: श्रोताओं, कोलकाता को इस आधे घंटे के प्रोग्राम में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए कोलकाता से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियाँ, जैसे वहाँ का वस्त्र उद्योग, वहाँ का पहनावा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान और वहाँ का रसगोला, इन सब की चर्चा हम करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ज्वालामुखी।

डिग्री लेने के बाद मैं नित्य लाइब्रेरी जाया करता था, पत्रों या किताबों का अवलोकन करने के लिए नहीं। किताबों को तो मैंने ना छूने की कसम खा ली थी। जिस दिन गजट में अपना नाम देखा, उसी दिन मिल और कैंट को उठाकर ताक पर रख दिया। मैं केवल अंग्रेजी पत्रों के वांटेड कॉलमों को देखा करता। जीवन यात्रा की फिक्र सवार थी। मेरे दादा या परदादा ने किसी अंग्रेज को गदर के दिन बचाया होता अथवा किसी इलाके का जमींदार होता तो कहीं नॉमिनेशन के लिए उद्योग करता, पर मेरे पास कोई सिफारिश न थी। शोक कुत्ते बिल्लियों और मोटरों की मांग सबको थी, पर बीए पास का कोई पुरसा हाल न था। महीनों इसी तरह दौड़ते गुजर गए, पर अपनी रुचि के अनुसार कोई जगह नजर न आई। मुझे अक्सर अपने बीए होने पर क्रोध आता था। ड्राइवर, फायरमैन, मिस्त्री, खानसामा या बावर्ची होता तो मुझे इतने दिनों तक बेकार न बैठना पड़ता। एक दिन मैं चारपाई पर लेटा हुआ एक पत्र पढ़ रहा था कि मुझे एक मांग अपनी इच्छा के अनुसार दिखाई दी। किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी जो विद्वान, रसिक, सहृदय और रूपवान हो। वेतन 1000 मासिक। मैं उछल पड़ा। कहीं मेरा भाग्य उदय हो जाता और ये पद मुझे मिल जाता तो जिंदगी चैन से कट जाती। उसी दिन मैंने अपना विनय पत्र अपने फोटो के साथ रवाना कर दिया, पर अपने आत्मीय गणों में से किसी से इसका जिक्र न किया कि कहीं लोग मेरी हंसी न उड़ाएं। मेरे लिए 30 रुपए मासिक भी बहुत थे, 1000 कौन देगा। पर दिल से यह ख्याल दूर न होता। बैठे बैठे शेख चिल्ली के मंसूबे बांधा करता, फिर होश में आकर अपने आप को समझाता कि मुझमें ऐसे ऊंचे पद के लिए कौन सी योग्यता है। मैं अभी कॉलेज से निकला हुआ पुस्तकों का पुतला हूं, दुनिया से बेखबर। इस पद के लिए एक से एक विद्वान अनुभवी पुरुष मुंह फुलाए बैठे होंगे, मेरे लिए कोई आशा नहीं। मैं रूपवान सही, सजीला सही, मगर पदों के लिए रूपवान होना काफी नहीं होता। विज्ञापन में इसकी चर्चा करने से केवल इतना अभिप्राय होगा कि कुरूप आदमी की जरूरत नहीं, और ये उचित भी है, बल्कि बहुत सजीलापन तो ऊंचे पदों के लिए कुछ शोभा नहीं देता। मध्यम श्रेणी का तोंद, भरा हुआ शरीर, फूले हुए गाल और गौरवयुक्त वाक्य शैली, ये उच्च पदाधिकारियों के लक्षण हैं, और मुझे इनमें से एक भी मयस्सर नहीं है। इसी आशा और भय में एक सप्ताह गुजर गया और मैं निराश हो गया। मैं भी कैसा ऊंचा हूं कि एक बेसिर पैर की बात के पीछे ऐसा फूल उठा, इसी को बड़कपन कहते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, किसी दिल्लगीबाज ने आज के शिक्षित समाज की मूर्खता की परीक्षा करने के लिए ये स्वांग रचा है। मुझे इतना भी न सूझा, मगर 8वें दिन प्रातःकाल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। लपका हुआ आया, तार खोल कर देखा, लिखा था, स्वीकार है, शीघ्र आओ ऐशगढ़। मगर यह सुख संवाद पाकर मुझे वो आनंद न हुआ जिसकी आशा थी। मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा, किसी तरह विश्वास न आता था। जरूर किसी दिल लगीबाज की शरारत है, मगर कोई मुजायका नहीं। मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तार दे दूं कि 1 महीने की तनख्वाह भेज दो, आप ही सारी कलई खुल जाएगी। मगर फिर विचार किया, कहीं वास्तव में नसीब जागा हो तो दंडता से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो दिल लगी ही सही, जीवन में ये घटना भी स्मरणीय रहेगी। इस तिलिस्म को खोल ही डालूं, ये निश्चय करके तार द्वारा आने की सूचना दे दी और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पूछने पर मालूम हुआ कि वो स्थान दक्षिण की ओर है। टाइम टेबल में उसका वृत्तांत विस्तार के साथ लिखा हुआ था। स्थान अति रमणीय है, पर जलवायु स्वास्थ्यकर नहीं। हाँ, हष्ट पुष्ट नवयुवकों पर उसका असर शीघ्र नहीं होता। दृश्य बहुत मनोहर है, पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं। यथा साध्य अंधेरी घाटियों में न जाना चाहिए। ये वृत्तांत पढ़कर उत्सुकता और भी बढ़ी। जहरीले जानवर हैं तो हुआ करें, कहां नहीं है। मैं अंधेरी घाटियों के पास भूलकर भी न जाऊंगा। आकर सफर का सामान ठीक किया और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला, पर अपने अलापी मित्रों से इसका कुछ जिक्र न किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि 2 ही 4 दिन में फिर अपना सा मुंह लेकर लौटना पड़ेगा। गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तो सिगार और पत्रों में दिल बहलाता रहा, फिर मालूम नहीं कब नींद आ गई। आंखें खुली और खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो उषाकाल का मनोहर दृश्य दिखाई दिया। दोनों ओर हरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां, उन पर चरती हुई उजली उजली गाय और भेड़ें, सूर्य की सुनहरी किरणों में रंगी हुई बहुत सुंदर मालूम होती थी। जी चाहता था कि कहीं मेरी कुटिया भी इन्हीं सुखद पहाड़ियों में होती, जंगल के फल खाता, झरनों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता। यकायक दृश्य बदला,
एक विस्तृत झील दिखाई दी जिसमें कमल खिले हुए थे। कहीं उजले उजले पक्षी तैरते थे और कहीं छोटी छोटी डोंगियां निर्बल आत्माओं के सदृश डगमगाती चली जाती थी। ये दृश्य भी बदला। पहाड़ियों के दामन में एक गांव नजर आया। झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ, मानो शांति और संतोष ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया हो। कहीं बच्चे खेलते थे, कहीं गायों के बछड़े किलोल करते थे। फिर एक घना जंगल मिला। झुंड के झुंड हिरन दिखाई दिए जो गाड़ी की हाहाकार सुनते ही चौकड़ियां भरते दूर भाग जाते थे। ये सब दृश्य स्वप्न के चित्रों के समान आंखों के सामने आते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे। उनमें एक अवर्णनीय शांतिदायिनी शोभा थी जिससे दृश्य में आकांक्षाओं के आवेग उठने लगते थे। आखिर ऐशगढ़ निकट आया। मैंने बिस्तर संभाला, जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया। मेरी छाती धड़कने लगी, गाड़ी रुकी। मैंने उतरकर इधर उधर देखा, कुलियों को पुकारने लगा। कितने में दो वर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा, आप वहां से आ रहे हैं ना, चलिए मोटर तैयार है। मेरी बांछें खिल गईं। अब तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य ना हुआ था। शान के साथ जा बैठा। मन में बहुत लज्जित था कि ऐसे फटे हाल में क्यों आया। अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाट बाट से आता। खैर, मोटर चली। दोनों तरफ मौलसरी के सघन वृक्ष थे। सड़क पर लाल बजरी बिछी हुई थी। सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम्य जलधारा के सदृश बल खाती चली गई थी। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया। सागर के उस पार पर एक विशाल भवन बना हुआ था। भवन अभिमान से सिर उठाए हुए था। सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ, सारा दृश्य काव्य श्रृंगार और आमोद से भरा हुआ था। हम सदर दरवाजे पर पहुंचे। कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। इनमें से एक शौकीन मुंशी जी थे जो बाल संवारे आंखों में सुरमा लगाए हुए थे। मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले, सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें, संध्या समय मुलाकात कीजिएगा। मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि यह सरकार कौन है। न मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ क्योंकि अपने स्वामी के नाम से अनभिज्ञ होने का परिचय नहीं देना चाहता था। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सज्जन मनुष्य था। मुझे इतने आदर सत्कार की कदापि आशा न थी। अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विह्वल हो गया। पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे। सामने छज्जा था, नीचे झील थी, और मैं, जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था, इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था। तीसरे पहर उन्हीं शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है। मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे, तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला। उस समय मेरे मन में ये शंका उठ रही थी कि कहीं मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट ना हो जाएं और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किए हों उनमें कोई अंतर ना पड़ जाए। तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था। हम कई बरामदों से होते हुए अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया। मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित हो गया। मेरे सामने सौंदर्य की ज्वाला दीप्तिमान थी। फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर है। फूल में ठंडक है और सुगंध है, दीपक में प्रकाश और उद्दीपन। फूल पर भ्रमर उड़ उड़कर उसका रस लेता है, दीपक पर पतंगा जलकर राख हो जाता है। मेरे सामने कारचोबी मसनत पर जो सुंदरी विराजमान थी वो सौंदर्य की प्रकाशमय ज्वाला थी। फूल की पंखुड़ियां हो सकती हैं, ज्वाला को विभक्त करना संभव है। उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है। वो नख शिख तक एक ज्वाला थी, वही दीपन, वही चमक, वही लालिमा, वही प्रभा। कोई चित्रकार प्रतिभा सौंदर्य का इससे अच्छा चित्र नहीं खींच सकता था। रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा, आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने संभल कर उत्तर दिया, जी नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। यह स्थान पसंद आया? मैंने साहसपूर्ण उत्साह के साथ जवाब दिया, ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर ना होगा।
हाँ, गाइडबुक देखने से विदित हुआ कि यहाँ की जलवायु जैसी सुखद प्रतीत होती है यथार्थ में वैसी नहीं। विषैले पशुओं की भी शिकायत थी। ये सुनते ही रमणी का मुख सूर्य कांतिहीन हो गया। मैंने तो ये चर्चा इसलिए कर दी थी कि जिससे प्रकट हो जाए कि यहां मुझे आने में कुछ त्याग करना पड़ा है, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ। पर क्षण भर में सूर्य मेघमंडल से बाहर आया और बोली, ये स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है। गुण का निरादर करने वाले सभी होते हैं, और यदि जलवायु कुछ हानिकर हो भी तो आप जैसे मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है। रहे विषैले जीव जंतु तो वह आपके नेत्रों के सामने विचर रहे हैं। अगर मोर हिरण हंस विषैले जीव हैं तो निसंदेह है यहां विषैले जीव बहुत हैं। मुझे संशय हुआ कि कहीं मेरे कथन से उसका चित्त खिन्न हो गया। गर्व से बोला, गाइड बुकों पर विश्वास करना सर्वथा भूल है। इस वाक्य से सुंदरी का हृदय खिल गया और वो बोली, आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और ये मनुष्य का एक उच्च गुण है। मैं आपका चित्र देखते ही समझ गई थी। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पद के लिए मेरे पास 100,000 से अधिक प्रार्थना पत्र आए। कितने एमए थे और कोई डीएससी था या कोई जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए था। मानो मुझे यहाँ किसी दार्शनिक विषय की जांच करानी थी। मुझे अब की ये अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है। कई महाशयों ने स्वरचित ग्रंथों की नामावली लिखी थी, मानो देश में लेखकों और पंडितों की ही आवश्यकता है। काल गति का लेशमात्र भी परिचय नहीं है। प्राचीन कर्म कथाएं अब केवल अंध भक्तों के रसास्वादन के लिए ही हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। यह भौतिक उन्नति का समय है। आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं। कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे थे। कैसी कैसी विचित्र मूर्तियां थीं जिन्हें देखकर घंटों हंसिए। मैंने उन सभी को एक एल्बम में लगा दिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूं। मैं उस विद्या को रोग समझती हूं जो मनुष्य को वनमानुष बना दे। आपका चित्र देखते ही आंखें मुग्ध हो गईं। तत्क्षण आपको बुलाने को तार दे दिया। मालूम नहीं क्यों अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने बाह्य गुणों की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं। और एक सुंदरी के मुखकंठ से वो चलते हुए जादू के समान है। मैं कह उठा, यथा साध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर ना मिलेगा। सुंदरी ने मेरी ओर प्रशंसापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, इसका मुझे पहले ही विश्वास है। आइए अब कुछ काम की बातें हो जाएं। इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए। मेरे भक्तों की संख्या बहुत है। वो संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करती हैं। उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे। कोई मुझसे सहायता मांगता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई सराहता है, कोई गालियां देता है। इन सब प्राणियों को संतुष्ट रखना आपका काम है। देखिए, ये आज के पत्रों का ढेर है। एक महाशय कहते हैं, बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था। अब उनका पुत्र वयस्क प्राप्त हो चुका है और मुझसे अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है। इतने दिनों तक उस संपत्ति का उपयोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना खर रहा है। आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? इनको उत्तर दीजिए कि इस कूटनीति से काम लो। अपने भतीजे को कपट प्रेम से मिला लो और जब वो निशंक हो जाए उससे एक सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करा लो। इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टाम्प पर जायदाद का बेनामा लिखा लो। यदि 1 लगाकर 2 मिलते हों तो आगा पीछा मत करो। ये उत्तर सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। नीति ज्ञान को धक्का सा लगा। सोचने लगा, ये रमणी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्श देती है? ऐसे खुल्लम खुल्ला तो कोई वकील भी किसी को राय न देगा। उसकी ओर संदेहात्मक भाव से देखकर बोला, ये तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है। कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, न्याय की भली कही आपने। ये केवल धर्मांध मनुष्यों के मन का समझौता है। संसार में इसका अस्तित्व नहीं। आप ऋण लेकर मर जाएं, लड़का कौड़ी कौड़ी भरे, विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं, मैं घोर अत्याचार समझती हूं। इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है।
एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है, लोग उसे पकड़कर कैद कर देते हैं। धर्मात्मा लोग इसे भी न्याय कहते हैं, किंतु यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है। भद्र पुरुष ने कितने ही घरों को लूटा, कितनों का गला दबाया और इस प्रकार संचय किया कि किसी को भी आंख दिखाने का साहस ना हुआ। डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वो अपने धन और प्रभुत्व के बल से उस पर वज्र प्रहार कर बैठे। मैं इसे न्याय नहीं कहती। संसार में धन छल कपट धूर्तता का राज्य है, यही जीवन संग्राम है। यहां प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले, जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सकें, न्याय अनुकूल और उचित है। धर्म युद्ध के दिन अब नहीं रहे। ये देखिए, ये एक दूसरे सज्जन का पत्र है। वो कहते हैं, मैंने प्रथम श्रेणी में एमए पास किया, प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की, पर अब कोई बात भी नहीं पूछता। अब तक ये आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा, पर 3 साल के अनुभव से ज्ञात हुआ कि ये केवल धार्मिक नियम है। 3 साल में घर की पूंजी भी खा चुका, अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूं। मुझ हतभाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए। इनको उत्तर दीजिए कि जाली दस्तावेज बनवाइए और झूठे दावे चलवाकर उनकी डिग्री करा लीजिए। थोड़े ही दिनों में आपका क्लेश निवारण हो जाएगा। ये देखिए, एक और सज्जन कहते हैं, लड़की सयानी हो गई है, जहां जाता हूं लोग दहेज की गठरी मांगते हैं। यहां पेट की रोटियों का भी ठिकाना नहीं, किसी तरह भलमनसी निभा रहा हूं। चारों ओर निंदा हो रही है, जो आज्ञा हो उसका पालन करूं। इन्हें लिखिए, कन्या का विवाह किसी बुढ़े खुर्राट सेठ से कर दीजिए, वो दहेज लेने की जगह कुछ उल्टे और दे जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है। अभी कुछ दिनों तक आपको ये काम कठिन जान पड़ेगा, पर आप चतुर मनुष्य हैं, शीघ्र ही आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई काम नहीं है। आपके द्वारा सैकड़ों दारुण दुख भोगने वालों का कल्याण होगा और आजन्म वो आपका यश गाएंगे। मुझे यहां रहते 1 महीने से अधिक हो गया, पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है, मैं किसका सेवक हूं। इसके पास इतना अतुल धन, ऐसी ऐसी विलास की सामग्रियां कहां से आती हैं। जिधर देखता था ऐश्वर्य का ही आडंबर दिखाई देता था। मेरे आश्चर्य की सीमा न थी, मानो किसी तिलिस्म में आ फंसा हूं। इन जिज्ञासुओं का इस रमणी से क्या संबंध है, ये भेद भी न खुलता था। मुझे नित्य उससे साक्षात होता था, उसके सम्मुख जाते ही मैं चेत सा हो जाता था। उसके चितवनों में एक प्रबल आकर्षण था जो मेरे प्राणों को खींच लिया करता था। मैं वाक्य शून्य हो जाता, केवल छुपी हुई आंखों से उसे देखा करता था, पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और रसमयी आलोचनाओं तथा मधुर काव्यमय भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक शांति का अनुभव होता था। उसकी चितवने केवल हृदय को वाणी के समान छेदती थी, उसके कटाक्ष चित्त को व्यस्त रखते थे। शिकारी अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है, वही उस परम सुंदरी को मेरी प्रेमातुरता में प्राप्त होता था। वो एक सौंदर्य ज्वाला जलाने के सिवाय और क्या कर सकता है। तिस पर भी मैं पतंग की भांति उस ज्वाला पर अपने को समर्पण करना चाहता था। यही आकांक्षा होती थी कि उन पद कमलों पर सिर रखकर प्राण दे दूं। ये केवल एक उपासक की भक्ति थी, काम और वासना से शून्य। कभी कभी जब वो संध्या समय अपनी मोटर बोट पर बैठकर सागर की सैर करती, तो ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रमा आकाश में तैर रहा है। मुझे इस दृश्य में अनुपम सुख प्राप्त होता था। मुझे अब अपने नियत कार्यों का खूब अभ्यास हो गया था। मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का एक पोथा पहुंच जाता था, मालूम नहीं कि डाक से आता था। लिफाफों पर कोई मोहर न होती थी। मुझे इन जिज्ञासुओं में बहुधा वो लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था। कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी। बड़े बड़े विद्वान, लेखक और अध्यापक, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस, यहां तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते थे। उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी। वो सब मुझे रंगे हुए सियार दिखाई देते थे। जिन लेखकों को अपनी भाषा का स्तंभ समझता था, उनसे घृणा होने लगी। वो केवल उचक्के थे जिनकी सारी कीर्ति चोरी, अनुवाद और कतर ब्योत पर निर्भर थी। जिन धर्मों के आचार्यों को मैं पूजता था, वो स्वार्थ तृष्णा और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे।
मुझे धीरे धीरे ये अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा ही क्रूर, वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है। बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के कारण इतने कुटिल, दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे। एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया। मैं अपने घमंड में समझता था कि मेरे बांकेपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है। अपना सर्वोत्तम सूट पहना, बाल संवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया। यदि वो मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी तो मैं भी शिकार बनकर उसे खिलाना चाहता था। ज्यों ही मैं पहुंचा, उस लावण्यमय ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, पर मुख चंद्र कुछ मलिन था। मैंने अधीर होकर पूछा, सरकार का जी तो अच्छा है? उसने निराश भाव से उत्तर दिया, जी हां, एक कठिन रोग में फंस गई हूं। अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूं, पर अब रोग असाध्य होता जाता है। उसकी औषधि निर्दयी मनुष्य के पास है। वो मुझे प्रतिदिन तड़पते देखता है, पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। मैं इशारा समझ गया। सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, सांस बड़े वेग से चलने लगी। मैं एक उन्मत्तता का अनुभव करने लगा। निर्भय होकर बोला, संभव है जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो वो भी आपको ऐसा समझता हो और भय से मुख खोलने का साहस न कर सकता हो। सुंदरी ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों ओर की आग बुझे। प्रियतम, अब मैं अपनी हृदय की दहकती हुई विरह अग्नि को नहीं छिपा सकती। मेरा सर्वस्व आपकी भेंट है। मेरे पास वो खजाने हैं जो कभी खाली ना होंगे। मेरे पास वो साधन है जो आपकी कीर्ति को शिखर पर पहुंचा देंगे। समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती हूं। बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते। मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को क्षण मात्र में पलट सकती हूं। आइए मेरे हृदय से लिपटकर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए। रमणी के चेहरे पर जलती हुई आग की सी कांति थी। वो दोनों हाथ फैलाए कामोन्मत्त होकर मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी। परंतु जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है, उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया। उसकी इस प्रेमातुरता से मैं भयभीत हो गया, जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथों से सोने की ईंट लेते समय भयभीत हो जाए। मेरा चित्त एक अज्ञात शंका से कांप उठा। रमणी ने मेरी ओर अग्निमय नेत्रों से देखा, मानो किसी सिंहनी के मुंह से उसका आहार छिन जाए, और सरोष होकर बोली, ये भीरुता क्यों? मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं, इस महान आदर का पात्र नहीं। रमणी बोली, आप मुझसे घृणा करते हैं? ये आपका मेरे साथ अन्याय है। मैं इस योग्य भी तो नहीं कि आपके तलुओं को आंखों से लगाऊं। आप दीपक हैं, मैं पतंग हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रमणी नैराश्यपूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली, वास्तव में आप बहुत निर्दयी हैं। मैं ऐसा ना समझती थी। आप में अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार लिपटे हुए हैं। पुस्तकों और सदाचार की बीड़ी आपके पैरों से नहीं निकली। मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया, और चित्त के स्थिर होने पर जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा। कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई। ये गुप्त शक्ति क्या थी? मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके सामने झील के दूसरी तरफ एक छोटा सा झोपड़ा था। उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे। उनकी कमर तो झुक गई थी, पर चेहरा तेजमय था। वो कभी कभी महल में आया करते थे। रमणी न जाने क्यों उनसे घृणा करती थी, मन में उनसे कुछ डरती थी, उन्हें देखते ही घबरा जाती, मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई है। उसका मुख फीका पड़ जाता, जाकर अपना मुख छुपा लेती। मुझे उसकी ये दशा देखकर कौतूहल होता था। कई बार उसने मुझसे उनकी चर्चा की थी, परंतु अत्यंत अपमान के भाव से। वो मुझे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती, और यदि कभी उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कई कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी। उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई थी। उधेड़ बुन में पड़ा हुआ था। कभी जी चाहता, आओ
आंख बंद करके प्रेम रसपान करें, संसार के पदार्थों का सुख भोगें, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहां मिलते हैं। फिर आप ही आप मन कुछ खींच जाता, घृणा उत्पन्न हो जाती थी। रात के 10 बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए। यद्यपि मैं अपनी स्वामिनी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था, परंतु उनके मुख पर ऐसी शांति थी और उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती थी। मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने मेरी ओर दयापूर्ण भाव से देखकर कहा, मेरे आने से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महात्मा जी निश्चिंत होकर बोले, अच्छा तो सुनो और सचेत हो जाओ। मैं तुम्हें यही चेतावनी देने के लिए आया हूं, तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि यहां से चले जाओ। मेरी बात न मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट झेलोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त ना हो सकोगे। मेरा झोंपड़ा तुम्हारे सामने था, मैं भी कभी कभी यहां आया करता था, परंतु तुमने मुझसे मिलने की आवश्यकता न समझी। यदि पहले ही दिन तुम मुझसे मिलते तो सहस्त्रों मनुष्यों का सर्वनाश करने के अपराध से बच जाते। निसंदेह यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल था जिसने आज तुम्हारी रक्षा की। अगर ये पिशाचिनी एक बार तुमसे प्रेमालिंगन कर लेती तो फिर तुम उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिए जाते। वो जिस पर रीझती है उसकी वही गत बनाती है, यही इसका प्रेम है। चलो जरा इस अजायब खाने की सैर करो, तब तुम समझोगे कि आज तुम किस आफत से बचे। ये कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया, तुरंत एक दरवाजा निकल आया। ये नीचे उतरने की सीढ़ी थी, महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी बुलाया। घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया, उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था। वहां मैंने जो घोर विभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे उनका स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इटली के अमर कवि डेंटी ने नर्क का जो दृश्य दिखाया है उससे कहीं भयावह रोमांचकारी और नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था। सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धताओं में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कराह रहे थे। उनके शरीर मनुष्य कैसे थे लेकिन चेहरों का रूपांतर हो गया था। कोई कुत्ते से मिलता था, कोई गीदड़ से, कोई बन बिलाव से, कोई सांप से। एक स्थान पर मोटा स्थूल मनुष्य एक दुर्बल शक्तिहीन मनुष्य के गले में मुख लगाए उसका रक्त चूस रहा था। एक और दो गिद्ध की सूरत वाले मनुष्य एक सड़ी हुई लाश पर बैठ उसका मांस नोच रहे थे। एक जगह एक अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निगलना चाहता था, पर बालक उसके गले में अटका हुआ था। दोनों ही जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे। एक जगह मैंने एक अत्यंत पैशाचिक घटना देखी। दो नागिन की सूरत वाली स्त्रियां एक भेड़िए की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिपटी हुई उसे काट रही थी। वो मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था। मुझसे अब और न देखा गया, तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया। महात्मा जी मेरे साथ चले आए। जब मेरा चित्त शांत हुआ तो उन्होंने कहा, इतनी जल्दी घबरा गए, अभी तो इस रहस्य का एक भाग भी नहीं देखा। ये तुम्हारी स्वामिनी के विहार का स्थान है और यही उनके पालतू जीव हैं। इन जीवों के पिशाचाभिनय देखने में उनका विशेष मनोरंजन होता है। ये सभी मनुष्य किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोद के पात्र थे, पर उनकी ये दुर्गति हो रही है। अब तुम्हें यही सलाह देता हूं कि दम यहां से भागो, नहीं तो रमणी के दूसरे वार से कदापि न बचोगे। ये कहकर वो महात्मा अदृश्य हो गए। मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अर्धरात्रि के सन्नाटे में चोरों की भांति कमरे से बाहर निकला। शीतल आनंदमय समीर चल रही थी। सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे, मेहंदी की सुगंधि उड़ रही थी। मैं चलने को चला, पर संसार सुख भोग का ऐसा सुअवसर छोड़ते हुए दुख होता था। इतना देखने और महात्मा के उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की ओर खींचता था। मैं कई बार चला, कई बार लौटा, पर अंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई। मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और झील के किनारे किनारे गिरता पड़ता, कीचड़ में फंसता सड़क तक आ पहुंचा। यहां आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ, मानो कोई चिड़िया बाज के पंजों से छूट आई हो।

यद्यपि मैं एक मास के बाद लौटा था, पर अब जो देखा तो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था। कमरे में जरा भी गर्द या धूल न थी। मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हंसे और मित्रगण तो मुझे अभी तक मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बुलाया करते हैं। सभी कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला। महीना भर गायब रहने की तो बात ही क्या। इसलिए मुझे भी विवश होकर यही कहना पड़ता है कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा हो। कुछ भी हो, परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मैं उस पाप कुंड से बचकर निकल आया। चाहे स्वप्न ही हो, पर मैं उसे अपने जीवन का एक वास्तविक अनुभव समझता हूं, क्योंकि उसने सदैव के लिए मेरी आंखें खोल दी।

0: तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसमें आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ज्वालामुखी। फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ज्वालामुखी। 90.8 MHz पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद। हमारा अगला कार्यक्रम है सांगीतिक प्रस्तुति। कलाकार हैं कलापिनी कोमकली।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोंकली का गायन।

चांदनी केदार से आज शुरुआत करूंगी। बहुत पुरानी परंपरागत बंदिश है, उसी के साथ में एक और परंपरागत द्रुत रचना आपको केदार में सुनाऊंगी। तो शुरुआत में

मेरी बदली सुनाती हूँ। राग का नाम है दुर्गा और उसी के साथ में एक छोटा सा उसका तराना है एक ताल मिली बद। दोनों ही रचना कुमार जी द्वारा बनाई गई है और जो रूपक ताल में निबद्ध जो मधुले की रचना मैं आपको सुनाऊंगी वो विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के लिए कुमार जी ने बनाई थी। एकमात्र शायद ऐसी बंदिश है जो विशेष रूप से कोजागिरी के लिए बनाई गई है। तो आपको एक छोटी सी बंदिश सुनाती हूँ, उसके बाद में तराना सुनाऊंगी।

अभी आप सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोमकली का गायन सुन रहे थे। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम समाप्त करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी। इसके साथ ही अब हमारी दोपहर की सभा समाप्त होती है और अब हम अपनी सांध्यकालीन सेवा की ओर चलते हैं। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 185 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार, छंद है त्रिष्टुप।
1: कतरा पूर्वा कातरा परायोः कथा जाते कवयः को विवेदः विश्वं त्मना बिभृतो यद्ध नाम विवर्तेते अहनि चक्रियेव। हे ऋषियों, ये द्युलोक और भूलोक दोनों किस प्रकार उत्पन्न हुए और इन दोनों में कौन सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ तथा बाद में कौन हुआ, इस रहस्य को कौन भली प्रकार जानने में समर्थ है। ये दोनों लोक संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं और चक्र के समान घूमते हुए दिन रात का निर्माण करते हैं। भूरिम द्वे अचरन्ति चरन्तम् पद्वन्तम् गर्भमपदि दधाते नित्यम् न सूनुम् पित्रो रूपस्थे द्यावा रक्षतम् पृथ्वी नो अभवात्। स्वयं पदविहीन तथा अचल होने पर भी ये दोनों द्यावा पृथ्वी असंख्य चलने फिरने में सक्षम पदयुक्त प्राणियों को धारण करते हैं। जिस प्रकार माता पिता समीप उपस्थित पुत्र की सहायता करते हैं, उसी प्रकार द्युलोक और पृथ्वी हम सभी प्राणियों को संकटों से बचाएं। अनेहो दात्र मदिते रनर्वम हुवे स्वर्वदवधम नमस्वत तद्रोदसी जनयतम जरित्रे द्यावा रक्षतम पृथ्वी नो अभवात। हम अविनाशी पृथ्वी से पाप मुक्त, क्षय रहित, हिंसा रहित, तेजस्वी और विनम्रता प्रदान करने वाले धन वैभव की कामना करते हैं। हे द्यावा पृथ्वी, ऐसा वैभव स्तोताओं के लिए प्रदान करें। ये दोनों पाप कर्मों से हमारी रक्षा करें। अतप्यमाने अवसावन्ति अनुश्याम रोदसी देवपुत्रे उभे देवानामुभये भिरन्वाम द्यावा रक्षतम पृथ्वी नो अभवात। देव शक्तियों के उत्पादक द्युलोक और पृथ्वी लोक पीड़ित न होते हुए भी अपने कार्य में शिथिल न होते हुए अपनी संरक्षण शक्तियों से प्राणियों के संरक्षक हैं। दिव्यता युक्त दिन और रात के अनुकूल हम रहें। द्यावा पृथ्वी दोनों पाप से हमारी रक्षा करें। संगच्छ माने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रो रूपस्थे अभिजिघ्रन्ति भुवनस्य नाभिम द्यावा रक्षतम पृथ्वी नो अभवात। चिरयुवा बहिनों की तरह परस्पर सहयोग करने वाली ये दोनों द्यावा और पृथ्वी पिता के समीप अर्थात परमात्मा के अनुशासन में रहकर भुवन की नाभि यज्ञ को सूंघती हुई उससे पुष्ट होती हैं। ये दयावा पृथ्वी हमें सभी विपदाओं से संरक्षित करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 185 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। भगवान की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है।

और सब घट व्यापक साइया अगम अपार अलेख। तो जो वह एक न जान

ईश्वर की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है। ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

परमात्मा को जो प्रसन्न कर सकता है वह संसार को भी प्रसन्न कर सकता है। प्रभु की कृपा होने पर संसार स्वयं अनुकूल हो जाता है।

इसी रचना के साथ आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

जब कभी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों की चर्चा होती है, वहां प्रख्यात साहित्यकार भीष्म साहनी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उनको हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। भीष्म साहनी उन लेखकों में से थे जिनकी कहानियां सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती थीं। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे अपने पिता श्री हरवंश लाल साहनी और माता श्रीमती लक्ष्मी देवी की 7वीं संतान थे। उनके पिता अपने समय के प्रसिद्ध समाजसेवी थे, जबकि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बलराज साहनी उनके बड़े भाई थे। भीष्म साहनी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी और संस्कृत में हुई। बाद में उनका दाखिला स्कूल में कराया गया, जहां उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। 1937 में उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और उसके पश्चात डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के निर्देशन में कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो इन द नॉवल शीर्षक के अंतर्गत अपना शोध कार्य संपन्न किया। स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले भीष्म साहनी गहन मानवीय संवेदना के सशक्त हस्ताक्षर थे। उन्होंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ का स्पष्ट चित्र अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। उनकी यथार्थवादी दृष्टि उनके प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारों का प्रतिफल थी। भीष्म जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने जिस जीवन को जिया, जिन संघर्षों को झेला, उसी का यथावत चित्र अपनी रचनाओं में अंकित किया। वे लेखन की सच्चाई को अपनी सच्चाई मानते थे। भीष्म जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को मात्र कह देना ही नहीं, बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को नाप लेना भी उतना ही उचित समझते थे। वे अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता और संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते थे। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य और नैतिकता विद्यमान थी।

साहित्यकार भीष्म साहनी स्वाधीनता के आंदोलन से भी जुड़े रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल भी गए। विभाजन के समय वे और उनका परिवार पाकिस्तान से अमृतसर आ गया था। इसी दौरान उन्होंने विभाजन के हर दर्द को महसूस किया। एक साक्षात्कार में उन्होंने भारत आने की परिस्थिति का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि वे आजादी के समारोह का जश्न देखने रावलपिंडी से सप्ताह भर के लिए दिल्ली आए थे। उनकी पंडित नेहरू को लाल किले पर झंडा फहराते और हिंदुस्तान की आजादी का जश्न देखने की हसरत थी, लेकिन जब वे दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि गाड़ियां बंद हो गई हैं और फिर उनका लौटना नामुमकिन हो गया। विभाजन के बाद पाकिस्तान से देश में आने वाले लोगों की मनोदशा और समस्याओं का अत्यंत ही सजीव और वास्तविक वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक तमस में किया। पद्म भूषण से सम्मानित भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का साहित्य जगत में बहुत बड़ा स्थान है। विभाजन की त्रासदी पर तमस जैसी कालजयी उपन्यास लिखने वाले साहनी ने हिंदुस्तानी भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। भीष्म साहनी ने तमस के अलावा झरोखे, बसंती, मैया दास की माड़ी जैसे उपन्यासों और हानूश माधवी और कबीरा खड़ा बाजार में जैसे चर्चित नाटकों की रचना की। भाग्य रेखा, निशाचर, मेरी प्रिय कहानियां उनके कहानी संग्रह हैं। भीष्म साहनी ने दबे कुचले और समाज के पिछड़े लोगों की समस्याओं को जनभाषा में अत्यंत सटीक तरीके से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। मानवीय मूल्यों पर आधारित भीष्म साहनी की धर्म भावना इंसान को इंसान से जोड़ती है। उनके उपन्यासों में शोषण विहीन समतामूलक प्रगतिशील समाज की स्थापना के साथ समाज में व्याप्त आर्थिक विसंगतियों के त्रासद परिणाम, धर्म की विद्रूपता और खोखलेपन को उद्घाटित किया गया है।

जहाँ तक भीष्म साहनी के कथा साहित्य का प्रश्न है तो इसे काल की सीमा में बद्ध नहीं किया जा सकता। भीष्म साहनी सहज मानवीय अनुभूतियों और तत्कालीन जीवन के अंतर्द्वंद को लेकर सामने आए और उसे अपनी रचना का विषय बनाया। जनवादी चेतना के लेखक भीष्म साहनी की लेखकीय संवेदना का आधार जनता की पीड़ा है। जन सामान्य के प्रति समर्पित साहनी जी का लेखन यथार्थ की ठोस जमीन पर अवलंबित है। उनके साहित्य में जहां एक ओर सहृदयता और सहानुभूति है, वहीं दूसरी ओर जातीय तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान की आग भी है। वे पूंजीवादी आधुनिकता बोध और यथार्थवादी विचारधारा के अंतर्विरोधों को खोलते हैं। निम्न मध्य वर्ग के समर्थ रचनाकार भीष्म साहनी भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप विश्व साम्राज्यवाद और देशी पूंजीवाद में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। जिस तरह प्रेमचंद ने सामाजिक वास्तविकता और पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणामों को अपनी रचनाओं में चित्रित किया, उन्हीं विषयों को आजादी के बाद साहनी ने अपनी लेखनी का विषय बनाया।

बेहद सादगी पसंद रचनाकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर साहनी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज उठाने वाले इस लेखक का निधन 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुआ। अपनी कालजयी रचनाओं के कारण भीष्म साहनी साहित्य में युगांतकारी उपन्यासकार के रूप में चिर स्मरणीय रहेंगे। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेल भी एक परीक्षा है।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और हाजिर हूं लेकर आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आप सप्ताह भर इंतजार करते हैं और उस कार्यक्रम का नाम है बाल सभा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। ये मत सोचिएगा कि आप मुझे जवाब कैसे देंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ तो रेडियो के भीतर से आ रही है। तो बस आपने करना इतना है कि अगर आप बिल्कुल ठीक है तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाइए, और अगर मन है तो खिलखिलाइए, क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा उदास हो, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इस वक्त आपके वो टर्म वन टर्म टू वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना छोटे बच्चों के, वो शुरू हो जाते हैं। और जब वो शुरू हो जाते हैं तो किसी का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आता है तो बड़ा खुश होता है, और किसी का रिज़ल्ट थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है कई बार, तो उसका मुँह बिल्कुल ऐसे हो जाता है, आँखें झुक जाती हैं, वो स्ट्रेस में आ जाता है और सोचता है अब क्या करूं। तो उन बच्चों से भी मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझिए, प्यार की समझाइश समझिए, वो यही है कि हर जगह परीक्षा होती है, कई बार हम सफल होते हैं और कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बच्चों कि सफलता हमें मिलती ही रहे, मिलती ही रहे, मिलती ही रहे, मिलती ही रहे, क्योंकि अगर हम कभी हारे नहीं ना तो हम जीत के स्वाद को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमने आपकी पढ़ाई वाली परीक्षा की बात कर ली, लेकिन बच्चों जानते हैं खेलों में भी एक परीक्षा होती है। हाँ, खेल में भी परीक्षाएँ होती हैं। आपको लग रहा होगा अच्छा तो क्या खेल का भी रिजल्ट आता है? डेफिनेटली आता है। जब कोई खिलाड़ी टॉप पोडियम पे पहुंचता है और पीछे से राष्ट्रगान बजता है तो वो खेल का रिजल्ट ही तो है। कॉमनवेल्थ गेम में जब अस्मिता डे ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता ना, और बच्चों पीछे से राष्ट्रगान बजा, तो बस मैं अपनी ही जगह पे खड़ी हो गई, और उसकी आंखों में तो वो चमक दिखाई दे ही रही थी लेकिन मेरी आंखों में बहुत आंसू थे, क्योंकि मुझे पता है बच्चों जब कोई खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचता है ना, जैसे मैंने बताया कि टॉप पोडियम तक जब आप पहुँचते हो ना तो उसके पीछे अथक मेहनत होती है, बहुत कड़ा परिश्रम होता है, बहुत अनुशासन होता है और बहुत सारे लोगों का त्याग होता है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी बच्चों अकेला नहीं बनता। मैं अस्मिता डे की भी आपको कहानी सुनाऊंगी, और मैं आपको कहानी सुनाऊंगी नीरज चोपड़ा की भी, साइना नेहवाल की भी, पीवी संधू की भी, और कहानी आपको सुनाएंगे महेंद्र सिंह धोनी की भी। कोई भी खिलाड़ी जिन्हें आप आज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट से घिरा हुआ देख रहे हैं ना बच्चों, उन्होंने बहुत फांके लगाए होते हैं। फांके सिर्फ खाली पेट भोजन वाले फांके नहीं होते, स्ट्रगल के भी फांके होते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, कितनी तपस्या की होती है उन खिलाड़ियों ने, आपको वो सब कुछ नहीं दिखता। आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है एक खिलाड़ी जिसके चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारी कैमरा लाइट्स उस पर पड़ रही हैं, और आपको दिखती हैं लोगों की तालियाँ, उनके इंटरव्यूज़। लेकिन सच में बच्चों, यकीन मानिए, जब भी आप किसी ऐसे सफल खिलाड़ी को देखते हैं तो उसकी कहानी पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि उसकी ज़िंदगी दरअसल कैसी थी, है ना? क्योंकि ये ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ऐसी कहानियाँ जो काल्पनिक होती हैं वो पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को कई बार ऐसी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो सब कुछ कल्पनाओं के देश में ले जाती हैं, कि रानियों का देश, परियों की कहानी, है ना, अच्छा लगता है ये सब कुछ। लेकिन कभी कभी अपने असली जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ भी हमको जाननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रेरणादायक होती हैं। अब आपको मैं अपनी बात पर ले आती हूँ कि इतनी सारी बातें मैं आपसे कर क्यों रही हूँ। तो बच्चों, ऐसा है कि खेलों में भी परीक्षा होती है। आज हमारा बाल सभा का विषय यही है और मैं आपसे आज बहुत सारी बातें पूछने वाली हूँ। तो चलिए बताइए तो जरा कि आप में से कितने बच्चों को दौड़ना अच्छा लगता है, कितनों को बैडमिंटन, कितनों को कबड्डी, हॉकी या बॉक्सिंग पसंद है। जरा मन ही मन में अपना हाथ उठा लीजिए। अच्छा, एक और सवाल, कभी आपने सोचा है कि जो खिलाड़ी भारत की जर्सी पहनकर खेलते हैं वो वहां तक पहुंचते कैसे हैं? क्या कोई एक दिन में भारत की टीम में आ जाता है? नहीं, उनकी कहानी भी आपकी और हमारी तरह शुरू होती है एक छोटे से स्कूल से, किसी गांव के मैदान से, किसी पार्क से या फिर घर के आंगन से। मान लीजिए आपके स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता हुई, आप पहले स्थान पर आ गए, फिर आपको ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाता है, फिर आप वहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो फिर आप कहां पहुंचते हैं? आप पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब जिला स्तर पर पहुंचते हैं। अब आप जिले में भी जीत जाते हैं, जैसे ग्वालियर, जैसे शिवपुरी, जैसे भोपाल, ऐसे आप अलग अलग जगह पे जीत जाते हैं। फिर होता है संभाग स्तरीय, है ना, संभाग मतलब उस संभाग में जितने जिले आते हैं आपको वहां पे प्रतियोगिता में अपना खेल दिखाना होता है। अब क्या हुआ, अब जब आप संभाग में भी प्रथम आ गए, फिर आप आते हैं स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। अब जब आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आ जाते हैं तब आपकी जो मेहनत है वो और भी दुगनी तिगुनी चौगुनी हो जाती है, आपका अनुशासन और महत्व रखने लगता है। क्योंकि जब आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंचते हैं, जैसे मैं मान लूं कि मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोई खेल प्रतियोगिता है और टीटी नगर जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अगर वहां वो हो रही है, तो कोई खिलाड़ी ग्वालियर से आया होगा, कोई खिलाड़ी भोपाल से, कोई खिलाड़ी आया होगा किसी दूसरे संभाग से, आपस में खूब अच्छी प्रतियोगिता होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां से जो खिलाड़ी प्रथम आएगा ना वो स्टेट का यानी कि अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। बच्चों समझ में आ रहा है आपको, ये आपके आंगन से शुरू हुई कहानी कहां तक आप पहुंची है। और फिर आप जाओगे नेशनल टीम में खेलने। नेशनल टीम में कैसे खेलोगे, आप जाओगे अपनी स्टेट का रिप्रेजेंट करोगे और नेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आप भाग लोगे। तो अब मान लीजिए कि वो राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता कहाँ पर है, मान लीजिए कि भोपाल में ही है, तो भोपाल में कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आएंगे, कोई खिलाड़ी आंध्र प्रदेश से होगा, कोई खिलाड़ी महाराष्ट्र से होगा, कोई खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से होगा। भारत के जितने राज्य होंगे वहाँ के बेस्ट खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। और जो खिलाड़ी अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है ना बच्चों, उसके साथ बहुत सारे कोचेज, बहुत सारे मैनेजर, ये सब कुछ आए होते हैं आपका ध्यान रखने के लिए। और फिर आप कैसी डाइट ले रहे हैं, आप खाने में क्या खा रहे हैं, ये प्रदेश स्तर के खेलों से जुड़े जो अधिकारी होते हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी बन जाता है। बच्चों हर चीज का आपके ख्याल रखा जाता है। फिर आता है वो दिन जब आप अपने स्टेट के लिए खेलते हुए जीत जाते हैं। अब क्या होगा, उत्सुकता लग रही है? फिर बच्चों आप मान लीजिए कि नेशनल चैंपियनशिप में फर्स्ट आ जाते हो, क्या होगा? अब क्या होगा, अब वो होगा जिसका हमें इंतजार था। अब वो होगा बच्चों कि आप भारत के लिए खेलने के लायक माने जाने लगते हो। फिर राष्ट्रीय स्तर पे कैंप आयोजित होता है जिसमें कुछ चुनिंदा बच्चे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पोर्ट्स एकेडमी होती है जहां आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। अब देश के जो सबसे बेहतर कोच हैं वो आपको तैयार करते हैं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए। और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता कोई एक नहीं होती, दो नहीं होती, बहुत सारे खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसे एशियाई गेम्स, और कुछ होती हैं सिर्फ आपके खेल की, जैसे एथलेटिक्स मीट, जूडो मीट। फिर इधर आ जाइए आप, तैराकी का कोई कॉम्पिटिशन होगा इंटरनेशनल, तो उसमें अगर आप भारत के लिए खेलेंगे। तो ऐसे हर स्तर पर आपको खुद को साबित करना पड़ता है। बच्चों पूरे भारत से हजारों बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से सबसे अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर वो भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े खेलों का जब आयोजन होता है तो आप पहनते हैं भारत देश की जर्सी। भारतीय खिलाड़ी के सीने पर तिरंगा लगा होता है और फिर वो दुनिया के सामने उतरते हैं। ये सोचने मात्र से ना आपको कितना गर्व महसूस होने लगता है। तो सोचिए कि जिस दिन आप ये कर रहे होंगे बच्चों, वो कितने गौरव के पल होंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, अगर कोई खिलाड़ी केवल एक प्रतियोगिता वाले दिन ही अभ्यास करे तो क्या वो जीत पाएगा क्या बच्चों? नहीं, जीत उसको मिलती है जो रोज अभ्यास कर रहे हैं, जो समय का पालन कर रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, दोबारा दोबारा और दोबारा कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि खेलों में हर बार आपको जीत मिले ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ना, खेल भी एक परीक्षा है। तो जो हार गए हैं वो फिर खड़े हो रहे हैं। और याद रखिए, मेडल गले में भले ही एक दिन पड़ता हो बेटा, लेकिन उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत, पसीना और धैर्य छिपा होता है। तो आज जब आप ये बाल सभा सुन लीजिएगा तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है, और फिर अपने माता पिता और खेल शिक्षक से बात कीजिएगा कि आपके सपनों की शुरुआत कैसे की जाए। क्या वो दिन आज का ही है, मतलब जब ये बाल सभा आप सुन रहे हैं और आपके मन में ये बात आ रही है कि आज मुझे दीदी ने बता दिया है कि मैं कैसे एक एक एक एक स्तर पार करता जाऊंगा और एक दिन मैं भी भारत की जर्सी पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ, तो फिर आज से ही सपने देखना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ सपने देखना शुरू मत कीजिएगा बच्चों, उसके पीछे कड़ी मेहनत भी कीजिएगा। अब आपको मैं कुछ उन लोगों की बातें बताने जा रही हूँ जिनको आपने सिर्फ मेडल पहनते हुए देखा है, लेकिन उसके पीछे उनका बहुत कड़ा अभ्यास है बच्चों। नीरज चोपड़ा, आपने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि जब जब नीरज चोपड़ा मैदान में आते हैं तो लाखों करोड़ों भारतीय टकटकी बांधे बस उनके भाले को और उनकी स्पीड को देखते रहते हैं कि कैसे भी वो जो आखिरी लाइन है उसको क्रॉस कर जाए नीरज चोपड़ा का भाला और देश को मेडल मिल जाए, है ना। तो जब ये हम उम्मीद बांधते हैं तो उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है। वो हरियाणा के रहने वाले हैं और अपने गाँव में उन्होंने एक दिन स्टेडियम में भाला फेंकते कुछ खिलाड़ियों को देखा, सिर्फ देखा था। लेकिन वो स्टेडियम गए क्यों थे ये पता है आपको? मैंने एक बार नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे थे कि मैं बहुत मोटा हुआ करता था और घर वाले कहते थे कि थोड़ा फिट हो जाओ, और जब फिट होने की शुरुआत करने के लिए मैं स्टेडियम के मैदान में सिर्फ दौड़ने गया हुआ था तो मुझे लगा कि ये तो मैं भी फेंक सकता हूँ। देखिए सपने की शुरुआत कैसे होती है। जो लोग भाला फेंक रहे थे उनको देखकर नीरज चोपड़ा ने ये सोचा कि अब से मैं भी जेवलिन थ्रो करूंगा, लेकिन वो लोग आज नीरज चोपड़ा जी के लिए तालियां बजाते हैं। पता आपको, जो सिर्फ अपना वेट रिड्यूस करने गए थे वो आज भारत के लिए ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं, वो आज भारत के लिए कॉमनवेल्थ में मेडल ला रहे हैं, एशियाई खेलों में मेडल ला रहे हैं और एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में तो ना जाने कितने कितने मेडल ला रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये प्रेरणा बहुत बड़ी है। मीराबाई चानू मणिपुर के एक छोटे से गाँव की बेटी हैं, जंगल से लकड़ियाँ उठा उठा कर घर लाती थी। सुना तो मैंने ये भी है कि वो अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा वजन की लकड़ियाँ अपने घर लाती थी, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी लेकिन उनके हौसले बहुत बड़े थे बच्चों। कई बार हार लगी, कई बार चोट लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन वही मीराबाई चानू चैम्पियन बनती हैं। भारत की जर्सी फिर से छा जाती है, फिर से ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई गेम में भारत के लिए पदक जीतकर करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन जाती हैं मीराबाई चानू। पीवी संधू, नाम तो सुना होगा। सबसे बड़ी ताकत उनकी जानते हैं क्या है? उनकी ताकत है उनका अनुशासन। रोज सुबह जल्दी उठकर कई कई किलोमीटर दूर अपनी एकेडमी जाकर अभ्यास करती हैं। जब बहुत सारे बच्चे छुट्टियां मना रहे होते थे ना, तब पीवी सिंधु कोर्ट पर पसीना बहा रही होती थी और वर्षों की इसी मेहनत ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाली वो भारत की पहली खिलाड़ी बनी। हाँ, कितनी बड़ी बातें हैं, कितना बड़ा सम्मान है, लेकिन उसके पीछे उनकी माँ का भी हाथ है। उनके पिता का भी हाथ है। ये लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों। कई बार हमें अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाकर बसना पड़ता है। अब मान लीजिए वो सब जूनियर खेल रही हैं और सब जूनियर सबसे छोटी उम्र के बच्चों के प्रतियोगिताएं होती हैं और सब जूनियर में बच्चा अकेला तो जा नहीं सकता, तो कई बार पेरेंट्स को भी साथ में जाना पड़ता है। तो वो तो खेल रही हैं लेकिन उनके साथ उनकी माँ अपना घर छोड़कर वहाँ रह रही हैं, ये त्याग है कि नहीं? तो अकेले कोई खिलाड़ी नहीं जीतता, खिलाड़ी के कोच, खिलाड़ी के पेरेंट्स, खिलाड़ी के वो दोस्त जो उनको उनकी हार के वक्त भी प्रेरित कर रहे थे अच्छा खेलने के लिए, उन सब लोगों के सपने एक साथ जीतते हैं बच्चों। निखत जरीन, आपको पता है कई लोगों ने कहा कि लड़कियां बॉक्सिंग नहीं कर सकती, लेकिन निखत जरीन ने ये साबित किया कि वो बॉक्सिंग न सिर्फ कर सकती हैं बल्कि जीत भी सकती हैं। और आज निखत जरीन हजारों हजारों लड़कियों की प्रेरणा है। जो भी बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, निखत जरीन उस हर शख्स की प्रेरणा है। अब आप सोचिए कि कितना अजीबोगरीब है सब कुछ, कि एक लड़की घर में बैठी है और उससे सब लोग कह रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, अब तुम पढ़ाई करो, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर देख लेना हम तुम्हें अच्छे स्कूल से निकाल लेंगे। और वो बच्चा बार बार कह रहा है कि नहीं, मेरा पढ़ाई में भले ही ज़्यादा मन नहीं लग रहा है लेकिन मेरा मन कहीं और लग रहा है। हर बच्चा अलग होता है। इसी बहाने एक और बात मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे अकेले बाल सभा नहीं सुनते हैं, बच्चों के मम्मी पापा भी तो बाल सभा सुनते हैं। तो फिर उन लोगों से मुझे यही कहना है कि एक तो अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी से मत करिए, है ना। हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। तो ये आपकी परीक्षा है कि आप अपने बच्चे की कला को समझें, पहचानें और उसको उस लाइन चुनने में मदद करें, उसके ऊपर अपने निर्णयों को ना थोपें। तो देखो बच्चों, आपके बहाने मैं आपके मम्मी पापा से भी थोड़ी थोड़ी अपने मन की बातें ना कर ही लेती हूँ, ये राज की बात है। अब ऐसा होगा कि बच्चे हंस रहे होंगे कि ओहो दीदी ने तो आज हमारे बहाने मम्मी पापा को भी समझा दिया। तो सही बात है, थोड़ी थोड़ी समझाइश दोनों तरफ हो जानी चाहिए। वैसे एक बात और है बच्चों, कि आपके स्कूल का जब रिजल्ट आता है तो आपको खुशी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? आप रिपोर्ट कार्ड लेने जब पहुंचते हो उसमें जब आपके अच्छे अंक दिखाई देते हैं तो आपको लगता है वाह क्या बात है, पापा आपके गर्व से कहते हैं शाबाश, दादा दादी नाना नानी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अभी जब 10th का रिजल्ट आया था तो आप यकीन नहीं कीजिए, मेरे को एक बच्ची बता रही थी कि उसके मम्मी पापा को ना ऐसे ऐसे लोग फोन करके पूछ रहे थे क्या रहा आपकी बिटिया का, जिन्हें उससे कोई मतलब भी नहीं था, जो उसकी तैयारी में भी शामिल नहीं थे। तो कई लोगों को ये भी होता है कि पता करें कैसा पढ़ी थी ये बच्ची, है ना। तो कई बार हमको क्या होता है बच्चों, कि कई बार हमको ये भी देखना होता है कि किस तरह हमारे साथ जो खड़े हैं उसके अलावा हमारे जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं वो भी ये उम्मीद करते हैं कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएं, है ना। तो सबके लिए हमें क्या करना है, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी मेहनत, थोड़ा अनुशासन और थोड़ी हार के लिए भी तैयारी, क्योंकि एक बार में सब नहीं जीतते हैं। ठीक है, अब आगे की बात बताएं आपको। ज्ञानेश्वरी यादव, ये क्या करती हैं, वेटलिफ्टिंग। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव और सामान्य परिवार से आने वाली ज्ञानेश्वरी अपने पिता से ट्रेनिंग लेने की कोशिश करती थी। उनके पिता के पास ट्रेनिंग और डाइट का खर्च उठाने के लिए पैसे भी नहीं थे, बहुत आर्थिक तंगी का सामना किया, कुछ लोगों से उधार भी लिया। लेकिन अब आप देखिए, अब आपको पैरा एथलेटिक्स की बात बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शर्मिला धनकड़ बहुत गंभीर और अकल्पनीय संघर्षों को झेलने के बावजूद पैरा शॉटपुट एथलीट शर्मिला धनकड़ ने हार नहीं मानी और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं कि कैसे शुरू हुआ अस्मिता डे का सफर। अस्मिता डे जिन्होंने पहली बार जूडो में 48 kg में बच्चों गोल्ड मेडल जीता है। त्रिपुरा के एक बहुत छोटे से शहर से आती हैं अस्मिता डे। बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी मेहनत और जिद की कहानी है अस्मिता डे की कहानी। मैंने कहा था ना, कई बार हमें काल्पनिक कहानियां नहीं पढ़नी चाहिए, हमें कई बार वो कहानियां पढ़नी और सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए जो रियल लाइफ से आती हैं, मतलब हमारे देश के असली हीरो की कहानी। हाँ, उनके पिता साइकिल की मरम्मत का काम करते थे और वो देश के लिए जूडो में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक ले आई हैं। फाइनल में उन्होंने कनाडा के खिलाड़ी को हराया। अस्मिता ने खेल की शुरुआत जूडो से नहीं की थी, ये और एक खास बात है। उन्होंने 800 मीटर की दौड़ से अपने खेलों की शुरुआत की थी। ठीक, मतलब उनका इवेंट जूडो नहीं था, उनका इवेंट क्या था, 800 मीटर रेस। लेकिन 2015 में त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में दाखिला लेने के बाद उन्होंने प्रशिक्षकों की सलाह पर जूडो को अपनाया था, क्योंकि जूडो में लोगों को लगता है सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सारे जूडोकास सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी फुर्ती से भी जीतते हैं, कई बार अपनी टेक्निक से भी जीतते हैं, क्योंकि खेलों में टेक्निक्स का बहुत महत्व है कि आप तकनीकी रूप से कितने सजग हैं, कितनी जल्दी आप ये पहचान लेते हैं कि आपके सामने वाले, मतलब आपके अपोनेंट की कमजोरी क्या है, और उसी पर आप वार करते हैं, तब आप जीतते। बहुत रणनीति होती है बच्चों खेलों के पीछे। आपको एक कॉम्पिटिशन जीतने के लिए आपके अपोनेंट यानी कि आपके दूसरी तरफ जो खिलाड़ी खड़ा हुआ है उसके ढेर वीडियो देखने होते हैं, बहुत मेहनत लगती है कि ये किस तरह से खेलता है, इसका पैटर्न क्या है। तो ये खेलों की परीक्षा ऐसे होती है, और जब आप देख लेते हैं कि ये खिलाड़ी ऐसे खेलता है, ये इसकी ताकत है, ये इसकी कमजोरी है, तो फिर आप अपनी खेल की रणनीति उस हिसाब से बनाते हैं। राष्ट्रीय स्कूल खेल में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आपको एक और राज की बात बताऊं, जो भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र हैं, उसमें भी अस्मिता डे ने प्रशिक्षण लिया है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे भोपाल से भी इस गोल्डन गर्ल का नाता है। खास बात यह है कि ये जब लगातार मेहनत कर रही थी, इनके पिता की स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई, लेकिन इनकी माँ ने निर्णय लिया कि कुछ भी हो मेरी बेटी इस वक्त खेलने जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब परिवार पे संकट हो और उस वक्त भी हम बच्चे की जीत को चुने, तो ये बेटा बहुत कठिन निर्णय होता है। इसके लिए हमें अपने माता पिता को ढेरों धन्यवाद देना चाहिए, है ना। और आज जब वो मेडल जीत गई हैं, सब लोग उनकी तरफ बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, तब वो गर्व से कह पा रही हैं कि ये मेडल मैं अपने कोच और अपने पिता को डेडिकेट करती हूँ। अच्छा लगता है ना ये सब सुन के। तो खेलों की परीक्षा किस तरह से होती है ये आप समझ गए हैं। आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं खेलों की बदौलत उन्हें यूपी पुलिस में नौकरी भी मिली हुई है। तो कई बार जब आप अच्छा खेल खेल रहे होते हैं अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए, तो बच्चों आपको सरकारी नौकरियों में भी जगह मिलती है, क्योंकि हर विभाग अपनी तरफ से कुछ खिलाड़ियों को भेजता है। जैसे रेलवे के अलग प्लेयर्स होते हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिशन में जाते हैं, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन एक कार्यक्रम में ये सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चाहती यही हूँ बच्चों कि आप लोग जो भी बाल सभा से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे खूब खेलें और खेलों को प्रोफेशन की तरह भी अपनाएं। जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं खेल के मैदान पर, वो इसे प्रोफेशन की तरह लें। तो इतनी सारी बातें बता देने के बाद आपको पता ही है कि हमारे कुछ संकल्प हम बाल सभा के अंत में जरूर लेते हैं। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए। आज जबकि हमने बात की है कि खेलों में भी परीक्षा होती है, तब पहला संकल्प हम सब मिलकर यही लेंगे कि हमारी जिंदगी में हम किसी भी क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। पढ़ाई के अलावा किसी ना किसी खेल को जरूर अपनाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। आज का तीसरा संकल्प यह है कि जीवन में अनुशासन के महत्व को समझेंगे। और आज का आखिरी संकल्प ये है कि हम जो भी काम हमें पसंद है उसमें एकाग्रता, परिश्रम और फोकस, इन तीनों को एकाकार करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। अब धीरे धीरे आंखें आप खोल सकते हैं। तो फाइनली बच्चों, संकल्प भी हम सब ले चुके हैं, इतनी सारी कहानियां भी आपको सुना चुके हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की और उनके जीवन की। तो अब आप अपना ध्यान रखिए और आपके मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए। जब वो कहीं बाहर से आए तो उन्हें एक ठंडा ग्लास पानी ज़रूर दीजिए, ठीक है। इसी छोटी सी सीख के बाद मुझे भी बाय बाय कहिए, है ना। तो चलूँ, अपना ख्याल रखिएगा, चलती हूँ। और अब आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बालसभा। आज का विषय था खेलों की भी परीक्षाएं होती हैं। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना दीदी गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और मैं थी आपके साथ मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
2: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
3: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
4: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी। तो बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट पीएससी के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पे डिपेंडेंट थे या ब्रेल पे डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
3: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
4: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब यह है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम यह होता है कि जो कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो भी आपको कमांड देके आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया है कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115, तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
3: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
4: जी, उनका जो
3: हर क्षेत्र में,
4: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है। बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग। IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है। या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ, तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हील चेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात तो और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता। सर, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके। तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के सेकंड थर्सडे जो होता है उस पर विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुँच पाए कि नंबर एक की दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज़ कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज़ होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज़ होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तुम बिना आके भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना बच्चों लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें। तो

0: आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उसको उनको मदद करे। दोनों के दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
1: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा जी, मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं।
0: जी हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना, उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए, है ना। पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है, तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है, क्योंकि टच स्क्रीन पे टाइप करके, नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, एप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है, या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
1: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
0: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करेगा। वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाए कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाए।
1: सर, आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
0: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
1: सर, आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
0: जी, थैंक यू।
2: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर सो।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। वाकई में श्रोताओं, गर्व है हमें अपने आप पर कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां के युवा स्वेच्छा से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और देश सेवा के लिए स्वेच्छा से हमारी सशस्त्र सेनाओं में सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। वरना विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां उस देश के हर युवा पर सेना में जाने की अनिवार्यताएं बनाई गई हैं, चाहे वो इसके लिए उत्सुक हो या ना हो। श्रोताओं, आजादी के बाद से ही हमारे राष्ट्र ने कई तरह की आपदाओं और युद्धों का सामना किया है और जब जब भी राष्ट्र की सुरक्षा और अस्मिता पर प्रश्न आया है, हमारी भारत की युवा शक्ति ने अपनी सशस्त्र सेनाओं के रूप में इन कठिनाइयों से बड़े ही साहस के साथ मुकाबला किया है। आज का भारत युवाओं का भारत है, क्योंकि हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवा ही तो है और युवा पीढ़ी ही इस देश का भविष्य है। यदि देश की युवा पीढ़ी अनुशासित, स्वस्थ और साहसी है तो देश के विकास को और देश की सुदृढ़ता को कभी ठेस नहीं पहुंच सकती। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद से ही कई कदम उठाए गए ताकि देश का युवा नेतृत्वशाली, सशक्त और साहसी नागरिक बन सके और NCC यानी नेशनल कैडेट कोर की गठन इसी सोच का परिणाम है। तो आज कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे NCC पर और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडियो में।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। नेशनल कैडेट कोर
2: जी,
3: जब भी आप ये शब्द का जिक्र आता है तो मेरे ख्याल से मेरे सामने तो एक बहुत ही यंग स्मार्ट बॉय और गर्ल ड्रेस्ड अप इन अ यूनिफॉर्म मूविंग अराउंड इन अ डिसिप्लिन मैनर वो दिखता है।
2: बिल्कुल सर,
3: आरडी परेड जब होती है, रिपब्लिक डे परेड होती है, आप उनको देखिए उस समय जो उनके चेहरे पे
2: जोश आता है जी, वो देखते ही बनता है जी।
3: और जिस तरह से उनकी मेहनत झलकती है
2: जी,
3: मतलब वो ऑलमोस्ट रेगुलर आर्म फोर्सेस के साथ जो है कदम से कदम मिला के चल रहे हो।
2: बिल्कुल सर,
3: सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऐसी फोर्स है ये जो कि युवाओं को डिसिप्लिन करने में, उनमें एक जोश भरने में जिसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा
2: जी,
3: है।
2: बिल्कुल सर,
3: इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये वॉलंटियर फोर्स है। आपने बिल्कुल सही कहा था
2: जी,
3: कि हमारे यहाँ जो है ये युवा जो है ये इतने तत्पर रहते हैं कि हमें कभी फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती
2: जी। बिल्कुल,
3: और वही हमने NCVC में भी देखा है कि वहां पे भी हर विंग में जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, हर जगह जो है बच्चे जो है बिल्कुल पूरे जोश से तैयार रहते हैं हमें NCC का हिस्सा बनना है। जो ट्रेन्ड, मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड फोर्स है, जो इसको बनाया किस लिए गया था कि एक सोच आई थी कि हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जो देश को अगर मुसीबत पड़ती है, मतलब किसी तरह से हमारे पास इमरजेंसी में जो है हमारी देश की आर्म फोर्सेस को मदद कर सके। दूसरा, इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद कर सके। तीसरा, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे कि जो देश के युवा हैं, मतलब उनके अंदर जो है एक देशभक्ति की भावना हो
2: जी,
3: उनके अंदर अनुशासन हो
2: जी,
3: उनके अंदर फिजिकल फिटनेस हो, उनको ये पता चले कि हमारा देश क्या है, कितना विशाल है, कितना विस्तृत है, वो दूसरे स्टेट्स के लोगों के बारे में जान पाए
2: जी,
3: एक कम्युनल हारमोनी वो हो लोगों के बीच में जो है। तो इन सब एम्स के लिए जो है इस पोस्ट का गठन किया गया था। ये जो है 48 में पार्लियामेंट एक्ट के बाद एनसीसी का मतलब एक जन्म हुआ और इसमें जो है सबसे पहले एनसीसी सेक्रेटरिएट सेटअप हुआ था।
2: अच्छा।
3: जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, जो कि आजकल जिसको हम एनसीसी डायरेक्टरेट बोलते हैं। तो जो सबसे पहला जब सेक्रेटरिएट सेटअप हुआ था उसको कर्नल जीजी बीवूर थे।
2: अच्छा।
3: जो बाद में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने थे जनरल में, वो
2: जी,
3: तो वो फर्स्ट डायरेक्टर थे इस ऑर्गेनाइजेशन
2: के।
3: उसके बाद जो है हेडक्वार्टर बना, तो अब देखिए मार्च में मतलब जैसे हेडक्वार्टर बना था उन्होंने 31 मार्च को चार्ज अज्यूम किया था और जुलाई में जो है इसकी जो योजना है ये योजना स्कूलों में इंप्लीमेंट हुई थी।
2: अच्छा।
3: गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल कॉलेजेस खुले थे समर वेकेशन के बाद हुए, तो उस साल 1948 में ही एनसीसी वाज एबल टू एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट 96 यूनिट्स
2: पहले ही साल में
3: जिसमें कि उन्होंने 83 इन्फेंट्री यूनिट्स थी, आर्मर्ड की एक यूनिट थी, फिर आरटी इंजीनियर सिग्नल्स की यूनिट्स थी। यूनिट्स का मतलब ये होता है कि वो बेस बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है।
2: अच्छा।
3: एक तरह से
2: बिल्कुल
3: फर्स्ट ईयर में ही तकरीबन 20,000 कैडेट्स जो है इसमें शामिल हो गए थे।
2: क्या बात है।
3: उस समय जो है ये सिर्फ मेल्स के लिए था जब शुरुआत
2: में जी,
3: लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 49 जो है जुलाई 1949 में ये गर्ल्स डिवीजन भी आ गई थी।
2: अच्छा, अगले ही वर्ष,
3: अगले साल जो आ गई थी।
2: क्या बात है।
3: फिर एनसीसी का विस्तार हुआ तो 1950 में जो है एयरविंग भी इसमें जुड़ गया, तो उसमें एक स्क्वाड्रन मुंबई में रेज हुई थी, एक कोलकाता में रेज हुई थी, एंड फिर जो नेवी है नेवल विंग जो है वो 1952 में हो गया था। तो इस तरह से जो ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई 48 से 52 के बीच में तीनों विंग्स में आ गई थी। और जैसे हमने बोला फर्स्ट ईयर से शुरू करके आज आप ये देखिए कि इट इज द फोर्स consisting of almost 13 lakh plus people.
2: क्या बात है।
3: वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टूडेंट लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन है, volunteer ऑर्गेनाइजेशन
2: जी। सर बहुत गर्व की बात है,
3: बहुत गर्व की बात है। और इसका जो एम था वो यही था कि हमारे जो बच्चे हैं उनके में कोर वैल्यूज डेवलप हो, पेट्रोटिज्म हो मतलब देशभक्ति की भावना हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो, इनिशिएटिव होता है, करेज होता है, फिजिकल फिटनेस होती है, मेंटल रॉबस्टनेस होती है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है ना, तो सेल्फलेस सर्विस है, तो ये सब जो है मतलब एम को मद्देनजर रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया।
2: कुल मिलाकर आप मतलब एक देश के जिम्मेदार नागरिक बने।
3: बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा, ताकि अगर आपने उनको ट्रेनिंग दी है वो आर्म फोर्सेस में ना भी जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, अपना भी काम करें, तो एक उनके अंदर एक भावना हो
2: जी,
3: और दूसरा है वो डिसिप्लिन रहे, है ना, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज होती है अगर आपने एक बार डेवलप कर दी तो फिर
2: आजीवन है सर,
3: आजीवन है
2: जी।
3: और ये देखा भी गया है कि जो एनसीसी में होते हैं उनका एक अलग पर्सनालिटी होती है
2: जी। बिल्कुल सर, उनका व्यक्तित्व अलग ही झलकता है,
3: अलग ही झलकता है
2: जी।
3: हम इसके बारे में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र करते हैं
2: जी। बिल्कुल,
3: अगर आप देखें तो दिल्ली में जो है हमारा एनसीसी हेडक्वार्टर है, जिसको कि डायरेक्टर जनरल एनसीसी जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं, जिसकी इक्विवेलेंट जो एयरफोर्स और नेवी में होते हैं वो उसको कमांड करते हैं। तो उसके बाद डायरेक्टरेट्स होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर।
2: अच्छा।
3: एमपी छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट है
2: जी।
3: तो ऐसे करके 17 डायरेक्टरेट्स हैं।
2: अच्छा।
3: और इनको जो है मेजरल या ब्रिगेडियर कमांड कर रहे होते हैं, और जो ये जो डायरेक्टरेट्स होते हैं उनके नीचे फिर ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं।
2: अच्छा।
3: तो ग्रुप हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो जनरली ब्रिगेडियर या कर्नल जो है कमांड करते हैं, और फिर उसके नीचे जो बटालियंस होती हैं जो कि कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह एसोसिएटेड होती हैं उनके अंडर में स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह आते हैं।
2: हाँ।
3: तो ये जो बटालियंस होती हैं ये ग्रुप हेडक्वार्टर्स में आती हैं, और फिर बटालियंस के अंडर में कंपनीज आती हैं।
2: अच्छा।
3: ठीक है। तो जैसे अगर एक एरिया में अगर वहाँ पे एक बटालियन है तो उसके नीचे जितने स्कूल कॉलेजेस वगैरह होंगे
2: जी, जी।
3: वो आते हैं, उनके फिर वो कंपनीज में मतलब डिवाइडेड होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो बटालियंस जो होती हैं उसको अगेन कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड करते हैं, एंड जो उसके नीचे जो कंपनीज होती हैं, स्टाफ होता है एनसीसी का, उसमें रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के।
2: अच्छा, जी।
3: तीनों विंग के होते हैं जो कि जनरली कमांड में होते हैं, और ग्रुप हेडक्वार्टर में जैसे एडम ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो भी उसके होते हैं
2: जी।
3: फिर इसके अलावा इसमें एक और एंट्री होती है, एएनओस होते हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स बोलते हैं।
2: ओके, जी।
3: जो कि कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं या कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं एनसीसी में, जो वॉलंटियर करते हैं
2: जी।
3: तो उनको कॉलेज का जो होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको कंट्रोल करते हैं।
2: अच्छा।
3: इनकी ट्रेनिंग होती है विमेंस के लिए जो है ग्वालियर में है स्कूल इनका, और कॉलेज एनसीसी कॉलेज है, और कामटी में जो है ओटीएस कामटी है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जो है परमानेंट स्टाफ होता है उसमें ये आर्म फोर्सेस का होता है।
2: अच्छा।
3: फिर सिविलियंस होते हैं जो कि मतलब सिविल स्टाफ होते हैं जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है वो रहता है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिक्स होती है।
2: तो सर क्या जो संगठन है एनसीसी वो भी क्या रक्षा विभाग के अंतर्गत?
3: हाँ जी, ये रक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही आता है। और जैसे हमने बताया कि इट्स टोटल तरह से मिक्स हो रहता है, तो इसमें जो स्टेट है स्टेट लेवल से भी एम्प्लॉइज होते हैं, देन उसके बाद जो है आर्म फोर्सेस के होते हैं, सिविलियंस होते हैं, सब मिलके होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है एनसीसी में वो होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है सबसे ज्यादा महत्व रखती है एनसीसी में। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि इवॉल्व होते होते आज हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एनसीसी का वो बहुत ही सशक्त माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें कि सारे के सारे अपग्रेडेशन होते रहते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट होते रहते हैं, और इसी से जो हमारे एम है जो एनसीसी के उसको पूरा करने में सक्षम है आज तक।
2: तो सर अब एक प्रश्न ये आता है कि स्कूल लेवल से यदि कोई बच्चा एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी कितनी उम्र होना चाहिए या वो किस स्टैंडर्ड से एनसीसी ज्वाइन कर सकता है?
3: गुड। देखिए एनसीसी के दो विंग्स होते हैं, एक होता है सीनियर डिवीजन होता है, एक होता है जूनियर डिवीजन।
2: जी,
3: जूनियर डिवीजन से हम बात करते हैं, जूनियर डिवीजन 9th, 10th, 11th, 12th में होता है।
2: अच्छा।
3: तो उस उम्र के बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं, और सीनियर डिवीजन कॉलेज में होता है। तो ये जो होते हैं बच्चे जो है उसके हिसाब से जो क्लास में होते हैं जिस क्लास में वो उसमें वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो उनको वहाँ पे ये इंडिपेंडेंस रहती है कि उस कॉलेज का एसोसिएशन जिस के साथ है, आर्मी के साथ है, नेवी के साथ है, एयरफोर्स के साथ है, तो अकॉर्डिंगली दे आर एबल टू ज्वाइन।
2: तो सर ये तो हो गया कि हमने एनसीसी ज्वाइन कर ली, तो अब ट्रेनिंग किस तरह से होती है उनकी?
3: एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है
2: जी,
3: उसको अगर हम बोलें जैसे एक तो होता है वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, उसको हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स बोलते हैं।
2: अच्छा।
3: आपने देखा होगा कॉलेज में स्कूल्स में हफ्ते में एक दिन जो है दो दिन जो है परेड्स होती हैं।
2: हाँ जी।
3: और उनके लेक्चर्स होते हैं, है ना, तो वो उसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स बोलते हैं।
2: अच्छा।
3: उसके बाद जो होता है कैंप्स होते हैं।
2: जी।
3: कैंप्स का एनसीसी में बहुत महत्व
2: सर।
3: निसंदेह मैं भी एनसीसी में ड्रॉपर रहा हूँ और आप भी एनसीसी स्टूडेंट रही हैं, तो हम दोनों समझते हैं कि कैंप्स की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब इट हैज गॉट अ स्पेशल प्लेस, और जितना आपको वहाँ सीखने मिलता है उतना शायद कहीं नहीं मिलता। तो इनके जो कैंप्स होते हैं उसमें एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जो कि साल में एक बार जो हेड होता है, एंड उसमें जो सेम लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, टीम स्पिरिट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ड्रिल्स होती हैं, फिजिकल फिटनेस, वेपन ट्रेनिंग एंड इवन सोशल एक्टिविटीज। आपको याद होगा
2: हम
3: लोग सोशल एक्टिविटीज करते थे। मुझे कैंप्स की एक बात बहुत अच्छी लगी थी जब मैं भी था तब भी, कि ये कैंप्स में सबसे बड़ी मदद जो मिलती है जो हमारा सोशल डिफरेंस होता है, सोशल इनइक्वालिटी जो हो रहती है कि आप कहाँ से आए हो, किस घर से हो, आप कितने अमीर हो, क्या है, मतलब वो सब खत्म हो जाता है।
2: सब खत्म हो जाता है सर, सब एक हो जाते हैं,
3: सब एक हो जाते हैं, और आप सबके साथ मिलके रहना सीखते हैं।
2: हाँ जी बिल्कुल सर।
3: आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं केयरिंग की, शेयरिंग की, डिसिप्लिन की, क्वालिटी की, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। मुझे अभी भी मतलब याद है कि जो मेरा एनसीसी का पहला कैंप था उसमें मतलब ये सब चीजें जब देखने को मिली थी, आप समाज के बहुत सारे अलग अलग तबके के लोगों से मिलते हैं। गांव के बच्चे वहां पे आते थे, तो किसी के फादर किसान थे जो, और मुझे उनके बारे में इतनी जानकारी कभी नहीं हुई थी जितनी कि उस कैंप में जो 10 से 12 दिन का जो हमने कैंप किया था ट्रेनिंग कैंप, उस दौरान हुई, और उस समय जो दोस्ती भी जो होती है वो बहुत ही अच्छी मतलब वो रही। इसी तरह से ये जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप होते हैं ये ग्रुप और डायरेक्टरेट लेवल पे होते हैं स्टेट में। फिर उसके बाद दूसरे कैंप्स होते हैं जैसे सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स होते हैं।
2: अच्छा।
3: जो कि डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेवल पे प्लान किए जाते हैं। इसमें लीडरशिप कैंप्स होते हैं, ट्रैकिंग्स होती हैं, रॉक क्लाइंबिंग्स वाले कैंप्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं, इवन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें की जो सेलेक्टेड कैडेट्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ मेजर मेजर अपॉर्चुनिटी व्हिच दे गेट टू इंटरेक्ट विद द फॉरेन कंट्री स्टूडेंट्स, वो रहता है। लीडरशिप कैंप्स रहते हैं, देन एक SSB ट्रेनिंग कैंप रहता है।
2: अच्छा।
3: यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूंगा SSB ट्रेनिंग कैंप का।
2: हाँ जी बिल्कुल सर।
3: ये जो कैंप होता है इसमें आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कैसे फेस करते हैं,
2: अच्छा,
3: उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे रहता है, उसके बारे में पूरा आपको बताया जाता है। और आई थिंक ये ट्रेनिंग कैंप जो थे, फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप 1986 में ऑर्गेनाइज हुआ था।
2: अच्छा।
3: इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका हिस्सा था।
2: क्या बात है सर।
3: और मैं आज भी एनसीसी को धन्यवाद देता हूँ कि उस ट्रेनिंग कैंप के कारण ही जो है, उसके बाद मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया था, आर्म फोर्सेस के लिए, एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था।
2: क्या बात है
3: जी। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू एनसीसी
2: सर,
3: दैट हैड सेंड मी अक्रॉस फॉर दिस ट्रेनिंग कैंप, एसएसबी ट्रेनिंग कैंप। इट वाज इन ओटीएस कामटी में हुआ था। इट वाज अ वंडरफुल थिंग एंड आई बिलीव टिल डेट इट इज कंटिन्यूइंग। तो ऐसे और भी मतलब बहुत सारे स्पेसिफिक सर्विस ओरिएंटेड कैंप्स भी होते हैं जो अलग अलग आर्मी नेवी एयरफोर्स भी कराती है। एंड सबसे जो बड़ा कैंप होता है उसको रिपब्लिक डे कैंप बोलते हैं,
2: आरडीसी।
3: मतलब उसका नाम सुनते ही हर एनसीसी के कैडेट के मतलब जो है उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि आरडी का करना है।
2: जी बिल्कुल सर।
3: 1 जनवरी से 29 जनवरी को तक जो है हर साल ये होता है। एंड इट इज लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईयर।
2: बिल्कुल सर।
3: और उसमें सिलेक्शन कितना टफ होता है, आपको कितना प्रूव करना पड़ता है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कंसिडर्ड एट नेशनल लेवल इज कि इट इज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट। और जो कल्मिनेशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब
2: करते हैं। जी बिल्कुल सर।
3: एंड उसमें जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बैनर दिया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग फॉर अ स्टेट टू गेट। ड्रिल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना मतलब बहुत बड़ा होता है। और कितने सारे कॉम्पिटिशन होते हैं जब हमने वहाँ पे देखे हैं, तो इसमें ओनली सिलेक्टेड कैडेट्स ओनली,
2: पूरे राष्ट्र से सेलेक्ट होके आते हैं सर।
3: बिल्कुल, पूरे के पूरे स्टेट्स के जो है बच्चे वहाँ पे मिलते हैं। और क्या माहौल होता है, कितना मतलब सीखने को मिलता है। इसमें एक और एक एम अचीव होता है हमारा कि हम जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करते हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए।
2: जी बिल्कुल।
3: एनसीसी का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि आप जो है बच्चों को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कर सके। और इस मकसद में ये जो कैंप्स है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: इसके अलावा एक और बहुत अच्छा कैंप एनसीसी कराती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें कि अगेन जो नेशनल इंटीग्रेशन कल्चर एंड कम्युनल हार्मोनी के बारे में नेशनल लेवल पे होता है। अलग अलग स्टेट से जो है कैडेट्स आते हैं, मिलते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स मतलब जो है ऑर्गेनाइज करे जाते हैं एनसीसी की तरफ से। रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, मिलिट्री अटैचमेंट्स होते हैं जो कि हमारे जैसे इंडियन आर्मी के बटालियंस के साथ होते हैं, ताकि उनको एक मौका मिलता है कि बटालियन में कैसी फंक्शनिंग होती है, सोल्जर्स कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे रहते हैं। इवन ओटीए आईएमए वगैरह में भी उनको जो है मौका दिया जाता है।
2: तो सर आपने तो ये जो कैंप की बात की, इसके साथ एक प्रश्न मेरे मन में ये भी आता है कि जब कोई भी बच्चा एनसीसी ज्वाइन करता है तो क्या उन्हें कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं या कोई स्कॉलरशिप भी होती है क्या?
3: बिल्कुल होती है
2: जी।
3: अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेनिंग की और ये सब तो है ही। इसके अलावा सबसे बड़ा जो उनको इंसेंटिव मिलता है जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिलता है, एंड प्राइमरली इन आर्म फोर्सेस।
2: जी।
3: अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं सीनियर डिवीजन के, आर्म फोर्सेस में अगर आप अफसर बनने के लिए जाते हैं, जैसे अगर आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम जो होता है तो उसका रिटन एग्जाम आपका वेव ऑफ हो जाता है।
2: अच्छा।
3: आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं।
2: हाँ, यानी आपको लिखित परीक्षा पास करने की आवश्यकता
3: नहीं होती। ये बहुत बड़ा जो है इंसेंटिव है। मैं नहीं समझता इससे बड़ा कोई इंसेंटिव हो सकता है।
2: बिल्कुल सर।
3: एंड बच्चे जो रिक्रूटमेंट पे जाते हैं तो उनको वहाँ पे 5-10% बोनस मार्क्स मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका रिक्रूटमेंट है, कौन से डायरेक्टर करा रही है, इन्फेंट्री है, मतलब अलग अलग वो रहता है। तो उसके हिसाब से 5-10% बोनस मार्क्स देते हैं। देन अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे, वो लोग बोनस मार्क्स देते हैं, जो है प्रेफरेंस देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं, पुलिस फोर्सेस में अप्लाई करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इवन रिजर्वेशन फॉर वुमेन आल्सो देयर, ठीक है, महिलाओं के लिए भी जो है सर्विसेज में रिजर्वेशन होता है। जी। और ये जो बच्चे होते हैं जो एनसीसी क्वालिफाइड होते हैं, अगर ये आगे चल के एनसीसी में ही किसी अपॉइंटमेंट में काम करना चाहते हैं, लाइक वो एएनओ बनना चाहते हैं या परमानेंट स्टाफ में जो विमेन आना चाहते हैं, तो उनको जो है प्रेफरेंस मिलता है। एंड एक इनकी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी होती है।
2: अच्छा।
3: अगर किसी कैडेट को किसी तरह की इंजरी हो जाती है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई कैटल इंजरी होती है तो भी को जो है असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है। और बहुत सारे स्टेट लेवल पे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं एनसीसी के, उनको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। ओवरऑल इंसेंटिव्स तो बहुत ज्यादा हैं इसमें, हम नटशेल में बता रहे हैं। और ये टाइम टू टाइम इनके बारे में और आते रहते हैं।
2: जी सर, हम कहीं भी अप्लाई करते हैं और यदि हमारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जो इंटरव्यूअर है उसका देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इंटरव्यूअर का देखने का नजरिया बदल जाता है। आपकी खुद के एक कॉन्फिडेंस में फर्क आता है,
2: आपको
3: बिल्कुल पर्सनैलिटी फर्क आता है, आप कैसे अंदर जाते हैं, वॉक करते हैं, वो बहुत मायने रखता है और बहुत फर्क आता है। और पता नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब हम एनसीसी में ओटीएस कमिटी में से, जैसे मैंने बताया एडवांस लीडरशिप कोर्स कर रहे थे, तो हम तीन दोस्त बने थे, तीन लोग, एक उसमें से नॉर्थ के थे, एक साउथ के और एक मैं सेंट्रल भोपाल से था। एंड आज तक हम तीनों दोस्त हैं।
2: वो समय ही सर ऐसा रहता है, कैंप का समय तो कभी भूला नहीं जा सकता,
3: मतलब आज तक हमारी दोस्ती बरकरार है। और अभी अभी रिसेंटली ही, मतलब मेरे, हम तीनों से एक जो दोस्त है उसके बेटे की शादी थी, तो हम सब वहाँ फिर से एकत्रित हुए थे। और आज भी जब मिले थे तब भी हम एनसीसी को याद कर रहे थे, वो कैंप को याद कर रहे थे, एक दूसरे से वही बात हो रही थी। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ व्हिच आई हैड स्पेंड इन एनसीसी एज अ कैडेट। एंड आई से कि दिस इज वन organization which is doing an extremely wonderful job in training, in orienting, in disciplining the young youth.
2: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि एनसीसी युवाओं का एक ऐसा संगठन है जो एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना जगाकर बड़ा ही मौलिक बदलाव लेकर आता है। कठोर प्रशिक्षण विद्यार्थी को टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क और साथ ही निर्णय लेने की कुशलता सिखाता है, जो आगे उसके जीवन के हर क्षेत्र में उसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। नियमित व्यायाम, खेल और ड्रिल उनमें शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं, जबकि तरह तरह की सामुदायिक सेवाएं उन्हें समाज और देश के प्रति जिम्मेदार होना सिखाती हैं। श्रोताओं, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की शक्ति उन्हें जीवन की चुनौतियों से निडरता से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने की ताकत देती है। एनसीसी उन्हें एक बेहतर नागरिक और एक सक्षम इंसान बनने में मदद करता है। तो फिर प्रेरित करिए अपने नौनिहालों को और अपने युवाओं को कि वे एनसीसी जरूर ज्वाइन करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आज की कड़ी का यहीं समापन करते हैं। सर, आपने एनसीसी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद पूर्वा जी, धन्यवाद श्रोताओं, जय हिंद।
2: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना रही अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
4: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE, हुगली के तट से समुद्र की शक्ति तक।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। पिछले भाग में हमने जाना था माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की प्रेरक कहानी के बारे में। हमने सुना था कि किस तरह मुंबई के तट पर स्थित इस प्रतिष्ठित शिपयार्ड ने युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के निर्माण के द्वारा भारत की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाइयां दी। माझगांव डॉक की यात्रा से दादू ने रुचि को ये भी समझाया कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल विचारों का नहीं बल्कि उन हाथों से साकार होता है जो राष्ट्र निर्माण में जुटे रहते हैं।
1: आज भी दादू और रुचि मुंबई के समुद्र तट पर एक साथ बैठे हैं। सामने अथाह समुद्र है, लहरों का मधुर संगीत है और क्षितिज पर आगे बढ़ते जहाज हैं। माझगांव डॉक की विशाल क्रेनों और युद्धपोतों की यादें अभी भी उनके मन में ताजा हैं। लेकिन भारत की समुद्री शक्ति की कहानी केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। अरब सागर के इन तटों से बहुत दूर देश के पूर्वी भाग में हुगली तट के किनारे स्थित है देश का एक और ऐतिहासिक संस्थान जिसने लगभग दो शताब्दियों की यात्रा तय की है।
0: एक ऐसा संस्थान जिसने कभी लकड़ी की साधारण नौकाओं की मरम्मत से अपनी शुरुआत की थी और आज अत्याधुनिक युद्धपोतों, गश्तीपोतों और अनेक उन्नत समुद्री प्लेटफॉर्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये कहानी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE की। तो आइए समुद्र की इन लहरों के साथ हम भी निकल पड़ते हैं एक नई यात्रा पर मुंबई के तट से हुगली नदी के किनारों तक और वहां से भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति की एक और प्रेरक गाथा की ओर।
1: दादू, अगर हम इस समुद्री मार्ग का पीछा करें तो हमें देश के और भी महत्वपूर्ण बंदरगाह और शिपयार्ड मिलेंगे।
0: हाँ बच्चे, बिल्कुल मिलेंगे।
1: अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा शिपयार्ड है जिसने कभी लकड़ी की नावों की मरम्मत से अपने सफर की शुरुआत की थी और आज अत्याधुनिक युद्धपोत बना रहा है, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे?
0: विश्वास क्यों नहीं करूंगा बिटिया, क्योंकि मैं उस शिपयार्ड के बारे में जानता हूँ।
1: सच में? तो फिर बताइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ।
0: गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE शिपयार्ड की।
1: सही पकड़ा दादाजी। चलिए तो आज आपसे इसके बारे में ही सुनती हूँ, बताइए ना।
0: ठीक है बेटा, सुनो। आज जिस संस्थान की हम बात करने वाले हैं उसकी कहानी लगभग 150 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। वर्ष 1884 में जब कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे एक छोटे से शिपयार्ड की नींव रखी गई थी, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में यही संस्थान भारत की समुद्री शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाएगा।
1: दादू, 150 वर्षों से भी अधिक पुरानी?
0: हाँ बेटा, उस समय वहाँ मुख्य रूप से नौकाओं और छोटे जहाजों की मरम्मत और निर्माण का काम होता था बस। लेकिन समय के साथ साथ ये शिपयार्ड बढ़ता गया, नई नई तकनीकें आती गईं और धीरे धीरे आधुनिक जहाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता गया।
1: मतलब शुरुआत भले ही छोटी रही हो दादाजी, लेकिन समय के साथ इसकी क्षमताएं भी बढ़ती गई होंगी।
0: हाँ, हर बड़े संस्थान की तरह GRSE ने धीरे धीरे अनुभव, तकनीक और संसाधन जुटाए। यही कारण है कि आगे चलकर आज ये भारत का प्रमुख शिपयार्डों में शामिल हो गया।
1: दादू, मैं कुछ सोच रही हूँ।
0: क्या सोच रही हो बेटा?
1: यही कि उस समय ना तो मोबाइल थे, ना कंप्यूटर थे और ना आज जैसी आधुनिक मशीनें थी, फिर इतने बड़े जहाजों का निर्माण भला कैसे होता होगा?
0: सब होता था बेटा, कुशल कारीगरों, अभियंताओं की समझ और वर्षों के अनुभव के आधार पर सब कुछ होता था। तकनीक आज जितनी उन्नत नहीं थी लेकिन लोगों का कौशल और समर्पण अद्भुत था।
1: यानी मशीनें कम थीं, लेकिन मेहनत और हुनर ज्यादा था।
0: बिल्कुल, और यही मेहनत आगे चलकर उस छोटे से शिपयार्ड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण जहाज निर्माण संस्थानों में बदलने वाली थी।
1: वाह, यानी GRSE की कहानी केवल जहाजों की नहीं बल्कि लगातार सीखने और आगे बढ़ने की कहानी भी है दादाजी।
0: सही कहा बेटा। और आज जब कोई भारतीय नौसैनिक समुद्र में गश्त करता है या कोई युद्धपोत देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में तैनात होता है, तब उसके पीछे हजारों अभियंताओं, डिजाइनरों और टेक्नीशियंस और श्रमिकों की मेहनत छिपी होती है। उन्हीं संस्थानों में से एक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी GRSE।
1: दादू, क्या हर युद्धपोत समुद्र के किनारे ही बनाया जाता है?
0: नहीं बिटिया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE हुगली नदी के किनारे स्थित है। सोचो, एक विशाल युद्धपोत नदी के तट पर आकार लेता है और फिर जलावतरण के बाद समुद्र की ओर अपनी पहली यात्रा शुरू करता है।
1: मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा अपने घर से निकलकर दुनिया देखने जाता है।
0: हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही। जलावतरण का दिन शिपयार्ड के अभियंताओं और श्रमिकों के लिए बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा माता पिता के लिए अपने बच्चे की पहली बड़ी सफलता का क्षण।
1: दादू, जब कोई युद्धपोत पहली बार पानी में उतरता है तब उसे देखकर कैसा महसूस होता होगा ना?
0: बहुत गर्व होता है बिटिया। वर्षों की मेहनत, हजारों लोगों का परिश्रम और अनगिनत सपने उस क्षण साकार होते दिखाई देते हैं। और मजे की बात यह है कि तब तक उस युद्धपोत को उसका नाम भी मिल चुका होता है।
1: अच्छा, तभी मेरे मन में ये सवाल आया कि आखिर इन युद्धपोतों के नाम इतने खास क्यों होते हैं? जैसे आपने बताया था गोदावरी, कोलकाता, शिवालिक, सतपुड़ा, खुकरी।
0: युद्धपोत का नाम केवल उसकी पहचान नहीं होता बेटा, बल्कि वो उसकी विरासत, गौरव और जिम्मेदारी का प्रतीक भी होता है।
1: वो भला कैसे?
0: देखो बेटा, जब किसी युद्धपोत का नाम शिवालिक रखा जाता है तो वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की याद दिलाता है। कोलकाता जैसा नाम भारत के एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नगर का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं खुकरी नाम साहस, वीरता और बलिदान की भावना को सामने लाता है।
1: वाह दादू, यानी हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है।
0: बिल्कुल, यही कारण है कि भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय बहुत सोच समझकर युद्धपोतों के नाम निर्धारित करते हैं। कई नाम नदियों, पर्वतों, ऐतिहासिक स्थलों, वीर योद्धाओं या भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रतीकों पर भी रखे जाते हैं।
1: मतलब नाम के पीछे भी एक संदेश होता है।
0: हाँ बेटा, जब कोई नौसैनिक INS शिवालिक, INS कोलकाता या किसी अन्य युद्धपोत पर सेवा करता है तो उसे केवल एक जहाज का नाम नहीं सुनाई देता बल्कि अपने देश की विरासत, परंपरा और कर्तव्य का स्मरण भी होता है।
1: दादू, तो क्या GRSE में बने युद्धपोत भी ऐसी ही कहानियां अपने साथ लेकर समुद्र में उतरते हैं?
0: हाँ बेटा, GRSE में बने अनेक युद्धपोत और गश्तीपोत केवल लोहे और मशीनों का ढांचा नहीं होते, वे भारत की संस्कृति, तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की कहानी लेकर समुद्र की लहरों पर आगे बढ़ते जाते हैं।
1: वाह दादाजी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि हर युद्धपोत के नाम के पीछे भी एक पूरा का पूरा इतिहास छिपा होता है।
0: और यही इतिहास उसे केवल एक जहाज नहीं बल्कि राष्ट्र की पहचान का चलता फिरता प्रतीक बना देता है।
1: दादू, जलावतरण का दिन शिपयार्ड के हर अभियंता, तकनीशियन और कर्मचारी के लिए गर्व और भावनाओं से भरा होता होगा। इतने वर्षों की मेहनत पहली बार अपने आंखों के सामने साकार जो होती दिखाई देती है उन्हें।
0: हाँ बेटा, जिस जहाज को वर्षों तक शिपयार्ड के भीतर बनाया गया वो पहली बार समुद्र से अपना परिचय करता है, ये कभी ना भूलने वाले पल होते हैं।
1: दादू, मेरे मन में एक सवाल बचपन से है।
0: पूछो बच्चे।
1: लोहे की कील पानी में डालो तो डूब जाती है ना?
0: हाँ।
1: लेकिन लोहे का विशाल जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा भला क्यों होता है?
0: ये विज्ञान का बहुत रोचक सिद्धांत है जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं।
1: दादू, ये सिद्धांत किस तरह से काम करता है और उसकी खोज कैसे हुई थी?
0: ये कहानी लगभग 2000 साल पुरानी है बेटा। यूनान में एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। एक दिन वे नहाने के लिए टब में बैठे, जैसे ही वे पानी में उतरे कुछ पानी बाहर निकल गया। उसी पल उनके मन में विचार आया कि कोई वस्तु जितना पानी हटाती है उतना ही उछाल बल
2: उसे ऊपर की ओर मिलता है। कहते हैं कि वे इतना खुशी में यूरेका यूरेका कहते हुए बाहर दौड़ पड़े।
1: यानी आज के आधुनिक युद्धपोत भी उसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर तैरते हैं।
2: हाँ बेटा, विज्ञान के सिद्धांत समय के साथ पुराने नहीं होते। तकनीक बदल सकती है, जहाजों का आकार बदल सकता है, लेकिन विज्ञान के मूल सिद्धांत वही रहते हैं।
1: इसका मतलब जहाज निर्माण में विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है दादाजी।
2: बेशक, अभियंता जहाज को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उसका भार और उसका आकार पानी में संतुलन बनाए रखे। इसी कारण हजारों टन वजन वाला विशाल युद्धपोत भी पानी की सतह पर सुरक्षित रूप से तैर सकता है।
1: वाह दादाजी, यानी देखने में भले ही वह लोहे का विशाल पहाड़ लगे, लेकिन उसके पीछे विज्ञान का कमाल छिपा होता है।
2: हाँ बेटा, जब कोई जहाज पानी में उतरता है तो वो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करता है। यही उत्प्लावन बल उसे डूबने से बचाता है और तैराए रखता है।
1: तो जहाज केवल लोहे से नहीं बल्कि विज्ञान और गणना से भी बनता है दादाजी।
2: एकदम सही बेटा, यही कारण है कि जहाज निर्माण में गणित, भौतिकी, अभियांत्रिकी और वर्षों का अनुभव सब कुछ मिलकर काम करते हैं।
1: अब समझ में आया कि समुद्र में तैरता हुआ हर युद्धपोत वास्तव में विज्ञान की एक चलती फिरती प्रयोगशाला जैसा होता है दादाजी।
2: और शायद इसी कारण जहाज निर्माण को विज्ञान और कौशल का अद्भुत संगम कहा जाता है।
1: दादू, GRSE तो हुगली नदी के किनारे पर है, फिर वहाँ बने युद्धपोत समुद्र तक कैसे पहुँचते?
2: यही तो इसकी सबसे रोचक बात है। जब जहाज का जलावतरण होता है तब वो पहले हुगली नदी में उतरता है।
1: और उसके बाद?
2: उसके बाद विशेषज्ञों की निगरानी में वो धीरे धीरे नदी के रास्ते बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता है।
1: ये ही उसकी पहली यात्रा होती है, मतलब जो नदी से शुरू होती है।
2: हाँ, कल्पना करो, सैकड़ों लोगों की मेहनत से बना युद्धपोत पहली बार जब पानी में चलता है तो वो क्षण शिपयार्ड के हर कर्मचारी के लिए कितना भावुक और गर्व से भरा हुआ होता होगा।
1: और दादू, जब जहाज बन जाता है तो क्या नौसेना उसे तुरंत अपने बेड़े में शामिल कर लेती है?
2: नहीं नहीं बेटा, उससे पहले कई कठिन परीक्षण होते हैं।
1: कठिन परीक्षण? कैसे परीक्षण दादू?
2: देखो बेटा, पहले हार्बर ट्रायल होते हैं। इनमें जहाज की मशीनें, बिजली व्यवस्था, रडार, संचार प्रणाली और अन्य उपकरणों की जांच की जाती है।
1: और उसके बाद?
2: फिर समुद्री परीक्षण यानी सी ट्रायल्स होते हैं।
1: सी ट्रायल्स, ये क्या होते हैं?
2: जहाज को खुले समुद्र में ले जाया जाता है, वहाँ उसकी गति जांची जाती है, मोड़ने की क्षमता देखी जाती है, ब्रेकिंग सिस्टम और इंजन की कार्य क्षमता परखी जाती है, रडार और हथियार प्रणालियों का परीक्षण किया जाता है।
1: मतलब जैसे किसी नए विमान की टेस्ट फ्लाइट होती है दादू।
2: बिल्कुल, युद्धपोत के लिए सी ट्रायल्स बिल्कुल वैसा ही होता है।
1: अच्छा ठीक है दादू, और यदि सभी परीक्षण सफल हो जाएं फिर?
2: यदि सभी परीक्षण सफल हो जाएं, उसके बाद भारतीय नौसेना जहाज को औपचारिक रूप से स्वीकार करती है। इसके बाद उसे कमीशन किया जाता है, वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाता है।
1: मतलब तब वह केवल एक जहाज नहीं रहता बल्कि देश की सुरक्षा का प्रहरी बन जाता है।
2: हाँ बेटा, उस दिन से उसकी पहचान केवल लोहे की किसी मशीन की नहीं रह जाती बल्कि राष्ट्र की रक्षा करने वाले योद्धा की तरह हो जाती है।
1: दादू, आपने बताया था कि युद्धपोत को नौसेना में शामिल होने से पहले कई सारे परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई जहाज परीक्षण में असफल हो जाए?
2: हाँ बेटा, यदि किसी प्रणाली में कमी पाई जाती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। जब तक नौसेना पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक जहाज को अंतिम स्वीकृति नहीं मिलती।
1: यानी युद्धपोत भी किसी विद्यार्थी की तरह परीक्षा देता है दादाजी।
2: बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि यहाँ परीक्षा में गणित और विज्ञान के प्रश्न नहीं होते बल्कि इंजन, रडार, हथियार और समुद्री क्षमता की जांच होती है।
1: दादू, भारत में तो और भी शिपयार्ड है, फिर GRSE, इसकी विशेषता क्या है?
2: GRSE केवल जहाज नहीं बनाता बल्कि उसके पास अपना इंजीनियरिंग और इंजन निर्माण प्रभाग भी है। दुनिया के बहुत कम शिपयार्डों के पास ये सुविधा होती है बेटा।
1: मतलब यहाँ जहाज के साथ साथ उसके कई महत्वपूर्ण उपकरण भी बनाए जाते हैं।
2: हाँ, यही कारण है कि GRSE को एक बहुआयामी इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता है।
1: दादू, मुझे लगा था कि GRSE केवल बड़ी युद्धपोत ही बनाता है।
2: नहीं नहीं बेटा, यही तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये छोटे हार्बर क्राफ्ट गश्ती पोत, तटरक्षक जहाज, सर्वेक्षण पोत, उभयचर पोत और आधुनिक युद्ध पोत तक बनाता है।
1: दादू, क्या एक ही संस्थान इतने प्रकार के जहाज और उपकरण बना सकता है?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस इसके लिए अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग और तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है।
1: दादू, क्या युद्धपोत बनाते समय इंजीनियर केवल मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं?
2: नहीं बेटा, कंप्यूटर और मशीनें मदद करती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय और जिम्मेदारी मनुष्य की होती है। कई बार अनुभवी इंजीनियर वर्षों के अनुभव के आधार पर ऐसी छोटी छोटी बातें पहचान लेते हैं जिन्हें मशीनें तुरंत नहीं समझ पाती।
1: यानी तकनीकी और मानवीय अनुभव दोनों जरूरी है।
2: हाँ, यही किसी महान संस्थान की पहचान होती है बेटा।
1: अच्छा दादू, अब ये बताइए, क्या हुगली नदी का GRSE की सफलता में कोई योगदान है?
2: बहुत बड़ा योगदान है बेटा, बहुत बड़ा। हुगली नदी सदियों से व्यापार और जहाज रानी का महत्वपूर्ण मार्ग रही है। इसी नदी के किनारे GRSE का विकास हुआ। जब कोई नया जहाज बनकर तैयार होता है तो वो सबसे पहले हुगली की लहरों को महसूस करता है।
1: वाह दादू, जैसे कोई बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपनी माँ की गोद को महसूस करता है।
2: बहुत सुंदर तुलना की बेटा तुमने।
1: दादू, यदि कोई विद्यार्थी GRSE में काम करना चाहे तो उसके लिए कौन कौन से अवसर होते हैं?
2: अनेक अवसर होते हैं बेटा। नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उत्पादन इंजीनियरिंग और वेल्डिंग तकनीक जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हो।
1: और क्या ITI और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए भी अवसर होते हैं दादू?
2: हाँ हाँ, बिल्कुल होते हैं। कुशल टेक्नीशियंस किसी भी शिपयार्ड की रीढ़ होते हैं। वेल्डर, फिटर, मशीन ऑपरेटर, पाइप फिटर, इलेक्ट्रिशियंस और ड्राफ्ट्समैन जैसे विशेषज्ञों की हमेशा आवश्यकता रहती है।
1: दादू, ये तो सच है कि कोई भी एक महान संस्था एक दिन में नहीं बनती।
2: सही कहा बिटिया, GRSE ने 1884 में एक छोटी कार्यशाला के रूप में शुरुआत की थी। आज ये विश्व स्तरीय युद्धपोत बनाने वाला संस्थान है। ये सफलता निरंतर सीखने, मेहनत करने और समय के साथ स्वयं को बदलने का परिणाम है।
1: दादू, मतलब हम भी यदि निरंतर सीखते रहें तो बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।
2: क्यों नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, और यही भारत की प्रगति का मंत्र है।
1: दादू, समुद्र और नदियों के किनारे स्थित शिपयार्डों को क्या कभी प्राकृतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा?
2: हाँ हाँ बेटा, और GRSE की कहानी में भी ऐसी चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण स्थान।
1: तो बताइए ना, ये किस तरह की चुनौतियाँ होती है?
2: देखो बेटा, GRSE हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली केवल एक नदी नहीं बल्कि पूर्वी भारत के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है, लेकिन इसके साथ कई प्राकृतिक चुनौतियां भी जुड़ती हैं।
1: कैसे?
2: सबसे पहले तो मानसून। बरसात के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। कई बार तेज धारा और बदलते जल स्तर के कारण जहाजों की आवाजाही और निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ जाती है।
1: यानी शिपयार्ड को मौसम का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है दादाजी।
2: हाँ, और केवल बारिश ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात भी एक बहुत बड़ी चुनौती होते हैं।
1: चक्रवात? दादू, तब तो स्थिति और भी कठिन हो जाती होगी।
2: हाँ हाँ बेटा, जब तेज हवाएं चलती हैं, समुद्र उग्र हो जाता है, तब बंदरगाहों और शिपयार्डों को विशेष सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ते हैं। निर्माणाधीन जहाजों, मशीनों

0: सुचारू बनाए रखने के लिए समय समय पर ड्रेजिंग यानी नदी तल की सफाई का काम भी जरूरी होता है, जो बेटा बहुत जटिल काम है।
1: यानी जहाज निर्माण के साथ साथ जल मार्ग को भी उपयुक्त बनाए रखना पड़ता है।
0: बिल्कुल, यही कारण है कि शिपयार्ड का काम केवल कार्यशाला के भीतर ही सीमित नहीं होता, उसके आसपास का पूरा समुद्री और नदीय वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है।
1: दादू, ये सुनकर तो लगता है कि GRSE के इंजीनियर केवल मशीनों से ही नहीं बल्कि प्रकृति की चुनौतियों से भी जूझते होंगे।
0: बिल्कुल ठीक समझा तुमने। एक और आधुनिक तकनीक, विशाल क्रेने और उन्नत डिजाइन होते हैं, तो दूसरी ओर नदी की धारा, मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियाँ होती हैं।
1: फिर भी जहाज समय पर तैयार हो जाते हैं।
0: यही तो उनकी मेहनत और कुशलता का प्रमाण है बेटा। किसी भी बड़े शिपयार्ड की सफलता केवल तकनीक पर नहीं बल्कि चुनौतियों के बीच निरंतर कार्य करते रहने की क्षमता पर भी निर्भर करती है।
1: दादू, अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि GRSE की कहानी केवल जहाजों की कहानी नहीं है बल्कि संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास की कहानी भी है।
0: बिल्कुल बेटा, और शायद यही कारण है कि लगभग 150 वर्षों की यात्रा के बाद भी GRSE भारत की समुद्री शक्ति के महत्वपूर्ण स्तंभों में गिना जाता है।
1: दादू, भारत में और भी तो शिपयार्ड्स हैं, फिर GRSE क्यों खास है?
0: जैसा कि मैंने पहले भी कहा था बेटा, GRSE केवल जहाज नहीं बनाता बल्कि उसके पास अपना इंजीनियरिंग और इंजन निर्माण प्रभाग भी है। दुनिया के बहुत कम शिपयार्डों के पास ये सुविधा है बेटा।
1: हाँ, यहाँ जहाज के साथ साथ उसके कई महत्वपूर्ण उपकरण भी बनाए जाते हैं।
0: यही कारण है कि GRSE को एक बहुआयामी इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता है।
1: दादू, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी कभी गलतियाँ भी तो होती होंगी ना?
0: बेटा, मनुष्य जहाँ होगा वहाँ गलती की संभावना भी होगी, लेकिन महान संस्थान वही होते हैं जो गलती से सीखते हैं। एक बार एक इंजीनियर ने देखा कि जहाज के एक हिस्से की माप डिजाइन से कुछ मिलीमीटर अलग है। किसी साधारण व्यक्ति को ये अंतर बहुत छोटा लगता, लेकिन युद्धपोत निर्माण में मिलीमीटर भी महत्वपूर्ण होते हैं।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ दादू?
0: फिर पूरा हिस्सा दोबारा जांचा गया, कई घंटों की मेहनत लगी, लेकिन अंत में समस्या का समाधान कर लिया गया। यही कारण है कि युद्धपोत निर्माण में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
1: दादू, अगर युद्धपोत बोल पाते तो क्या कहते?
0: शायद वो कहते कि मैं हजारों भारतीय हाथों की मेहनत से बना हूँ, मेरे भीतर इंजीनियरों की बुद्धि है, मेरे भीतर टेक्नीशियंस का कौशल है और मेरा उद्देश्य अपने देश की रक्षा करना है।
1: वाह दादू, ये तो बहुत सुंदर बात बोली आपने। अच्छा दादू, क्या GRSE केवल नौसेना के लिए ही जहाज बनाता है?
0: नहीं नहीं बेटा, GRSE ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण जहाजों का निर्माण किया है।
1: और तटरक्षक बल का क्या काम है?
0: देखो बेटा, भारतीय नौसेना का मुख्य दायित्व देश की समुद्री सुरक्षा और रक्षा से जुड़ा हुआ होता है, वहीं तटरक्षक बल हमारे समुद्री तटों और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी तथा सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करता है।
1: मतलब ये समुद्र में 24 घंटे सतर्क रहता है?
0: बिल्कुल, तटरक्षक बल समुद्र में होने वाली तस्करी, अवैध गतिविधियों पर नजर रखता है। यदि किसी नाव या जहाज को सहायता की आवश्यकता हो तो खोज और बचाव अभियान भी चलाता है।
1: यानी समुद्र में किसी संकट की स्थिति में सबसे पहले मदद के लिए वही पहुंच सकता है?
0: कई बार ऐसा ही होता है बेटा। इसके अलावा चक्रवात, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय भी तटरक्षक बल राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: और प्रदूषण नियंत्रण की बात भी आपने कही थी।
0: हाँ हाँ बेटा, यदि समुद्र में तेल का रिसाव हो जाए या किसी अन्य कारण से प्रदूषण फैलने का खतरा बढ़ जाए तो उसे नियंत्रित करने में भी तटरक्षक बल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: यानी तटरक्षक बल केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मानव सेवा का कार्य भी करता है दादू।
0: हाँ बेटा, और इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आधुनिक, तेज और विश्वसनीय जहाजों की आवश्यकता होती है। GRSE द्वारा निर्मित अनेक जहाज तटरक्षक बल को यही क्षमता प्रदान करते हैं।
1: सो तो है दादू, अब समझ में आया कि जहाज निर्माण केवल युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और सहायता से भी जुड़ा हुआ होता है।
0: एकदम करेक्ट, यही कारण है कि जीआरएसी जैसे संस्थान देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदार माने जाते हैं।
1: दादू, क्या ऐसे जहाज लोगों की जान भी बचाते हैं?
0: हाँ बेटा, कई बार समुद्र में मछुआरों की नावें तूफान में फंस जाती हैं। कभी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में तटरक्षक जहाज सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। कल्पना करो, समुद्र में तेज तूफान है, लहरें कई मीटर ऊंची हैं, और उसी समय एक बचाव पोत लोगों को सुरक्षित निकाल रहा है। ये भी राष्ट्र सेवा का एक महत्वपूर्ण रूप है बेटा।
1: अच्छा दादू, ये बताइए कि भविष्य के जहाज कैसे होंगे?
0: बहुत ही रोचक। उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ेगा। कुछ प्रणालियां स्वचालित होंगी, ईंधन की बचत होगी, रडार और सेंसर अधिक शक्तिशाली होंगे और जहाज पहले से भी अधिक सुरक्षित होंगे।
1: दादू, यानी आज के विद्यार्थी ही कल की तकनीक बनाएंगे?
0: हाँ बिल्कुल बेटा। अच्छा बिटिया, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ।
1: मुझसे?
0: हाँ हाँ
1: पूछिए।
0: यदि तुम्हें जीआरएसी में काम करने का अवसर मिले तो तुम क्या बनना चाहोगी?
1: शायद मैं डिजाइन इंजीनियर बनूं। मैं एक ऐसा जहाज बनाना चाहूंगी जो तेज भी हो और सुरक्षित भी।
0: वेरी गुड। हर बड़ा आविष्कार किसी विद्यार्थी के सपने से ही शुरू होता है। बिटिया, जीआरएसी की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। 1884 में ये एक छोटी सी कार्यशाला थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही संस्थान आधुनिक युद्धपोत बनाएगा, लेकिन निरंतर सीखने, मेहनत और नवाचार ने इसे नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया।
1: मतलब कोई भी संस्था छोटी शुरुआत से बड़ी बन सकती है दादाजी।
0: हाँ, और यही बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है। आज का विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक हो सकता है। आज का प्रशिक्षु कल का मुख्य अभियंता बन सकता है, और आज का सपना कल राष्ट्र निर्माण का आधार बन सकता है बिटिया।
1: अच्छा दादू, अगर मुझे एक दिन के लिए जीआरएसी में घूमने का मौका मिल जाए तो मैं वहाँ क्या क्या देखूंगी?
0: अरे बिटिया, फिर तो तुम्हारी आंखें आश्चर्य से खुली रह जाएंगी।
1: कैसे?
0: केवल स्टील की साधारण चादरें कैसे इंजीनियरों और टेक्नीशियंस के हाथों में पहुंचकर धीरे धीरे युद्धपोत का रूप लेने लगती है।
1: दादू, जब कोई युद्धपोत नौसेना में शामिल होता है तो लोग उसके कप्तान और नाविकों के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसे बनाने वाले लोगों का क्या?
0: यही तो सबसे रोचक बात है बेटा। युद्धपोत के पीछे हजारों ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम शायद कभी समाचारों में नहीं आए। कोई वेल्डर होता है, कोई इलेक्ट्रीशियंस होता है, कोई डिजाइनर होता है, कोई गुणवत्ता निरीक्षक होता है, लेकिन उन सभी की मेहनत मिलकर देश की सुरक्षा का आधार बनाती है।
1: मतलब ये सभी राष्ट्र निर्माण के नायक हैं दादाजी?
0: हाँ बेटा बिल्कुल है, और अक्सर सबसे बड़े नायक वही होते हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं।
1: अच्छा दादू, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जीआरएसी की कोई ऐसी घटना है जो आपको विशेष रूप से प्रेरित करती हो?
0: हाँ बेटा, जब भारत ने अपने दम पर आधुनिक युद्ध पोतों के डिजाइन और निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए, तब अनेक विशेषज्ञों ने कहा था कि ये काम बहुत कठिन होगा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अनुभव बढ़ा, तकनीक विकसित हुई, और आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो आधुनिक युद्ध पोतों का निर्माण कर सकते हैं।
1: सही कहा दादाजी आपने, यानी आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से असंभव भी संभव हो सकता है।
0: यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है बिटिया।
1: अच्छा दादू, अब ये बताइए कि क्या भविष्य में भारत और भी उन्नत जहाज बनाएगा?
0: निश्चित रूप से बनाएगा बेटा। भविष्य में अधिक स्मार्ट, अधिक सुरक्षित, अधिक शक्तिशाली जहाज बनेंगे। हो सकता है उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का और अधिक उपयोग हो, हो सकता है वे ऊर्जा की कम खपत करें, और हो सकता है कि उनमें से किसी जहाज के निर्माण में आज का कोई विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए,
1: और हो सकता है कि कौन जाने, शायद वो विद्यार्थी मैं ही हूँ दादाजी।
0: अरे क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल। बड़े सपने देखने वालों के लिए ही भविष्य नए रास्ते खोलता है।
1: श्रोताओं, हुगली नदी के तट पर स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड केवल एक शिपयार्ड नहीं है, बल्कि भारतीय प्रतिभा, तकनीकी कौशल और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। एक छोटी कार्यशाला से शुरू हुई इसकी यात्रा आज आधुनिक युद्ध पोतों और समुद्री सुरक्षा की मजबूत नींव बन चुकी है। आइए हम भी इन संस्थानों से प्रेरणा लें और अपने ज्ञान, कौशल तथा परिश्रम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का, और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
0: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए,

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं भारत की महान क्रांति परंपरा से और उन विभूतियों से जिन्होंने अपने पराक्रम से समय की धार को बदल कर रख दिया और हमें ये अवसर प्रदान किया कि आज हम सारे विश्व के सामने सर उठा के जीते हैं।
2: इसी तारतम्य में आज बात करते हैं सरजू प्रसाद सिंह की, जिनका जन्म 21 फरवरी 1840 को हुआ था। श्रोताओं, जबलपुर मध्य प्रदेश के उत्तर में उस समय एक जागीर थी जिसका नाम विजय राघवगढ़ था। विजय राघवगढ़ और मैयर एक ही शासक के अधीन थे। जब जागीर का बंटवारा दो भाइयों में हुआ तो एक को मैयर और दूसरे को विजय राघवगढ़ मिला।
1: विजय राघवगढ़ के जागीरदार की मृत्यु हो जाने पर कंपनी सरकार ने रियासत को प्रतिपालय अधिनियम कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत लेकर वहां कंपनी सरकार का एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया। ये व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि रियासत के उत्तराधिकारी सरजू प्रसाद सिंह की अवस्था उस समय केवल 5 वर्ष की थी
2: और सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बालक सरजू प्रसाद 17 वर्ष के तरुण हो चुके थे। वो क्रांतिकारी स्वभाव के किशोर थे और अंग्रेजों से उन्हें घृणा थी। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने बंदूक और तलवार चलाना अच्छी तरह सीख लिया था और उन्हें घुड़सवारी में भी महारत हासिल थी और उनमें नेतृत्व के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते थे।
1: हम सरजू प्रसाद जी के बारे में और बातें करेंगे, आइए पहले सुनते हैं ये गीत।

0: सरजू प्रसाद सिंह ने आसपास के जागीरदारों को मिलाकर 3,000 प्रशिक्षित सैनिकों की एक सेना खड़ी कर ली थी और विद्रोह के पथ पे उन्होंने जो पहला काम किया वो ये था कि कंपनी सरकार द्वारा नियुक्त तहसीलदार को मारकर रियासत का प्रशासन पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था। और दूसरा जो काम उन्होंने किया वो ये था कि कंपनी सरकार की घुड़सवार सेना पे अधिकार करके सवारों को मार के भगा दिया और उनके स्थान पे अपने घुड़सवार नियुक्त कर दिए।
1: सरजू प्रसाद सिंह की संगठित सेना को खतरा ये था कि मिर्जापुर मार्ग से आकर अंग्रेजी सेना उस पर आक्रमण कर सकती थी। उसने मिर्जापुर सड़क पर अपना अधिकार करके इस खतरे को भी दूर कर दिया। अंग्रेजी सेना के कैप्टन उले के नेतृत्व में 1857 को एक सेना ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह से मुकाबला करने के लिए भेजी गई।
0: उस सेना की सहायता के लिए 4 नवंबर को मेजर सुलिवान के नेतृत्व में एक और सेना भेजी गई। सरजू प्रसाद सिंह की सेना ने उन दोनों अंग्रेजी सेनाओं को छिन्न भिन्न करके उनके हथियार लूट लिए। इस संयुक्त सेना को तहस नहस करने के बाद सरजू प्रसाद सिंह की सेना ने 6 नवंबर को मुरवाड़ा के समीप एक अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया और घायल होकर अंग्रेज सेनापति भाग निकला। इसके आगे क्या हुआ जानेंगे इस गीत के बाद।

0: अपनी इन निरंतर पराजयों से खिन्न होकर अंग्रेजों ने एक विशाल सेना 14 नवंबर को जबलपुर से भेजी। इस सेना के मेजर जॉन किंग के मारे जाने के कारण सेना स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इसके बाद एक और विशाल सेना जबलपुर से ही कैप्टन उले के नेतृत्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजी गई।
1: इस सेना का सामना सरजू प्रसाद के सहयोगी ठाकुर देवी सिंह ने किया और वे पराजित होकर गिरफ्तार हो गए। अंग्रेजों ने अपनी सहायता के लिए रीवा नरेश की सेना बुलवाई। बड़ी मुश्किल से रीवा और कंपनी सरकार की संयुक्त सेना विद्रोहियों का दमन कर सकी। सरजू प्रसाद सिंह को कई वर्षों बाद अंग्रेजी सेना ने गिरफ्तार किया।
0: ठाकुर देवी सिंह को फांसी का दंड दिया गया और सरजू प्रसाद सिंह को आजीवन कारावास, और विद्रोही तरुण सरजू प्रसाद सिंह ने जीवन भर जेल की कोठरियों में सड़ने के स्थान पर जीवन मुक्ति का उपाय अपनाया। एक दिन उन्होंने अपने पेट में कटार मारकर आत्म बलिदान का पथ अपना लिया
1: और इस तरह शहीद हुआ एक और देशभक्त आजादी की बलिवेदी पर। हमारा उनको सादर नमन।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति थी स्वराज संस्थान संचालनालय की। गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जन गर्जी में से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

जिसमें अमृत से मध्य प्रदेश की प्रस्तुति हुई, जिसने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से विदेशी प्रतिनिधियों को रूबरू कराया।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन में।
1: प्लीज वेलकम दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोरियोग्राफ्ड डांस स्पेक्टेकल अमृतस्य मध्य प्रदेश।
2: मध्य प्रदेश ट्रूली द हार्ट ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट इन द जियोग्राफिकल सेंस ऑफ बीइंग इन द सेंटर ऑफ द कंट्री, but because it encompasses and epitomizes the nation's ancient heritage, its cultural traditions, its glorious art and architecture, and many natural wonders. Many dynasties have left their footprints here. Exploring Madhya Pradesh is both a journey into a civilizational origins, as well as its efflorescence in the millenniums that followed. Steeped in mystique, wrapped in grandeur.

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं।
2: तृतीय सर्ग में हमने देखा, एक पुरुष ने राज्य को ठुकरा कर वचन को अपना राजमुकुट बना लिया। कर्ण ने दिखा दिया कि मनुष्य का कद उसके जन्म से नहीं, उसके निर्णय से मापा जाता है। वहां कथा नहीं, चरित्र बोल रहा था। वहां संवाद नहीं, संकल्प गूंज रहा था। वृक्ष फल देकर रिक्त नहीं होता, वह और हरित होता है। सरिता जल देकर सूखती नहीं, वह पुनः मेघों में भरती है। यही आत्मदान का शाश्वत नियम है। जो देता है वही सचमुच पाता है। जो अंतिम मूल्य हंसकर चुका दे वही अमरता का अधिकारी होता है। श्रोताओं, चतुर्थ सर्ग की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दिनकर जी को यूं ही राष्ट्रकवि नहीं कहा गया। उनकी वाणी सोई हुई चेतना को झकझोरती है, मनुष्य को उसके आत्मबल का बोध कराती है।
1: बिल्कुल, रश्मिरथी में मानवीय मूल्यों का ऐसा ही समन्वय है, जहां दर्शन भी है, सिद्धांत भी, इच्छा भी है, संयम भी, छल और द्वेष की छाया भी है, तो प्रेम, दान और तपस्या की उज्जवल आभा भी। ये काव्य केवल घटनाओं का अनुक्रम नहीं, मानव हृदय का महागान है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग एक का काव्य पाठ। प्रेम यज्ञ अति कठिन, बंधुता की अद्भुत अभिमानी। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधेय, बंधुता की अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों, नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता, तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां, जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर, तो और मूल्य क्या देना। करने लगे मोह प्राणों का, तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे ये मूल्य, ना मिलता वो मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। ये ना सत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं?
2: ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देय वास्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए रहें, डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रिजुनाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया। अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवा कर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने तीन गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मनसूर नियति की सह पाया ना ठिठोली, उत्तर में सौ बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना ही पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं।
1: श्रोताओं, अभी जो पंक्तियां हमने सुनी वे केवल कविता नहीं थी, वे एक अग्निकुंड थी। प्रेम यज्ञ अति कठिन से आरंभ होकर यह भाग हमें भीतर तक टटोलता है। कितनी सहजता से कवि पूछते हैं, प्रण लेना आसान है पर क्या हम उसका अंतिम मूल्य चुकाने को तैयार हैं? त्याग की बातें सब करते हैं पर जब सर्वस्व अर्पण की घड़ी आती है तभी सच्चा मनुष्य पहचाना जाता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम सुविधा के युग में हैं, जहां हर चीज हमें तुरंत चाहिए, पर तपस्या का धैर्य नहीं। इस काव्यांश में कवि कहते हैं, व्रत का अंतिम मोल चुकाना ही असली परीक्षा है। और हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे, लोग नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, किंतु मूल्य चुकाने का साहस कम ही दिखता है।
1: और दान, आज दान भी प्रदर्शन बनता जा रहा है, पर यहां दान को जीवन का झरना कहा गया। जैसे वृक्ष फल देकर स्वयं को बचाता है, जैसे सरिता बहकर निर्मल रहती है, यदि हम रोक लें, सहेज लें, केवल अपने लिए जी लें, तो क्या हम सचमुच जीवित रह पाते हैं या भीतर ही भीतर सूखने लगते हैं?
2: यही तो इस भाग की प्रासंगिकता है। आज दुनिया में स्पर्धा है, स्वार्थ है, आगे निकल जाने की होड़ है, किंतु इतिहास उन्हीं का स्मरण करता है जिन्होंने अंतिम मोल हंसकर चुकाया, चाहे वह त्याग हो, सत्य हो या मानवता। ये काव्य हमें याद दिलाता है कि अमरता सुविधा से नहीं, साहस से मिलती है। ये केवल कर्ण की भूमिका नहीं, ये हमारे समय का दर्पण है। क्या हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ सकते हैं? चतुर्थ सर्ग का ये प्रथम भाग हमें भीतर की अग्नि से परिचित कराता है। आगे कथा और भी गहन होगी और हम उस अग्नि में कर्ण के चरित्र को और तपता देखेंगे। आइए अब सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग दो का काव्य पाठ।
1: वीर कर्ण, विक्रमी, दान का अति अमोघ व्रतधारी पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणभारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वो दान कर्ण से अनायास पाता था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर, छिपकर पुण्य विवर से, व्रत का निकष दान था। अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धराया। एक दिवास जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मिया रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने,
3: कौन उधर है बंधु, सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो। कर्ण सबका विनीत अनुचर है, ये विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक शूद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण में ही अपना सुख माना, भयहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहां पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं, मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए।
2: श्रोताओं, दान देने से जो घटता है वह वस्तु होती है, पर जो बढ़ता है वह मनुष्य होता है। और आज के इस प्रसंग में हम ऐसे ही एक पुरुष के सामने खड़े हैं जिसके लिए दान प्रदर्शन नहीं स्वभाव है। हाँ, गंगा तट पर खड़ा वह सूर्य पुत्र जल में निमग्न पर तेज से दीप दिपाता हुआ, जैसे स्वर्णिम पर्वत स्वयं तपस्या में लीन हो। यह दृश्य केवल बाहरी नहीं, यह भीतर की निर्मलता का संकेत है।
1: श्रोताओं, दिनकर जी ने जिस कोमलता से इस प्रसंग को रचा है उसमें दान कोई घटना नहीं साधना बन जाता है। यह भाव बहुत स्पर्श करता है, दाता और भिक्षु का भेद मिटा देना। कितनी सरलता से वे कहते हैं कि लेने वाला भी कुछ देता है, संतोष, कृतज्ञता, आशीर्वाद। ये सोच आज के समय में कितनी दुर्लभ हो गई है, जहां देने में भी अहंकार छिपा रहता है।
2: दिनकर जी ने इस दृश्य का कितना अद्भुत, कितना दैदीप्यमान चित्र खींचा है। गंगा का पावन तट, मध्याह्न का प्रखर सूर्य और उस जल के मध्य अचल खड़ा कर्ण, मानो स्वयं तेज से मनुष्य का रूप ही धर लिया हो और तप की मुद्रा में स्थिर हो गया हो। गंगा की लहरें जैसे उसके चरणों का अभिषेक कर रही हो। सूर्य की किरणें उसके कवच कुंडलों पर स्वर्ण रेखाएं उकेरती हुई मानो आकाश से आशीष बरसा रही हो। जल में झील मिलाती आभा ऐसी प्रतीत होती है जैसे नियति ने इस क्षण को रत्न की तरह अपनी हथेली पर संभाल लिया हो।
1: वातावरण में एक गहन निस्तब्धता है, पर यह साधारण मौन नहीं, ये उस तूफान से पहले की शांति है जो चरित्र की पराकाष्ठा को परखने आता है। कर्ण स्थिर हैं, मन से भी, वचन से भी, और जैसे अपने तन को भी अर्पित करने की तैयारी में। और यहीं इस प्रसंग की असली सुंदरता प्रकट होती है। ये केवल एक दृश्य नहीं, ये मानवीय ऊंचाई का आलोक है, जहां मनुष्य अपने संकल्प से सूर्य के समकक्ष खड़ा दिखाई देता है। आगे नियति स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देने को है, यही इस प्रसंग की मार्मिकता है। दान अभी तक व्रत था, पर अब वो जीवन बनने जा रहा है।
2: श्रोताओं, आज गंगा के तट पर हमने केवल कर्ण को नहीं देखा, हमने उस दुर्लभ मनुष्यत्व की झलक देखी है जो स्वयं तप कर भी दूसरों को प्रकाश देता है। जल में खड़ा वह सूर्य पुत्र मानो ये कह रहा हो कि दान हाथों से पहले हृदय में जन्म लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग में कर्ण को किसी राजपुरुष की भांति नहीं बल्कि ऐसे महातपस्वी की तरह उकेरा है जिसकी आभा भीतर से फूटती है। सच ही तो है श्रोताओं, समय अक्सर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनके भीतर असाधारण तेज छिपा होता है। साधारण दीपकों की आंधी नहीं उतरती, तूफान हमेशा सूर्यों की ओर बढ़ते हैं।
1: दोस्तों, अब कथा उस दहलीज पर आ पहुंची है जहां मौन के भीतर नियति की आहट सुनाई देने लगी है। गंगा अब भी बह रही है, सूर्य अब भी आकाश में प्रज्वलित है, पर समय की चाल बदल चुकी है। कर्ण का तप, उसका व्रत और उसका भाग्य अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं जहां त्याग केवल गुण नहीं रहेगा, इतिहास बन जाएगा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ, जहां इस शांत जलधारा के बीच नियति स्वयं एक याचक बनकर कर्ण के द्वार पर आएगी। अब हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा। इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
2: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने,
4: और मैंने यानी दीपक नेमा ने।
1: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है, फिर मिलेंगे एक नए अंक में। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
5: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।